0: वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्यसूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-अधिक-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां 71-शतधावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर

0: समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य है व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good.

0: दोस्तों, लाइव शो पयाम सुब के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं सकीना और मेरे साथ हैं
1: मैं हूं महराज। उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम चुस्त तंदुरुस्त और फिट होंगे।
0: जी दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों का मकसद आगे बढ़ना, कामयाबी हासिल करना।
1: वैसे सकीना जी, जिंदगी में हुसूली कामयाबी की जरूरी शर्त ख्वाब देखना है। ख्वाब देखे बगैर ताबीर की तमन्ना नहीं की जा सकती।
0: बिल्कुल सही कहा महराज आपने। देखिए, ख्वाब देखने से मुराद ये है कि इंसान अपना नस्ब लैन तय करे,
1: बिल्कुल
0: मंजिल का तयन करे और फिर अपने अंदर इतना हौसला पैदा करे कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों की मुश्किलात और रुकावटों से निमटना आसान हो जाए।
1: एब्सोल्युटली। तो हम भी बेहतर जज्बे और हौसले के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनने वालों के लिए पहले ये कश्मीरी गीत पेश करते हैं।
0: बिल्कुल महराज, बुतेसुसी सोचान के बोजन वाले ने दिखतर करो गोडनेत अख मेर मुद कशर बात पेश। चूंकि अस कर गोडनेत उर्दू पट का, तो मैं अस पता महराज ना अस का उर्दू बात हो, फिल्मी बात हो, मगर देखिए क्या होता है, दिल को दिल से राह होती है। आपने कश्मीरी एक गीत क्यों करके रखा है, तो चलिए मिलजुल कर इस गीत को एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: जी दोस्तों, लाइव पयाम शुभ शो आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान सकीना, और मेरे साथ है
1: मैं हूं महराजुद्दीन।
0: जी कुछ कहने वाले थे आप।
1: जी सकीना, जिस तरफ भी नजर दौड़ाते हैं तो वो समा वो मंजर हमारी आंखों को मसरूर कुन माहौल पेश कर रहे हैं जो ईद से पहले देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल सही बात छेड़ी आपने। ईद की खुशियां आया है, घरों की अगर बात करें साफ सफाई हो गई,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और जितनी भी लगभग बच्चों के लिए खरीदारी करनी थी माओ ने
1: की
0: होगी, उनके पेरेंट्स ने वो की होगी। ये कह सकते हैं कि हर तरफ लोगों की चहल पहल और बाजारों में गहमा गहमी इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि ईद की खुशियां हमारे दिलों हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही है, नॉक हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी दोस्तों, इन खुशियों में हम बराबर आपके साथ हैं। आप खुशी खुशी ईद की तैयारियों में मशगूल रहिए, और हम दुआ करते हैं कि ये आने वाली ईद आपकी खुशियों में इजाफा करें।
0: बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं कि सबकी खुशियां दोबाला हो जाएं। बाजारों में गहमा गहमी का जिक्र हुआ, देखिये महराज, मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के अलावा खासतौर पर श्रीनगर के ईदगाह ग्राउंड में या मरकजी मार्केट्स में बकरों की खरीदारी में भी लोग मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कल मैं घूम रही थी एक हिसाब से, हम भी कुछ खरीदारी कर रहे थे, और ये जो बेड़ों का सिलसिला होता है बच्चे ज्यादा इसमें पेश होते हैं कि इस तरह का बेड लाना है, सींग वाला बेड लाना है, तो ये जिक्र करना जरूरी बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, ये त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। इस दिन अल्लाह के हुक्म की तामील में जानवरों जैसे भेड़ बकरी गाय या ऊंट की कुर्बानी दी जाती है।
0: देखिए ये सभी जानते हैं महाराज की कुर्बानी होती है, क्यों होती है, इससे कोई लापरवाह नहीं है। ये भी सभी जानते हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है फिर उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों और नादारों के लिए।
1: सही सही।
0: लेकिन इस तीसरे हिस्से में हमने अक्सर देखा है कि लापरवाही कहिए कि एक नाइंसाफी हो ही जाती है,
1: बिल्कुल।
0: और ईद से पहले चंद दिन कबल हम ये बात कर रहे हैं, बुध को ईद है, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि खुशियों का ये जो पैमाना होता है, खुशियां तभी दोबाला हो सकती है जब आप गरीबों और नादारों के बारे में सोचेंगे। ये जो तीसरा हिस्सा है जब हम ये तकसीम करने बैठते हैं तो इसमें इतनी नाइंसाफी हमने देखी है कि कभी कभार खुद भी शर्म आती है कि ये नहीं होना चाहिए। यूथ का गरीब दरवाज अचान ईज पच तेमस तीवान दिन ये नपाज
1: की नपाज। बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: तो अत त्रेमिस हिस्सस मज अवश्य इस गुजारिश वनकस कर अवश्य अस कत कि वुदा ढाई दह ईद लगभग,
1: बिल्कुल,
0: तो अतो ख्याल कि गरीब नादार तिमन तान वात पुन हक तम हकन ईद कर अमुक कुर्बानी मकसद ही गति आश नी माज ये खुशी मनत हकान तम हकन ईज दह असल
1: पचन
0: पनस अयाल सद मन।
1: बिल्कुल
0: तो वमीद करान कि इन कथन पे अमल कर सरी कोशिश कि बाकी हिजन खुशियन मज कर इजाफ सह

0: ये में त्री में हिस्सों का ख्याल थाओ सुगो कि गरीब छु नादार छु ये दरवाज अच्छे एम दिमो पन सहा के मुख्य हकदार छु
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
4: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
5: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
4: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
5: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
4: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।

0: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
0: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
0: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: Issued in public interest by Office of the Transport Commissioner, Jammu and Kashmir.
3: Central University of Kashmir, Gandharbal की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। Central University Entrance Test बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के Central University of Kashmir के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
4: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
5: माहिरीन की आरा, तजुर्बात और रहनुमाई,
6: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
4: सेहत के मशवरे,
7: ऑर्थोपेडिक कुन तकलीफस मंज छ ब्रॉडली करन इम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
4: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
5: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
4: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह,
5: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह।
4: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
8: जी दोस्तों, आज ही संडे का दिन और लाइव शो पयाम सुबह का आज का थीम होता है गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड।
9: बिल्कुल,
8: तो शुरुआत करते हैं खुशी की खबरों से। तो क्या कहना चाहेंगे महाराज, सबसे पहले आप?
9: जी, श्रीनगर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत पुलिस ने मुंशियात फरोशों की गैर कानूनी तौर पर बनाई गई तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जायदादें जब्त की। इस इकदाम से मुआशरे को मुंशियात की लानत से पाक करने में बड़ी मदद मिल रही है।
8: वाकई में ये बहुत अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। अगर आप नशा मुक्त करना चाहते हैं तो जायदादें या मुनशियात फरोशों के साथ ऐसे ही पेश आना है। तो ये भी कह सकते हैं, दूसरी खबर दोस्तों तुम पहुंचाते हैं कि गर्मी की शिदत के पेश नजर जम्मू के समर जोन के स्कूलों में 1 जून से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और श्रीनगर में नौजवानों की फिटनेस और जहनी सेहत को फरोग देने के लिए साइक्लोथॉन का भी इनाकाद किया जा रहा है।
9: बिल्कुल, एक और गुड न्यूज है, 30 मई से वादी में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा एडिशन शुरू होने जा रहा है जिसमें मकामी अदबी विरसे और सकाफत को उजागर किया जाएगा।
8: वाह क्या बात है। तो ये तो कश्मीर का मंजर हुआ, खुशी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर तिब के शोबे की बात करें तो मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर और दीगर पीचीदा बीमारियों के इलाज में नुमाया साइंसी पेशरफ सामने आई है जिससे लाखों मरीजों की जिंदगियां बेहतर होने की उम्मीद पैदा हुई है।
9: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सकीना जी, अब हम बात करेंगे काबिल तजदीद तवानाई की। दुनिया भर के ममालिक में शमसी और हवा से तवानाई पैदा करने के मंसूबों में तारीखी इजाफा हुआ है जिससे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिल रही है।
8: और कश्मीर के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अपना नेमुल बदल वो ढूंढे अगर हम बिजली की बात करते हैं।
9: सही,
8: तो
9: सही, सही।
8: तो एक और बात, खुशी की बात अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अफ्रीका और एशिया के जंगलात में मादूमियत के खतरे से 2-4 जानवरों की नस्लों के तहफ्फुज और इत्तेलात तहफ्फुज और उनकी बहाली के लिए कामयाब मंसूबों के बारे में सोचा जा रहा है, उसकी इत्तेलात मौसूल हो रही है। अब चूंकि देखिए आज इस खबर की हमने बात की तो आज 24 मई है آج کے دن انٹرنیشنل ڈے آف مارخور بھی منایا جاتا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد اس نایاب جانور کے بارے میں آگہی پیدا کرنا

0: है और इस नस्ल की मौदूमी से इसको बचाना है। हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये मारखोर किस जानवर का नाम है, मारखोर का मतलब क्या है, जी बताएंगे
1: हम। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि फारसी जबान में मार का मतलब सांप और खोर का मतलब खाने वाला है। मारखोर के बारे में मशहूर है कि ये सांपों को मारकर खा जाता है।
0: अरे देखिए, मारखोर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, नीलम वादी और कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है, लद्दाख में भी इस जानवर को इसकी वहां पे नस्ल है। और माजी में गैर कानूनी शिकार और कुदरती मस्कन में कमी की वजह से मारखोर की नस्ल को शदीद खतरा लाहक थे। ताम अब हुकूमत जो है वो कोशिशें कर रही है कि इसकी जो नस्ल है या जो मारखोर है इसको बचाया जाए और आने वाली जो नस्लें हैं इस बारे में वो आगाह हो जाए कि ये जानवर क्या था क्या नहीं है। देखिए मारखोर के बारे में ये भी मशहूर है कि इसकी सींग बहुत लंबे होते हैं और अक्सर बच्चे जब हम इस वक्त ईद की खुशियों की बात करते हैं तो मारखोर लंबा सींग वाला जानवर है तो बच्चे जब बेर लाने जाते हैं तो कहते हैं कि सींग वाला बेर चाहिए और वो इसमें खुशी महसूस करते हैं। तो आज के दिन देखिए जब भी हम कोई डे मनाते हैं तो मकसद यही होता है कि उस चीज को, उस चीज के बारे में या उस एनिमल के बारे में तहफ्फुज़ उसको फराहम किया जाए। अगर हम किसी भी डे की बात करें तो उस दिन के उस इंसान के बारे में अगर मनाया जाता है तो उसकी अहमियत को उजागर किया जाता है।
1: जैसे हमने आज
0: मारखोर की बात की तो आज दिन है तो बात की जाएगी, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी स्पीशीज इस धरती पे इस जमीन पे रहते हैं उनको
1: उनका भी हक है जीने का
0: तो उनको भी तहफ्फुज मिले।
1: बिल्कुल,
0: तो तहफ्फुज तो हो गया,
1: सही
0: हमने बात
1: जारी
0: रहेगा।
1: फिलहाल
0: तो एक कश्मीरी गीत हम अपने सुनने वालों के लिए पेश करते हैं और ये भी हम सुनने वालों को बता दें कि आज के शो में हम बात करना चाहते थे नौजवानों के हवाले से जो कश्मीर का फ्यूचर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आज के शो में करना लाजमी हम तो करेंगे, लेकिन जिनको अपना स्टेटमेंट देना था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था उस टॉपिक के बारे में, वो शायद अपना मौकफ नहीं देना चाहते, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये कश्मीरी गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी दोस्तों, लाइव शो पयाम सुबह जारी है आकाशवाणी श्रीनगर से। इस गीत से पहले हमने बात की थी कि यूथ की बात करनी है। अब चूंकि आज संडे है, सभी घरों में है, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि घरों में ही होंगे। और ये हकीकत है कि नौजवानों के अंदर कुछ न कुछ गैर मामूली कर गुजरने की बेपनाह सलाहियतें मौजूद होती हैं और वो किसी भी शोबे में मुनफरिद जो पोजीशन है वो हासिल करने की सही करते नजर आते हैं और बाद अजां अपने मुआशरे में, समाज में वो टारगेट हासिल करके कामयाबी के साथ वो एक अच्छी जिंदगी बसर करते हैं या वो सुकून भी हासिल कर सकते हैं। और ऐसा तभी मुमकिन होता है जब बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और अपनी जात पर मुकम्मल भरोसा हो।
1: बिल्कुल सकीना जी, किसी भी शोबे के इंतखाब के बाद पीछे की जानिब देखने के बजाय आगे से आगे बढ़ने की जस्तजु में मगन रहें तो यही कामयाबी हासिल होती है, तो ही कामयाबी हासिल होती है। मगर बदकिस्मती से इंसान की लाशऊर में एक ऐसी खसलत भी मौजूद होती है जो इसे आगे जाने से रोकती है।
0: देखिए महाराज, कुछ बातें आपने कही, देखिए खसलत होती है जो आगे बढ़ने से रोकती है। अब चूंकि माशाल्लाह कश्मीर में बहुत ही जहीन बच्चे हैं और जब खसलत की बात आती है जो आगे बढ़ने से रोकती है, अब चूंकि मैंने कहा पहले ही संडे है सभी घरों में, ये बात पेरेंट्स से शेयर करना बहुत जरूरी है। कल ही हम देख रहे थे कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक आर्टिकल निकला है और हमने भी ये महसूस किया है। मैं परसों ही समीना जी से बात कर रही थी जो हमारी बॉस है, प्रोग्राम हेड है, मतलब

0: इस प्रोग्राम की इंचार्ज है, तो हमने ये डिस्कस किया कि इस इशू पे बात करेंगे। वो ये कि वर्किंग डेज में या स्कूल आवर्स में, आज तो संडे है, आज ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिफॉर्म पहन के बच्चा बाहर निकले और ब्रिज पे बैठे, यूनिफॉर्म पहने और वो पार्क्स में बैठे। तो ये आर्टिकल निकला था, तो हमने सोचा कि हम अगर बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। और ये जो है कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स और टीचर्स का या प्रिंसिपल का, वो शायद नहीं है, नहीं, अगर बड़े बच्चों की बात करें, 8 से 9 से 11 से आगे। हमने देखा है कि जब हम वर्किंग आवर्स में देखते हैं कि जो भी ब्रिज आप देखिए, कोई ना कोई बच्चा यूनिफॉर्म में होता है, सिगरेट पीता हुआ या अपने दोस्तों के साथ वो गपशप कर रहे होते हैं और पार्क्स में बैठ के वो टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं जो कि क्लास में उसको बिताना चाहिए। तो पेरेंट्स की तो पहले जिम्मेवारी है कि वो देखे बच्चा अगर सुबह 9 बजे निकलता है, 8 बजे निकलता है, ये स्कूल पहुंचा कि नहीं। और अगर प्रिंसिपल है, स्कूल में टीचर है, क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट है, उसको ये देखना जरूरी है कि ये आज बच्चा एब्सेंट है तो इसके पेरेंट्स से बात की जाए, लीव को मैंडेटरी बनाया जाए कि पेरेंट्स से ये बात शेयर की जाए कि आज आपका बच्चा नहीं आया, क्या प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन पूछना होना कहती कहती नहीं फुट कि अगर बच गो ये गो तो गो कुत। अगर ना माँ जो पता छे कि बच मोन चु कदलस पर बिहत, बच मोन चु पार्क मज बिहत, अत मच कोर ते शामिल, अत मच लड़के ते शामिल। और हम बुरी खसलत की बात आपने की महराज की, ये हमें रोकती है कामयाबी से, आगे बढ़ने से। देखिये हम नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। आज संडे है, सभी सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो पहली फुर्सत में वो देखे आपका बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं, सुमाचु कदलस पट भी सिगरेट चवान, सुमाचु बुर संगत में फंसे दोस्तन से थे कदलस पट किया नश करान, कूर अगर द्राय गरी इच्छा सुकून वर्चमच। और इस वक्त जितने भी टीचर हजरात हमें सुन रहे हैं, मेहरबानी करके, हमने आज सोचा था कि हम डायरेक्टर एजुकेशन से बात करें, हमारा राबता कह सकते हैं कि नहीं हो पा रहा है, आने वाले दिनों में या आने वाले किसी भी शो में बात हो सकती है इस बारे में कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्कूल आवर्स में बच्चे पार्क्स में बैठे होते हैं, क्यों ब्रिजेस पे बैठे होते हैं, क्यों वो अपने दोस्तों के साथ एक टीम उन्होंने बनाई हुई है जो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं है, टीचर्स को पता नहीं है। इस कम्युनिकेशन को पेरेंट टीचर मीट अगर होती है तो इन बातों का आपस में तबादला कीजिए, बच्चा आया था नहीं आया था, पता चलेगा पेरेंट्स को। और टीचर्स को भी ये कन्वे करना चाहिए कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया था, खैरियत है, क्या बात थी, तो वो बात बताना भी जरूरी है, शेयर करना जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सकीना जी, मैं भी पिछले कुछ दिनों से ये जो स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखा एक जगह इलेक्ट्रिक ऑटो में थे 5 बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, 3 लड़कियां थी उसमें,
0: स्कूल आवर्स में,
1: बिल्कुल बिल्कुल स्कूल आवर्स में, वो बहुत से मतलब बहुत से जो फ्रेंड्स हो उन्होंने शेयर किया था उसको।
0: देखिये कोशिश पढ़वानो की मोल मोज ये थे बच नहीं सुबह तो पता बात नहीं,
1: बिल्कुल,
0: तो एक फील एक हिसाब से कहते हैं कि हमें हुआ, हमने सोचा कि इस इशू पे बात की जाए और बात करना बहुत जरूरी है।
1: सकीना जी तीसरा पेरेंट्स
0: सानन जरूरी, टीचर्स को भी बड़ा अवेयर रहना है। फिलहाल अपने दोस्तों को बता दें कि
1: 7 बजे 45 मिनट सब मैं बसान कशन खबरन बुलेटिन बोजो
0: पयाम सुब जरी अस्त रूजू तुम बन।
2: ये आकाशवाणी صبحچ دون 8 بجے خبر نامہ ہس بہ روف احمد گڑ خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی تو امریکہ خارجہ وزیر مارکو روبیون نو دل مز بھارت امریکہ جامع عالمی شراکت داری تو علاقائی کیو عالمی امن و سلامتی ست وابستہ مختلف معاملن پٹ کات بات کرمچ وزیر اعظم نریندر مودی سند آئے رات 19 روزگار مالس دوران مختلف محکمن مز تعینات کرنا آمت زائد 51,000 نوجوان مز تقرر نام تقسیم کرن جموں کشمیر کس ایل جی منوج سنہا سن ون نش مخالف مہم جموں کشمیر مز اکہ طاقتور تحریک ہز شکل پرم تو شمالی چین کس شانزی صوبس مز اکس کول کان مز سپدمتس گیس دھماکس اندر 90 نفر مار سپدمت وبر تفصیل سان

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। पैम सुबह जारी है। पहले एक नजर डालते हैं आज नष्ट होने वाले चंद खास प्रोग्रामों पर। रात 9:30 पर आकाशवाणी का पॉडकास्ट पेश होगा। मेहमान हैं बॉलीवुड एक्टर मीर सरवर। इनके साथ हम कलाम होंगे मीर तबरेज हुसैन मदनी। शब 10:00 फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश होगा। आपकी फरमाइश प्रोग्राम पेश करेंगे जावेद अंद्राबी।

सुबह 11 बजे सोमनाथ साधु का लिखा हुआ कश्मीरी ड्रामा पेश होगा चपात। दिन में 1:10 पर मगरबी मौसीकी का हफ्तवार प्रोग्राम पेश होगा संडे रिक्वेस्ट शो। हमारी शोबा खबर का तैयार करदा प्रोग्राम नई मंजिल में ब्रॉडकास्ट होगा दिन में 2:30 पर। पहाड़ी प्रोग्राम 4 पेश होगा। पंजाबी प्रोग्राम नश्र होगा 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम रोज की तरह नश्र होता है शाम 5। शाम 6:05 पर गैनी बाइन हिंद खतर प्रोग्राम में मामूल के अलावा मोहम्मद असलम खान के साथ गुफ्तगु होगी। मौजू है माच वबदाउन रोजगार को वसीला। हालात हजरत का प्रोग्राम शहर बीन आप सुनते हैं शाम 7। वादी की आवाज प्रोग्राम पेश होगा रात 8 और रात 9 स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सुनेंगे हम सफर। आज के प्रोग्राम का मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। मुकर्रर है मौलाना फैयाज अहमद जरू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपरा। समीन ये इस गुफ्तगु का तीसरा हिस्सा होगा। समीन ये थी तफसील अब के बाद आज हमारे यहां से नश्र होने वाले बकिया प्रोग्रामों की। सुबह के 8 रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली लिए आपको चलते हैं जहां से आप हिंदी खबरों का बुलेटिन सुनेंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद

0: हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं।

0: कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1

0: एक आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर समिन पेश प्रोग्राम सुन तारीख।
3: सुन तारीख प्रोग्रामों के ब्याखक शुमार है चुस्ब सतीश में मल्तुन जिस खदमत इसमें हाजिर।
4: डॉक्टर अजमल शाह साहब चाहे स्टूडियोस में दावत दिथ अनमित यह जानन खतर के कुशान दौर तो सिल्क रूट कित पठ हकोन इस पानवई वर्टित तो कोस तारीखी तो सकाफती रिश्तेदारी छ पद शब्द थिच।
2: शुक्रिया सतीश विमल साहब। कुशान दौर इस कशीर हंद तवारीख को अहम दौर छ एवा मानन ये छ अगर इस वछो कशीर मंज वरहन जायन छ एमिक आसार आमत लबनस तो यम आसार छ कंटीन्यूअसली विकनस ते कुन्नत कुन जाय इस हज हका डिस्कवर करत कशीर मंज वरहन जायन हस तो यम किन एमुक तालुक छ के इस कितकन रलाव सिल्क रोड सेट शाहरा अब्रेशम यात वनान छ इस तो तात छ वरह के चीज हस के एविडेंस यम इस डायरेक्टली छ कनेक्ट करा सिल्क रोड सिविलाइजेशन यम ते आस अराउंड अस चूंकि यस कुशान डायनेस्टी आई मज आई आई थ्रो एमओ रूटो तो कह रूट खास कर गुरेस रूट एग्जैक्टली तो आई तौर तो पोखो रूल वस कल नियर अबाउट अगर वो गांधरा तो इंडियन टेरिटरी मज कम त्रेन हतन वन कम से कम रूल डाय हथ टू त्रे हथ वरी मगर रूद कम से कम 4-450 वरी तमत कंटिन्यू तिक یس ہم باقین ٹیرٹری من اخ چیز گو کہ ساسانین ایرانک ساسانین تہند اس مداخلت گئی تم ٹیرٹری من تر من گئی یہ چیز کہ حس کہ ان پہ یہ رول تر تر ترا ان پہ مگر تمو کر ساسانین کر ایرانک

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुजाकिरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को भी शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दीली के केस में चार मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत

0: कौमी बोर्ड के बारे में बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है जो कि हिफ्जान सेहत में पेशेवराना सलाहियत, मफाहमत और साख को पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाय कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक, तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाह मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत GRAM-G एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक उस जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़े किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि अबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायमा कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्ते, इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायात के इजाले के से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBG-RAM-G Act 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस माहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयान देने का इल्ज़ाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नज़दीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ व हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमरीका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाक़े के नज़दीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर اتر پردیش اور ودربھ میں رات میں گرمی کی توقع ہے. محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم کے کچھ حصوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. آج انڈمان اور نکوبار، جزائر، بہار، جموں اور کشمیر، لداخ، کیرلا، ماہے، کونکن، گوا، لکشد

0: पूर्वी और शिमाल मशरिकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाती बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन व तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान आरपी सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र एसआईटी ने नासिक टीसीएस जिंसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी से है, सुबह के 8:45।
3: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
4: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शिपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408000।
5: لكل داء دواء ولكل مرض شفاء الله تعالى هم چونو تیوت کانت مرض بنومت یمیک نه تیم شفا چتومت سین گم چ خوج ت چاندون تو هکیو دگ دادن بواسیر میاد دادن پرانن کل دادن کوچ دود کمر دود گردن ہز داغ ریپت کریو
4: 9419408011।
3: प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबां है का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपकी मेज़बान रिफत। समीन इंसान वो बाइख्तियार मखलूक है जिसको नई खबर है कि मैं किस वजह से दुनिया में आया और आखिरकार जहां मुझे जाना है उसके बाद क्या होगा, वो भी हजरत इंसान के जहन के दायरों से बाहर है। कोई गैर साइंसी बात है, यानी न आगे की खबर न पीछे की, बीच में जब हम बात करते हैं तो उस बीच में भी बीच वाली बात

0: जो बदलते नहीं हैं। चाहे आप दुनिया की बड़ी असेंबली से नया कानून भी बनवा के लाए, कुदरत के कानून को न बदल सकते हैं और न उनमें तरमीम कर सकते हैं। क्योंकि सामीन, हम बात सेहत की करते हैं, मर्ज की करते हैं। मर्ज क्या है? मर्ज हम समझते हैं कि ये जिस्म के अंदर फितरी कवानीन में मुदाखलत है और उस मुदाखलत के नतीजे में जिस्म का रद्द अमल और रद्द अमल के नतीजे में अड़ोस पड़ोस के मामलात और माहौल में असरात, जिनको हम अलामात भी कहते हैं। और कई अलामात जब मिल के एक शक्ल बनाते हैं, हम उनको अमराज का नाम दे देते हैं। आज हम उसी मुदाखलत और रद्द अमल की बात करेंगे जिसको लोग अस्तमा मर्ज कहते हैं। स्टूडियो में तशरीफ फरमा है वादी के नामवर तबीब डॉक्टर हकीम नसीर अहमद शाह साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जानना चाहेंगे आपसे अस्थमा के बारे में, अस्थमा क्या है?
1: देखिए, मैंने बेसिकली अस्थमा पे बहुत काम किया है
0: जी,
1: और मेरे कई आर्टिकल्स इस पे छपे हैं, मेरी थीसिस है इस पे, और मैंने ये कोशिश की कि मैं कुछ नया और कुछ अलग सी बात बताऊं
0: जी।
1: एक आर्टिकल मेरा यूरोपियन जर्नल में भी छपा है, तो इस तरह से जो मैं बात बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उस बात को बताने से कबल मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ने ये कहा कि अस्थमा लाइलाज बीमारी है, पूरी ज़िंदगी में जाएगी नहीं, जब तक आप जिंदा हैं तो एहतियात तो हर किसी को करना पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: एहतियात के अलावा आप इनहेलर्स, स्टेरॉइड्स और ये एंटी एलर्जिक या इस तरह की अद्वियात जो हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स आपको खानी पड़ेंगी। और चूंकि अस्थमा जो है वो बारी बारी में इसके दौरे पड़ते हैं, तो हर दौरा के बाद या जब भी इस तरह की तो ये सिचुएशन हो जाती है और ये ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है। तो हमने बेसिकली जो काम किया है इस पे, हमने कुछ रेजिमेंटल थेरेपीज पे काम किया है
0: जी।
1: और हम वो प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं कि ये या ऐसे अमराज जो हैं वो ठीक भी हो सकते हैं या रिवर्स भी हो सकते हैं
0: जी।
1: जो भी इस तरह के मरीज होंगे उनको हम रेजिमेंटल थेरेपीज करेंगे। रेजिमेंटल थेरेपीज में हम क्या करते हैं, कुछ मसाज थेरेपीज हैं साइनस एरियाज में
0: जी,
1: वो हम इसलिए करते हैं जहां अस्थमा होता है उसके साथ साथ जुकाम भी होता है
0: बिल्कुल
1: अमूमन
0: जी,
1: तो एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकलाज्मा ये साथ साथ लगभग चलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में भी क्या होता है कि जुकाम आपका जो है वो चालू रहता है नाक से और उसके बाद सांस फूल जाती है, खांसी आती है और ये सिलसिला चला रहता है, मतलब ये सिलसिला जो है दराज हो जाता है या बारी बारी इस तरह से इसके अलामत होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये साइनसिस जो होते हैं उनमें साइनोसाइटिस होता है तो उसको हम ड्रेन देते हैं
0: जी।
1: जो जो कम उम्र के होते हैं उनमें बहुत जल्दी हमें रिस्पांस होता है और जो बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता हमें रिस्पांस मिलता है। एक तरह की एक स्टडी ऑलरेडी की है और उसमें हमने कई 100 मरीजों को लिया था और उसमें हमने एक कंपैरेटिव स्टडी भी की है। कुछ पेशेंट्स को इनहेलेशन स्टेरॉइड की उनके पहले पीएफटी देखे और बाद में देखे
0: जी।
1: और जिनको हम रेजिमेंटल करते हैं, मतलब उसके बाद हम लीज भी डालते हैं, तो उनको भी हम पहले ये पीएफटी करते हैं और बाद में भी। और जो पीएफटी हम करते हैं उसमें हमें देखा कि 12% से ज्यादा हमारे उसमें वेरिएशंस आती हैं पीएफटी के, इसमें जो हमारे स्केल होती है। तो एक कायदे के मुताबिक जब इस तरह की वेरिएशन आती है 12% से ज्यादा, इट मीन्स अस्थमा जो है वो रिवर्स हो चुका है। और फिर जो हमने स्टडी स्टेरॉइड्स के साथ कंबाइन में की उसमें हमें ये देखने को मिला कि स्टेरॉइड्स से जितनी फर्क होती है
0: जी,
1: उससे ज्यादा हमारे रेजिमेंटल थेरेपी से होती है। दैट मीन्स दे आर मोर इफेक्टिव देन स्टेरॉइड्स। और अब हम क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह के जो है ना, चूंकि इस तरह के स्टडीज हमने पहले भी किए हैं, या पुरानी खांसी हो, एलर्जिक खांसी हो, तो वो सब हम लोगों से मशवरा कर सकते हैं। हमारा एक फोन नंबर भी है जो मैं देना चाहता हूँ, 9419408011। मैं फोन नंबर लास्ट में भी रिपीट करूंगा ताकि वो जो लिखना चाहते हैं वो इस फोन नंबर को लिखें, तब तक वो पेन और कागज लाए हैं ना
0: जी।
1: अच्छा, या रिकॉर्ड करें अपने फोन से।
0: बिल्कुल।
1: तो

0: मैं जो कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अस्थमा बिल्कुल अलग अलग तरीके से ट्रीट होता है।
1: जी,
0: अगर इसमें खुश्की का गलबा हो, यानी खुश्क खांसी आती है, तो हमारा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। फिर हम वो मरतूब अदवियात इस्तेमाल करते हैं जिनमें बरोदत होती है, जो खुश्की के असर को जायल करके तरी लाए। अगर इसमें बलगम बहुत ज्यादा आता है तो हम बलगम को रकीक करेंगे, यानी उसको पतला करेंगे ताकि वो उस लायक बने कि वो बाहर निकल
1: बाहर
0: जाए
1: निकल।
0: और अगर ये पोस्ट नेजल ड्रिप है तो हम नेजल वाश, नतूल वगैरह कर लेते हैं, जिससे ये साइनस एरियाज में जो एक्सुडेट है, म्यूकस है, वो लिक्विफाई होके जो निकलने के लिए तैयार हो जाए, और फिर हम जो बाहर निकालने के तदाबीर है उनको हम इख्तियार करेंगे और उससे ये बासानी बाहर निकल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और कहने का मकसद क्या है, उसके बाद हमारा जो प्रोटोकॉल है वो भी अलग अलग उम्रों में और अलग अलग लोगों में मिजाज के मुताबिक अलग अलग होता है। ये नहीं है कि एक ही नुस्खा हम सबको
1: देंगे, बिल्कुल
0: एक ही दवा हम सबको देंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी जिस आदमी का मिजाज गर्म है तो उसको इलाज बिलजित, यानी हमें सर्द अद्वियात देने पड़ेंगे, और जिस इंसान को सर्द मिजाज है तो उसको हमें गर्म अद्वियात देने पड़ते हैं। जिसको बलगम बहुत ज्यादा आता हो तो उसको हमें, या बरूदत ज्यादा हो गई हो, सर्दी ज्यादा हो गई हो, तो उसको हमें वैसी अद्वियात देनी है जो इसके जिस्म में गर्मी पैदा करे और गर्मी के नतीजे में वो बलगम भी बाहर आ जाए। और इसी तरह से जिसको गर्म मिजाज हो उसको हम सर्द अद्वियात दे देते हैं। तो कहने का मकसद है कि चार तरह के मिजाज हम प्राइमरीली यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, मिजाज असेसमेंट करते हैं, और उसके बुनियाद पर हम लोग फिर इलाज करते हैं। तो इलाज एक जैसा नहीं होता है। हाँ, रेजिमेंटल थेरेपीज में भी हम देखते हैं कि किस बंदे को हमें कौन सी रेजिमेंटल थेरेपी करनी चाहिए। तो इस तरह से मॉनिटरिंग हमारी और डायग्नोसिस हमारे और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारा होता है वो डिफरेंट है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। और जो अद्वियात हैं वो अद्वियात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नेचर ने हमें बनाई है। और हम कोशिश ये करते हैं कि यानी जो अंदरूनी कवानीन है हमारे जिस्म में वो जिन कवानीन के तहत हमारी फंक्शंस होती हैं उन फंक्शंस को हम डिस्टर्बेंस न क्रिएट करके बल्कि क्या करेंगे, आसानी पैदा करेंगे ताकि वो फंक्शंस जो चलती है उसको चलने दो। हम ओबस्ट्रक्शंस हटाएंगे, हम जो प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनको हटाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो प्रोकेलाज्मा है दो चार हुए थे, यानी 10-10 साल से मैं उनको आज भी ऑब्जर्व करता हूँ कि जिनको ब्रोंकाइटिस वापस नहीं आया। दैट मींस क्योर जो है, क्योर इज आल्सो पॉसिबल इन यूनानी मेडिसिन, या जो यूनानी मेडिसिन के तरीके हैं इससे आदमी बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। और जो इस पुरानी खांसी में मुबतला हो, पुराने साइनोसाइट्स में मुबतला हो, जिनके नाक बहती रहती है उसमें मुबतला हो, या जिनका सांस फूलता रहता है उनमें मुबतला हो, तो वो हमसे राबता कायम करें।
2: आख जरूरी इतला दगि दर्द चाहे रिहार आसे, गाउट आसे, कोठन हुन दोद आसे, कमरुक दोद आसे, या गर्दन हिंस दाग आसे, कब इस दाग चलनेवित पंचकर्मा सहित, कपिंग सहित, फिजिकल थेरेपी सहित, या लीच थेरेपी सहित। अमे अलावा करिन अस सहित रिप्त PCOD मरीज, बवासीर, फिशर तो फिशूला मरीज, यमन बेमारियन सानन सेंटरन पेट खतर खा इलाज चु करने यवान। अमे अलाव है कि कह ते असीज कुनी ते बेमारी मुतलिक सेकंड ओपिनियन हासिल करे। रेबित करे यूनानी पंचकर्मा सेंटर लाल चौक अनंतनाग, आहते खानका फैजपना त्राल, कोट रोड शुपया, यूनानी व पंचकर्मा सेंटर सिकिडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, उर्दू बाजार बारामुल्ला, इकबाल कॉलोनी न्यायक बाग नटीपोरा श्रीनगर।
0: कहने का मकसद क्या है कि यार हमारे पास सीधे सादे से आसान से तरीके हैं जिससे
1: इंसान ठीक होता है,
0: तो कॉम्प्लिकेटेड तरीकों में जाना क्यों जरूरी है या जाना क्यों जरूरी है। तो इसलिए कहने का मकसद क्या है कि अनंतनाग में लाल चौक पे हमारा एक हॉस्पिटल है यूनानी पंचकर्मा के नाम से, त्राल खान का फैज बना अहाते में एक और हमारा ये सेंटर है, तो वहाँ डॉक्टर माजिद साहब होते हैं फ्राइडेज को, और भी डॉक्टर्स होते हैं, मैं अनंतनाग में संडेज को होता हूँ। इसी तरह से एक और सेंटर हमारे शुपियन में कोर्ट रोड में, वहाँ डॉक्टर अब्बास साहब होते हैं, माजिद साहब ट्यूजडेज को होते हैं। मैं बजाय यहाँ श्रीनगर के दो सेंटर्स हैं, एक सेंटर जो नटीपोरा वाला सेंटर है बर्शा नगर में, वहाँ पर मैं बजाय खुद मंडेज को और वेनसडेज को होता हूँ। इसी तरह से एक और सेंटर

0: सिकड़ाफर चौक ईदगाह सिनेनगर, वहाँ मैं ट्यूजडेज और सैटरडेज को होता हूँ, माजिद साहब वहाँ थर्सडे को होते हैं, और एक और सेंटर हमारा मागाम में जहाँ डॉक्टर जान साहब बैठते हैं बाईजहर सेंटर बिल्कुल सामने, एक और सेंटर है हमारा नॉर्थ में बारामूला में उर्दू बाजार में, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर जासिया जी होती हैं, फारूक साहब होते हैं वहाँ पर, डॉक्टर अरशद साहब होते हैं, तो ये टीम वर्क की वजह से हम लोग आज तक कामयाब हैं और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी कामयाब रहे। अगर किसी को फोन पे हमसे राबता कायम करना हो तो फोन नंबर मैं देता हूँ, फोन नंबर है 9419408011, एक बार फिर 9419408011।
1: डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर पे अब आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे हम।
2: देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, वो कुदरत जिसने तुम्हें पैदा किया है
1: जी,
2: बल्कि हम सबको पैदा किया है, उसने जैसे हवा इसी जमीन पे रख दिया, पानी पीने के लायक इसी जमीन पे मौजूद रखा,
1: बिल्कुल
2: हमारा माहौल जिसमें हम जिंदा रहे, हमारा खाना पीना, हमारे माकूल मशरूबात, तो जो जो चीज़ इंसान के बका के लिए ज़रूरी है
1: जी,
2: वो सब मुहैया रखी हैं, और वो कुदरत ने अपनी सोच समझ, अपनी दानाई, अपनी हिकमत पूरी इस्तेमाल करके इसी ज़मीन पर
1: रखी है,
2: ताकि इंसानों के अलावा जितने भी यहाँ पर जानदार हैं उन सब की बका मुमकिन हो, और वही वजह है हजारों साल से जो हम देखते हैं कि जमीन पर जिंदगी चलती रहती है, वो इन्हीं कुदरती उसूलों पर मबनी है और उन्हीं के बदौलत ही आज तक इसकी बका मुमकिन है। और ये जो जड़ी बूटियां हैं वो भी इसीलिए ऊपर वाले ने रखी हैं कि जब ये हजरत इंसान बीमार होगा इन्हीं जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करेगा, ताकि वो जो खोया हुआ सेहत है वो वापस पा सके। तो अगर आप कुदरत के इन्हीं उसूलों पे यकीन रखते हैं तो यकीन जानिए शफा इन्हीं उसूलों में छुपा है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे सामीन तक पहुँचाने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे तो ढेर सारी बातें और होंगी। फिलहाल घड़ी इशारा कर रही है कि प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, तो लेते हैं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। खामोशी कुदरत की जुबान है, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तावुन कर रहे थे
3: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैज बनात्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
4: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, इस वक्त आप लाइव मॉर्निंग शो पायम सुबह सुन रहे हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं। ये वक्त तो चला है मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां सुनने का।

0: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: समीन आदाब, आज इतवार है, शक संवत 2000, शक संवत के ज्येष्ठ महीने की 3 तारीख, मुताबिक 24 मई 2024 ईस्वी। समीन, मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मेराजुद्दीन और मेरे साथ है
2: जी दोस्तों, मैं हूं सकीना। और आपको ये बता दें कि कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं नसीर अहमद जी। मेराज
1: जी, सबसे पहले नजर डालते हैं अखबारत में शाया उन खबरों पर जिन्हें आज के रोजनामों ने अपने पहले सफ़े पर शाया किया है। जी सकीना,
2: पहली खबर है एक उर्दू रोजनामे से, सुर्खी है, वादी भर में बानी इस्लाम कश्मीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 661वां सालाना उर्स मुबारक नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया।

0: श्रीनगर वंदे भारत कैरीज ओवर 1 लाख पैसेंजर्स इन रिकॉर्ड 22 डेज इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन इमर्जेस एज जेएनके'स ऑल वेदर लाइफलाइन
1: और आखिर पर खेल सफा से ये सुर्खी
0: जी
1: विमेन्स T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम इंग्लैंड वेल्स रवाना समीन ये थी आज की सुर्खियाँ
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा प्याजो एक्साइड ईशर निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर लाइव शो पयाम सुब जारी है। आपके साथ ही आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ स्टूडियो में
1: महराज
0: जी। आपके साथ बातें होती रहेंगी, लेकिन बातें तो हो गई एक हिसाब से, मुख्तलिफ जानकारियां आप तक पहुंच गई सुर्खियों में, कुछ और अहम बातें आप तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में अगर कुछ बातें ज्यादा होती है वो यूथ के बारे में हो रही है, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि कशिर पटवान भी लग गया सीजी वायदे अच्छे मकाम तक पहुंचे। पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है समाज अच्छा बने, मुल्क अच्छा बने, सबकी नजरें यूथ पे होती है। कुछ बातें हम करेंगे यूथ के हवाले से, क्योंकि बहस मुबाहसे होते हैं स्कूल्स की अगर बात करें, या एजुकेशन डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट या किसी भी शोबे की आप बात करें, टारगेट है यूथ। लेकिन अगर आज कुछ टारगेट सबका है वो है पैसा, हम चाहेंगे कि उससे जरा बाहर आए। फिलहाल आप मौसीकी से महसूस हो जाइए, उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में एक गजल सुन लीजिए, उसके बाद कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे।
1: बिल्कुल।

0: जी मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा। अब हवा का वतन कहाँ है, जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ का हवा का वतन है। और फिलहाल हम आपको बता दें कि पयाम सुबह जारी है, हम आपके साथ ही रहने वाले हैं अभी 11:30 बजे तक। अभी हो रहा है
1: बिल्कुल 9:20 पर आप खबरें सुनेंगे, पहले कश्मीर उसके फौरन बाद उर्दू में। खबरों से पहले ये वक्फा।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी।
4: अरे
3: और छोटी ये तुम्हारे ना,
4: और ये
3: मेरी गुड़िया की ना। दादी
4: हाँ,
3: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: चुप चुप बोलो, क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:00 सपद खबरन हंद बुलेटिन हेस बह रऊफ अहमद। अमरीकी खारज वजीर मार्को रूबियो करन आज नवी दिल्ली में खारज वजीर डॉक्टर एस जे शंकर दोतरफ मामलन पे कत बात। अमे ब्रो रात वजीर अजम नरेंद्र मोदी तो अमरीकी खारज वजीर मार्को रूबियो नवी दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी शराकत दारी में पेशरफ्त इलाकई क्यों आलमी अमन सलामती सत वस्त मुख्त मामलन पे ख्याल बाबत। वजीर अजम सोशल मीडिया पोस्टस मज वोनम भारत अमरीका रोजन आलमी सुथरस पे बजाई तो पापरजाई बापत करीबी अथवा सान काम करान। तुम पाव चत अमरीकी खारज वजीर मार्को रूबियो भारत के चौन दोहन हिंदिस दौरस पे आमित तम कर यम रतन 17 क्वाड खारज वजीर हज मीटिंग अंदर तिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनम 23 ब्रो जमे शुरू कर आमुत अखत दोहन पे मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान वन जमीनी सुथरस पे अकिस ताकतवर तहरीकी में तब्दील सपदमुत। जम्मू कश्मीर च प्रत गली तो प्रत कोन मज यह आवाज यवान जे आख ते ड्रग स्मगलर गसन बख्शन युन। सन शोपियनक नुमाइंद जानसार अहमदन खबर दिसमुत जे जनूबी कश्मीर हिंदिस शोपियन जिलस में नशे मुखालिफ पद यात्रा झंड हबित रवान कर पत अकिस बड़स लोक जलसस खताब करान वन एल जी एन इंतजामिया सत सत आम लूख तो जम्मू कश्मीर पे नारको दहशतगर्दी खत्म कर बापत पुर अजम। तमो वोन नशे सान नौजवान पुई अंदर अंदरी खोखर कड़ तम पन्न टाठन निश तो तरक् हिंदे सफर निश दूर नवान। एल जी एन वो मजीद नशे मुखालिफ मुहिम शुरू सपदन पे वनिस तम सत हत सतनमत एफ आई आर दर्ज कर आमुत जन 800 ड्रग स्मगलर रटने आमुत तो 457 ड्राइविंग लासन रद्द कर सत सत 300 गाड़ी हज रजिस्ट्रेशन मनसूख कर आमच।
7: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के हद में दो पुख्ता इरादे और जोड़ने हैं, नार्को टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए हम सब तन मन धन से काम करेंगे और नशा तस्करों और उनके आकाओं को आवाम से खदेड़ कर ही दम लेंगे। सोपहिया की मिट्टी से इस वादे के साथ कि आतंकवादी पड़ोसी मुल्क की सब पर चलाए जा रहे जहर के इस कारोबार को कश्मीर घाटी में चलने नहीं दिया जाएगा।

0: ही दम लेंगे। सोपहिया की मिट्टी से इस वादे के साथ कि आतंकवादी पड़ोसी मुल्क की सब पर चलाए जा रहे जहर के इस कारोबार को कश्मीर घाटी में चलने नहीं दिया जाएगा।
1: सेव यू सेव फ्यूचर फाउंडेशन के एक वफद ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफद में डिस्ट्रिक्ट हेड शुपयां रासिक अहमद शेख, डिस्ट्रिक्ट हेड अनंतनाग एडवोकेट शाहिदुल इस्लाम और जोनल कोऑर्डिनेटर जनूबी कश्मीर इरशाद अहमद भट्ट शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कल डॉक्टर आशीष कोल की तहरीर करदा किताब परमेश्वरी एजुटेशन ऑफ कश्मीर पेश की गई। ये किताब मुसनफ़ के वालदीन रतन कौल और पुष्पा कौल ने उन्हें पेश की। दरियासना डेफ क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के एक वफद ने उमर अशरफ बेग की क्यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। आज हिजरी महीने जुलहिजा की 7 तारीख है। इन दिनों लाखों की तादाद में हज आज़मीन सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में हज की अदायगी के लिए जमा हो रहे हैं। वाज़ेह है कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इस दिन आज़मीन हज अहराम बांधे हुए पूरा दिन मिन्ना में गुजार देंगे। 9 जुलहिजा को नमाज फजर के बाद आज़मीन वकूफ अरफात के लिए मैदान अरफात रवाना हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: मेरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो इमिजिएटली देखें अपना रैंक और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेस पे अपडेट हो जाएगा।
1: डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन जम्मू कश्मीर अमित शर्मा ने जम्मू में एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान सेल्फ इन्यूमरेशन की पेशरफ्त और मरदमशुमारी 2027 की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो वसी अवामी बेदारी मुहिम को तेज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना इंदराज करा सकें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर बशीर अहमद बेग की वालदा के इंतकाल पर आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर के अमले ने अफसोस का इजहार किया है। अमले ने लवा हकीन के साथ ताजियत और यकजहती का इजहार करते हुए मरहूमा की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.1 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
3: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह,
4: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
3: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
4: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु।
5: यारो वन बाजी यारो वन।
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
4: मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुबह
6: सुनो सजना।
4: पयामे सुबह
7: बिल्कुल दोस्तों, पयामे सुबह जेरी बुछे स्तूस में स्पान सकीना तो मैसेज चे
8: नाराज
7: वक्चो की कशिर बात करो इस बोजन वाले हिंद खतर पेश इले इस कशिर मुसीक ही इस कात ची करान वारिया लिसनर चे आसा इंतजार है
8: बिल्कुल
7: की हम बुजर्ग यम मुसीक ही कशिर वारिया पसंद ची करान तीन खंतर शे चंग ते आसानी ते इस कशिर बने में साड़ी कही बज या डाई बज छकर बत तीन वापत ही मां पेश करने दिस लाप करो इस उनके नस हब खोतून हिंद कलाम से थे
8: हब खोतून अखथा दिपाइश खोतून शायरा
7: बिल्कुल सही
8: यम सुन कलाम हत बद वेरी सोरन पत्ते माजिन बेनन खतर आग जहत छो हौसल छो ब्रह पकनुक
7: वारिया असल कथ वन तो महराज ये हेक वन कि तथ जमानस मज करो शेरी यथ जमानस मज न

0: 24 मई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर।
1: प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
0: आज के शुमारे में भी शामिल रहेंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत हज़्ब मामूल इदारिया से।
1: ईद की आमद आमद है, फजाओं में खुशियों की महक खिलने लगी है, बाजारों में रौनक है, घरों में तैयारियों की चहल पहल से बच्चों की आंखों में चमक है और दिलों में अपनाइयत के चिराग रोशन हो रहे हैं। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि मोहब्बत, उख़वत, भाईचारे, ईसार और इंसानियत के रिश्तों को मजबूत करने का नाम है। ये वो लम्हे होते हैं जब हम अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के करीब आते हैं, खुशियां बांटते हैं और दिलों को जोड़ते हैं।
0: ऐसे खुशियों भरे मौके पर जेएंडके बैंक भी अपने सार्फीन और आवाम के साथ इसी रिश्ते, एतमाद और वाबस्तगी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हमेशा की तरह पेश पेश है। हमें मालूम है कि ईद की जरूरियात और खर्चे कुछ ज्यादा होते हैं जो तनख्वाहदारों की तनख्वाह से पूरे नहीं हो पाते, लिहाजा हमने आसान किस्तों और कम इंटरेस्ट रेट्स पर मुहैया कराया है जेएंडके बैंक फेस्टिवल एडवांस, जो आप चंद ही लम्हों में हासिल करके अपनी ईद शॉपिंग को मुकम्मल और तसल्ली बख्श बना सकते हैं। अब जबकि डिजिटल शॉपिंग का दौर दौरा है, हमने अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर आपके लिए 10% का स्पेशल कैशबैक ऑफर भी रखा है, जो शॉप्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पर लगे हमारे QR कोड्स, साउंड बॉक्सेस और पॉइंट ऑफ सेल यानी POS पर दस्तियाब होगा। आप POS के जरिए 1000 और QR कोड के जरिए मजीद 1000 रुपए का कैशबैक

0: पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमने आपको अपनी तरफ से ईदी दे दी।
1: हर ईद की तरह जेके बैंक की डिजिटल सर्विसेज बिना किसी रुकावट के बिल्कुल आसान तरीके से चल रही हैं और हमारा संकल्प है कि गुज़श्ता त्योहारों की तरह इस त्यौहार भी रिकॉर्ड तादाद में ट्रांजैक्शंस हों और सीमलेस हों ताकि हमारी नई टेक्नोलॉजी से हमारे तमाम सार्फीन और यूजर्स को फायदा हो। आपकी हर जरूरत बस आपकी उंगली के एक इशारे या क्लिक की दूरी पर हो। हकीकत यह है कि बैंकिंग सिर्फ लेन देन का नाम नहीं है बल्कि एक मजबूत बैंक दरअसल एक मजबूत समाज की बुनियाद बनता है। जब इदारे आवाम की खुशियों ज़रूरतों और एहसासात के साथ जुड़ जाते हैं तो एतबार का एक ऐसा रिश्ता कायम होता है जो नस्लों तक कायम रहता है।
0: इस ईद पर हमारा पैगाम यही है कि खुशियों को सिर्फ अपने आप तक अपने घरों तक ही महदूद न रखें बल्कि अपने इर्द गिर्द उन चेहरों को भी याद करें जो तवज्जा मोहब्बत और सहारे के मुंतजर हैं। किसी का हाथ थाम लेना किसी के चेहरे पर

0: कायम रहता है।
1: इस ईद पर हमारा पैगाम यही है कि खुशियों को सिर्फ अपने आप तक, अपने घरों तक ही महदूद न रखें, बल्कि अपने इर्द गिर्द उन चेहरों को भी याद करें जो तवज्जा, मोहब्बत और सहारे के मुंतजर हैं। किसी का हाथ थाम लेना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना और दिलों के फासले कम करना, यही तो ईद की असल रूह है। आइए इस ईद हम सब मिलकर मोहब्बत, इत्तेहाद, भाईचारे और बाहमी एतमाद के इस खूबसूरत रिश्ते को मजीद मजबूत करें और एक बेहतर समाज की तश्कील में अपना रोल अदा करें।
2: तमाम सुनने वालों को हमारी तरफ से पेशगी ईद मुबारक। खुश रहें, महफूज रहें और खुशियां बांटते बिखेरते रहें। तमाम PMJJBY और PMSBY सार्फीन मुतवजा हों।
1: आपकी सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज का अगले चंद दिनों में रिन्यूअल ड्यू है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने बैंक खाते में PMSBY के लिए ₹20 जबकि PMJJBY के लिए ₹436 अवेलेबल रखें, ताकि जब बैंक ये प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट करे पैसा वहाँ मौजूद हो। बसूरत दीगर इन इंश्योरेंस स्कीम्स के साथ जुड़े हुए तहफुजात और मुराद से आप महरूम रहेंगे। प्रीमियम की रकम 25 मई से यकम जून 2026 के दरमियान किसी भी वक्त डेबिट की जाएगी।
3: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
2: दोस्तों, चूँकि त्योहार के दिन आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर बैंक के डिपार्टमेंट डिजिटल एंड अल्टरनेट चैनल्स ने एक खास ऑफर लॉन्च किया है जिसका नाम है बड़ी ईद बड़ा ऑफर। इस स्कीम के खास डिटेल्स क्या हैं हमें बताने के लिए हमने आज स्टूडियो में मधु किया है श्री अशोक रैना जी को, जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं डिजिटल एंड अल्टरनेट चैनल्स के JK बैंक में। इस ऑफर के हवाले से क्या कुछ खास कहने जा रहे हैं अशोक जी, आइए सुनते हैं।
4: सबसे पहले मैं सभी हमारे सुनने वालों को ईद की मुबारक देना चाहता हूँ। सभी को ईद मुबारक। जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड जो हमारे कस्टमर्स है वो जानते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड जो है उस पर काफ़ी अभी हम उसको रिवैम्प किया हमने और इसमें बहुत सारी कस्टमर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है अगर कोई एक्टिवेट करता है तो पहली ट्रांजेक्शन पर उसको वेलकम वाउचर मिलता है। जो क्रेडिट कार्ड डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड कौन सा होगा, वो 250 से 500 रुपये का उसका अमेजन का वाउचर मिलता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसी तरह हम बहुत ओकेजन्स पे कस्टमर्स को अलग अलग ऑफर्स देते हैं। जो ऑफर्स अभी हमारे बहुत सारे जो हमारे मर्चेंट्स हैं या जो हमारे ई कॉमर्स साइट्स हैं उन पे चालू हैं। जैसे हमारे अभी मेक माई ट्रिप पे है, बुक माई शो पे है, मोनालिजा पे है, स्विगी पे है, टाटा क्लिक पे है, फर्स्ट क्राई और ईज माई ट्रिप पे अभी चल रहे हैं। और अगले आने वाले दिनों में हमारा जो ऑफर्स है वो अमेजन पे, जोमेटो पे, LG पे, सैमसंग पे, मार्शल पे, कैंट पे, लिव प्योर, एओ समेत, माइक्रोसॉफ्ट, पैनासोनिक, वर्लपूल, सोनी और अपो पे भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो फेस्टिवल्स होते हैं वो स्पेशल्स होते हैं, क्योंकि इस पे फैमिली के लिए हमें शॉपिंग करनी होती है, बच्चे हैं उनके लिए कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं, उसके अलावा हमारे फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स परचेज करनी होती हैं और अपने घर को डेकोरेशन और साज सजावट के लिए खर्चा होता है। इस ईद जो हमारी आ रही है इस पे हमने एक स्पेशल ऑफर लाया अपने कस्टमर्स के लिए जिसका नाम हमने दिया है बड़ी ईद बड़ा ऑफर। ये ऑफर हमारे JK बैंक के क्रेडिट कार्ड पे है। जो क्रेडिट कार्ड यूज होगा हमारे JK बैंक के POS मशीन पे, QR पे या साउंड बॉक्स पे, उसमें हमारा 10% का डिस्काउंट हमने ऑफर किया है और ये मिनिमम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए 1000 की और मैक्सिमम जो इसमें कैशबैक आएगा वो 1000 का आएगा हर एक चैनल पे, यानी POS पे 1000 और QR पे 1000। उसके अलावा जो ये QR का मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा रुपे कार्ड हमने अभी लॉन्च किया है ये ऑफर, मतलब जो नॉर्मली जो रुपे कार्ड UPI पे QR पे रुपे कार्ड ही यूज होगा हमारा रुपे क्रेडिट कार्ड, तो जो हमारे अभी ग्राहक हैं जो यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड हो या वीजा हो उनके लिए प्री अप्रूव्ड हमारा रुपी क्रेडिट कार्ड हमने ऑफर किया है, वो अपनी एम पे में जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उनका वर्चुअल कार्ड उसी वक्त इंस्टेंट उनके एम पे यूज होगा, मतलब उनके एम पे आएगा, उसको वो यूपीआई किसी भी

0: पे एप्लीकेशन के साथ लिंक कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वो फिजिकल कार्ड वहाँ पे उसको ऑप्शन मिलेगा, वो फिजिकल कार्ड भी ब्रांच पे जाके ले सकता है अगर उसको चाहिए, वरना जो ये जो वर्चुअल कार्ड है वो कहीं पे भी वो यूज कर सकता है, ई काम पे किसी भी जगह पे। और मैं अब ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक जो हमारा सुनने वाले हैं कि ये जो आपके क्रेडिट कार्ड है इसको आप यूज करिए, जो भी हमारे पेमेंट पॉइंट्स है जैसे पॉस हो, QR हो, साउंड बॉक्स हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले इस ऑफर का। उसके अलावा मैं जो हमारे मर्चेंट्स है उनको भी ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमारे QR साउंड बॉक्स या पॉस इंस्टॉल करें अपने एस्टेब्लिशमेंट में, ताकि लोग वहां आके ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें उनके आउटलेट्स पे। थैंक यू
1: दोस्तों, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है और बैंकिंग का शोभा इस तब्दीली में पेश पेश है। रिवायती बैंकिंग के तरीके अब बड़ी तेजी से डिजिटाइज हो रहे हैं और सार्फीन भी अब ब्रांच विजिट्स के बजाय मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करके अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को आसान बनाने के साथ साथ अपना वक्त भी बचाते हैं, जो दूसरे अहम कामों में सर्व किया जा सकता है। लेकिन जहां इस बदलाव से हमारे लिए आसानियां पैदा हुई हैं, वहीं हम पर इजाफी जिम्मेदारियां भी आन पड़ी हैं। हालांकि बैंकिंग के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आला तरीन निजाम राइज है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के जरिए इस निजाम को काफी मजबूत बनाया जाता है। ताहम चंद गुजारिशात पर अमल करके हम इस अमल को मजीद महफूज बना सकते हैं। हम बारहा गुजारिश करते हैं कि अपना पासवर्ड, OTP, पिन या CVV किसी के साथ शेयर ना करें, वो चाहे अपना हो या पराया। कोई भी बैंक फोन करके आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। अगर आपको भी कभी ऐसी कॉल मौसूल हो तो इसे जल्द रिपोर्ट करें। अपने पासवर्ड जरा हटकर सेट करें और इनमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें। अपना DOB, फोन नंबर, अपने प्यारे का नाम वगैरह पासवर्ड में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आसानी से गेस किया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग निहायत ही आसान, तेज और महफूज बैंकिंग का तरीका है, लेकिन इसका एक अहम असूल है, वो ये कि अपने अलावा किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि हमारे पास आदाद और शुमार मौजूद है उन वाकयात का, जहां घर के बच्चों, दोस्तों, मुलाजमीन या आपके जानकारों ने ही आपके साथ फ्रॉड करके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। एक और गलती जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वो ये है कि ATM या क्रेडिट कार्ड के पीछे अपना पिन नंबर लिखना। ये ऐसी ही बात है कि आप पेट्रोल और माचिस एक साथ रखते हैं, जिससे कभी भी आग लगने का खतरा रहता है। J&K बैंक का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी निजाम मुल्क के बेहतरीन बैंक्स में शुमार किया जाता है और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि बैंक के सिक्योरिटी लैप्स की वजह से गाहक का नुकसान हुआ हो। इसीलिए हम बारहा गुजारिश करते हैं कि जानकार बनिए और अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंस को हमारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी निजाम की बदौलत आसान और महफूज बनाएं। J&K बैंक के बेशतर बैंकिंग प्रोसेसेस अब मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हो चुके हैं, लिहाजा हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने बैंक की हर सलाह पर अमल करके नुकसान से बचिए। हमारा मकसद आपके पैसे को महफूज बनाना है, जो आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं। हमें इसकी फिक्र भी है और कद्र भी।
2: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं, कि वो JK बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फ़ायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मयसर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाख से राबता करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएँ।
3: बात एक बुजुर्ग माँ के 350 वाले खाते की, या जम्मू कश्मीर को नई उड़ान देने वाले 350 करोड़ के प्रोजेक्ट की हो, J&K बैंक को जम्मू कश्मीर के हर फर्द की हर जरूरत का एहसास है।
4: ये एहसास ही तो बनाता है J&K बैंक को खास। J&K बैंक, आप लोगों का बैंक।
2: और अब इनामी सवाल की बारी।
5: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे जम्मू कश्मीर बैंक के ATMs की मजमूई तादाद पूछी थी।
2: इस सवाल

0: का सही जवाब है 1443।
1: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाबात सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे तीन खुशनसीब विनर्स हैं।
0: कश्मीर डिवीजन से कुलगाम की उल्फत जान, जम्मू डिवीजन से रामबन के सुवेंद्र सिंह और लद्दाख से बारू करगिल के सादिक अली।
1: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
0: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
1: दोस्तों, आपको बताना होगा कि 21 से 30 मई तक J&K बैंक क्रेडिट कार्ड के द्वारा POS या QR कोड या साउंड बॉक्स पर पेमेंट करने पर कितने फीसदी कैश बैक का J&K बैंक ने अपने सारिफिन के लिए ऐलान किया है।
0: आपके जवाबात हमें 30 मई शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। आपसे गुजारिश है कि अपने जवाबात के साथ अपना नाम, पता, 16-डिजिट अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिखना ना भूलें।
1: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
0: 1-800-890-2122
1: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
0: www.jkb.bank.in।
2: आज की सेफ बैंकिंग टिप। अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए अपना मोबाइल नेटवर्क या सिक्योर्ड वाईफाई का ही इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई पर ट्रांजैक्शन करने से डिजिटल फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। आइए हमारे साथ मिलकर अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को तेज, आसान और सिक्योर बनाएं। हम हैं आपका अपना बैंक।
3: अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।
4: जी दोस्तों, प्रायः सुबह आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो साथी।

0: जी हाँ, आज हम बात करेंगे 100 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की। एक ऐसी तहरीक जो न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि अवामी शऊर की बेदारी के लिए भी निहायत अहम है।
1: नशा एक ऐसा लफ्ज जो सुनते ही दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक खामोश जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जिंदगी, उसके ख्वाब, उसके रिश्ते और उसकी शनाख्त को निगल जाता है।
0: बिल्कुल रिफत, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की खूबसूरती, सकाफत और नौजवानों की सलाहियतें हमेशा दुनिया भर में सराही गई हैं। लेकिन अफसोस कि नशे की लानत इस खूबसूरत माशरे को भी मुतासिर कर रही है।

0: नशे के शिकार अफराद के लिए बहाली एक अहम मरहला है।
1: बहाली मराकिस में न सिर्फ इलाज किया जाता है बल्कि मरीजों को नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार किया जाता है।
0: उन्हें हुनर सिखाए जाते हैं, मशावरत दी जाती है और माशरे में दोबारा शामिल होने का मौका दिया जाता है।
1: हमें चाहिए कि हम ऐसे अफराद को कबूल करें न कि उन्हें नजरअंदाज करें।
0: नौजवानों के लिए कुछ अमली इकदामात भी जरूरी हैं,
1: जैसे कि खेलों में हिस्सा लेना, मस्बत दोस्तों का इंतखाब, वक्त का सही इस्तेमाल, किसी भी दबाव की सूरत में मदद तलब करना।
0: ये छोटे छोटे इकदामात एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं।
1: अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये मुहिम कामयाब हो सकती है। आदाद और शुमार बताते हैं कि नौजवान नस्ल इस खतरे से ज्यादा मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि हुकूमत ने 100 दिन की एक जामे मुहिम शुरू की है ताकि इस मसले का जड़ से खात्मा किया जा सके।
0: ये मुहिम सिर्फ कानून नाफिज करने तक महदूद नहीं बल्कि इसमें आगाही, बहाली और समाजी शमूलियत जैसे अहम पहलू शामिल हैं।
1: बिल्कुल रशीद, नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर नौजवान मजबूत हो तो कौम मजबूत होती है।
0: बिल्कुल, कश्मीरी नौजवानों में बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं, चाहे वो तालीम हो, खेल हो या फनून लतीफा। लेकिन अगर यही नौजवान नशे की तरफ माइल हो जाएं, तो ये न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह है।
1: नौजवानों को चाहिए कि वो खुद को मस्बत सरगर्मियों में मशगूल रखें। खेल कूद, किताब पढ़ना, हुनर सीखना, ये सब ऐसे रास्ते हैं जो नशे से दूर रखते हैं।
0: इसके अलावा नौजवान एक दूसरे के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। अगर एक नौजवान नशे के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका असर उसके दोस्तों और हलके पर भी पड़ता है।
1: सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। आज का नौजवान डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है और अगर वो इस प्लेटफॉर्म को शऊर बेदार करने के लिए इस्तेमाल करे तो एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है।
0: सिविल सोसाइटी किसी भी माशरे की रूह होती है।
1: जी हाँ, NGOs, मकामी तंजीमें और सामाजिक कारकुन इस मुहिम को अवाम तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं।
0: अगर हर मोहल्ले में छोटे छोटे आगाही प्रोग्राम हों, वालिदैन के लिए नशस्तें हों, नौजवानों के लिए वर्कशॉप्स हों, तो नशे के खिलाफ एक मजबूत

0: दीवार खड़ी की जा सकती है।
1: सिविल सोसाइटी को चाहिए कि वो नशे के शिकार अफराद को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय उनकी मदद करें, उन्हें बहाली के रास्ते पर लाएं।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: हमारे मजहबी रहनुमा माशरे में एक खास मकाम रखते हैं।
0: बिल्कुल, लोग उनकी बात को संजीदगी से लेते हैं। अगर वो अपने खुतबात में नशे के नुकसानात को उजागर करें तो इसका गहरा असर पड़ सकता है।
2: इस्लाम में नशावर अशिया को हराम करार दिया गया है क्योंकि ये अक्ल को मफलूज कर देती हैं।
0: दीगर मजाहिब भी नशे से दूर रहने की तालीम देते हैं, इसलिए मजहबी हम आहंगी के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है।
2: उल्लमा और दानिश्वर माशरे के फिक्री रहनुमा होते हैं।
0: ये अफराद न सिर्फ मजहबी बल्कि साइंसी और समाजी पहलुओं से भी लोगों को आगाह कर सकते हैं।
2: यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में लेक्चर्स, सेमिनार्स और मोबाइल से इस सिलसिले में बहुत मुअस्सर हो सकते हैं।
0: जब नौजवानों को इल्म और शऊर मिलता है तो वो बेहतर फैसले करने के काबिल हो जाते हैं।
2: हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस मुहिम के तहत कई अहम इकदाम किए हैं,
0: जैसे कि नशा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सरहदों पर निगरानी में इजाफा और स्मगलिंग को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल।
2: इसके अलावा बहाली मराकज कायम किए गए हैं जहां नशे के आदि अफराद को इलाज, मशावरत और दोबारा माशरे में शामिल होने का मौका दिया जाता है।
0: तालीमी इदारों में भी आगाही प्रोग्राम्स, पोस्टर मुहिम और तलबा की शमूलियत के जरिए इस मसले को उजागर किया जा रहा है।

0: नशा एक जहर है जो जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है। मुतासिर फर्द महज एक जिंदा लाश बन जाता है।
1: ये दिमागी सलाहियतों को मुतासिर करता है, यादाश्त कमजोर हो जाती है और इंसान फैसला करने की सलाहियत खो देता है।
0: समाजी तौर पर भी इसके असरात तबाहकुन हैं। खानदानी झगड़े, बेरोजगारी, जराइम में इजाफा।
1: और सबसे अफसोसनाक बात ये कि नशा इंसान को तन्हाई और मायूसी की तरफ ले जाता है।
0: सामेन किराम, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: अगर हम अपने घरों, अपने मोहल्लों और अपने माशरे में शऊर बेदार करें तो हम इस लानत का खात्मा कर सकते हैं।
0: वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनकी बात सुनें और उनकी रहनुमाई करें।
1: नौजवानों से हमारी अपील है कि वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं, नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इससे बचाएं।
2: ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का सारी दुनिया के नाम।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं बल्कि एक तहरीक पैदा करना था।
0: हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे।
2: याद रखें, एक सेहतमंद फर्द ही एक मजबूत माशरे की बुनियाद होता है।
0: इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर का ख्वाब पूरा करेंगे, हमें इजाजत दीजिए।
3: आप सुनते रहें
1: रेडियो साथी, दिल से दिल तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक, रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:30 हो रहे हैं। नन्हे मुन्ने अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनेंगे हुनहार।

0: आदाब, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम टिप टॉप। बहुत से बच्चे आज आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगी कपड़े पहन के आए हैं। हाँ, और सभी बच्चे जो हैं उनके यहाँ ईद की तैयारियाँ चल रही होंगी। हाँ, ईदी तो आप मुझे कभी देते नहीं हैं, तो अब कुर्बानी कौन कौन बच्चा लेके आएगा? हाँ, कोई भी नहीं। बहुत कंजूस हैं ये सब बच्चे, कहते हैं कि बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दिल जो है अपना हमेशा खुला रखना चाहिए। ठीक है, चले आप मेरे लिए ना लेके आए, लेकिन खूब घर में खाएं पिएं, मौज करें, ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और बहुत सी ईदी जमा करें और उसको जमा भी करें। मैं आपको कहती हूँ ना कि पैसा जमा करना भी जरूरी है, एक आदत होती है, आप अपना पैसा जो है किस तरह से संभालते हैं उसको जमा करते हैं। बताएं कौन कौन बच्चा पैसा जमा करता है? अच्छा, कौन बच्चा सब कुछ सब खर्च देता है? ओ, एक बच्चा है मोहम्मद ईजान भट्ट, ये सब खर्च देता है, इसने पूरा दोनों हाथ अपने उठा लिए, ये सब पैसे अपने खर्च देता है। तो चलें, आप भट्ट साहब कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पैसा जो है उसको सेव भी करके रखें, क्योंकि सेविंग से बहुत सी आदतें आप में डेवलप होती हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी बात करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम सिमरन शबनम है।
0: आप माइक को फॉलो करें, आगे आ जाएं। जी सिमरन, क्या सुनाएंगी आप?
1: माँ बाप की अहमियत।
0: जी,
1: माँ रब की वो नियामत है जो हर दर्द को महसूस करती है, माँ के बगैर जिंदगी सुनसा रास्ता है, माँ की दुआ हर मुसीबत में डाल बन जाती है। बाप साया दार दरख्त की मानद है जो धूप में खुद जलता है मगर अपनी औलाद को छाऊ देता है। बाप के बगैर जिंदगी का सफर बेसमित हो जाता है। शुक्रिया
0: बच्चों, एक बात मैं बारहा आपसे कहती हूँ कि वाकई अल्लाह तबरक तआला की तरफ से माँ बाप एक ऐसी नेमत है कि वाहिद वाहिद एक माँ बाप वो हस्ती हैं जो चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे आगे आ जाए, उनसे आगे जाए। आप गुस्सा भी करेंगे, आप नाराज भी होंगे, लेकिन माँ बाप जो हैं वो कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते और हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआगो रहते हैं। तो फिर बच्चों का भी कुछ फर्ज है, बताएं क्या फर्ज है बच्चों का अपने माँ बाप के तई? खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना, हर अच्छे बुरे वक्त में अपने माँ बाप का साथ देना। क्योंकि देखें, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं उनके सिर्फ बेटे होते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं उनकी सिर्फ बेटियाँ होती हैं, कुछ ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास दोनों नेमतें होती हैं। तो जो बेटे हैं वो अपने माँ बाप के लिए बेटियाँ भी बने और जो बेटियाँ हैं वो अपने माँ बाप के लिए बेटे भी बने, इस बात का ख्याल रखें। क्योंकि बहुत जल्द हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे और जो बातें मैं आपको बारहा बार बार सिखाती हूँ वो आपके पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि उसको आप घर पे कितना अमलाते हैं। तो उस दिन सब आपका कच्चा चिट्ठा निकल आएगा, जो बच्चे नहीं मानते।

0: हैं बात पेरेंट्स की, या जो हम यहाँ उनको सिखाते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका?
1: उस्वा महाराज।
0: जी उस्वा, क्या सुनाएंगी आप?
1: कोयल के बारे में।
0: जी।
1: तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत बोली बाली, उड़ने वाली डाली डाली, वन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली, बाग में तेरी रटको कूकी, देती है एक लुत्फ अजब ही, सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग कमाली, कोयल तेरी कूक निराली, तुझको आमों से रगबत है, आम के बागों से उल्फत है, कूक कूक करने की आदत है, कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली।
0: कोयल तेरी कूक निराली। वाकई कोयल की ना मीठी सी आवाज़, आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है कोयल की तरह। आपका शुक्रिया। क्या नाम है आपका?
2: अरबा।
0: जी अरबा, क्या सुनाएंगी आप?
2: सेब।
0: सेब सुनाएंगी? सेब खाएंगी या सेब सुनाएंगी?
2: सुनाएंगी।
0: जी।
2: सेब। सेब वजन कम करने में मदद करता है।
0: आपको बहुत ज़रूरत है वजन करने, इतनी छोटी सी गुड़िया हैं आप। जी।
2: कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सेब का रंग लाल होता है। सेब मीठा होता है। सेब कश्मीर में पाया जाता है।
0: आप में से मुझे कोई कह सकता है कि कश्मीर का एक इलाका एप्पल टाउन कहलाता है? कौन सी? हाँ, शुपियान है। बिल्कुल ठीक है, वो जो है एप्पल टाउन कहलाता है। शुपया का सेब जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। जो भी वहाँ किस्म होते हैं सेब के, बहुत अच्छे होते हैं। आपका शुक्रिया। जी, क्या नाम है आपका?
3: मदीहा महराज।
0: जी मदीहा, क्या सुनाएंगी आप?
3: चिड़ियाघर की सैर।
0: जी।
3: चलो चले सब चिड़ियाघर को देखे चलकर, शेर बबर को, बबलू शमसी चन्नू आओ, एक लाइन में सब आ जाओ, अपना अपना टिकट कटाओ, रहना हर कोई हाथ पकड़कर, अलग ना होना कहीं जगड़कर, हाथी का दीदार भी करना, ऊंट से आंखें चार भी करना, देखो बंदर शोर मचाए, उछले कूदे नाचे गाए, मोर को देखो पर फैलाए, अपने परों से सब कुलवाए, प्यारी चिड़िया उड़ती जाए, ची ची ची ची करती जाए, भूख लगी तो खा लो पी लो, ऐश करो मस्ती में जी लो, शाम हुई अब घर को जाओ, सारे दिन थकन मिटाओ। शुक्रिया।
0: क्या नाम है आपका?
4: हूर फातिमा।
0: जी हूर, क्या सुनाएंगी?
4: शेर और चूहे की कहानी।
0: जी।
4: एक बार शेर जंगल में खाना खाकर सो गया, चूहे को शेर के ऊपर नजर पड़ी और वो उसके ऊपर खेलने लगा, जब शेर उड़ गया उसने उसको पकड़ लिया।
0: फिर क्या हुआ?
4: फिर चूहा बहुत डर गया, उसने बोला कि मुझे छोड़ दो कि मैं कभी आपके काम भी आ सकता हूँ। शेर ने उसको छोड़ दिया। फिर वो एक दिन पूरे जंगल का राउंड करने गया, वहाँ पर सिपाही ने उसको पकड़ लिया और चूहे ने उसको बचा लिया। फिर वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए।
0: कैसे बचा लिया बताएं जरा? शेर को जाल में बंद कर दिया, फिर चूहे ने अपने तेज तेज दांतों से उसको कुतरा और शेर आजाद हो गया। चले शुक्रिया आपका। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
5: जी दरअसल हम जब छोटे बच्चों की कोई कहानी सुनते हैं जो वो कहते हैं हमसे, तो हम उसे ट्रिवियल समझते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि शायद ये हमारे किसी काम की नहीं है और सिर्फ ऐसे ही मज़े मज़े में बच्चों को सुनाई गई और बच्चे हमें सुना रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है।
0: जी
5: जैसे हमने अभी एक कहानी सुनी, बहुत अच्छी कहानी थी शेर और चूहे की, और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे सभी लोगों ने इसको 100 से अधिक बार सुना होगा या उससे भी कई बार सुना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कहानी है इसमें जो ये सबक है बस इतना सा है कि छोटी चीज़ बड़े के काम आ सकती है। नहीं, इसके बगैर भी इसका बहुत मतलब है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है, और अगर इन छोटी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी खराब हो जाती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि हम एक टेबल पर किसी छोटे से चीज़ को रखते हैं और उसके ऊपर बाकी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। अगर हम नीचे की ईंट को हटाएंगे, नीचे रखी हुई चीज़ को हटाएंगे, तो बाकी चीज़ें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो सब पिचक जाती हैं और गिर जाती हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारे साथ कोई ऐसी कहानी शेयर की जाए जो कोई छोटा बच्चा बताए, तो उससे सबक हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए।
0: बहुत खूब। क्या नाम है आपका?
6: हुदा फातिमा।
0: क्या सुनाएंगी?
6: उर्दू।
0: जी।
6: उर्दू जबान हमारी है जानवा दिल से प्यार, ये मदरी जबान है रंग रंग में जो राव है, जब से जुबान खोली उर्दू है अपनी बोली, बचपन की ये साथी की उसने जहन साजी, शहर जुबान है उर्दू चर्चा उसका हर सो, उर्दू

0: क्या उसमें दिलखुशी है। उर्दू जो कोई बोले कानून में राज ये खोले। उर्दू में पढ़ना लिखना बात और जुबान में करना। उर्दू को जिंदा रखना हम पर ये फर्ज है अपना। लब जो फरग खोलो उर्दू में तुम भी बोलो। शुक्रिया।
1: उर्दू में तुम भी बोलो, क्योंकि उर्दू जो है वो बहुत मीठी जबान मानी जाती है। आप उसको जितने भी मिठास से बोलेंगे वो ज़रूर एक असर रखती है। तो यहाँ पे आज हमारे प्रोग्राम में मुंतज़र नज़ीर आए हैं जो कि पेड़ पौधों के बारे में ही हमें बताएंगे। जी मुंतज़र।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: आज मैं एक अफसाना सुनाना चाहता हूँ जो पेड़ों के बारे में है।
1: जी।
2: अफसाना ऐसे शुरू होता है, अब्दुल जब्बार जंगलों से लकड़ियाँ चुरा कर ले जाता था और शहर में उन लकड़ियों को लेकर बड़े दामों में फरोख्त करके अपना पेट पालता था। वो समझता था कि ये पेड़ बेकार के हैं, न फल देते हैं और न ही कोई फूल। वो अक्सर चिनार के एक पेड़ से गुजरता और जब थकता था तो उसके नीचे आराम करने के बाद जंगल की तरफ चला जाता था। जबार के साथ साथ अब चिनार का पेड़ भी बड़ा हो गया था। न ही जबार की शादी हुई और न ही चिनार का कोई दरख्त आया। जबार भी अकेला और चिनार का दरख्त भी अकेला। अब उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई। वो एक दूसरे से अपनी दिल की बातें कहते थे और अपने मन का बोझ हल्का करते थे। आप दरख्त क्यों काटते हैं जब उनकी भी जान होती है तुम्हारी तरह। अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है और मैं वो दरख्त काटता हूँ जो बेकार होते हैं। कोई चीज़ बेकार नहीं है। अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें पैदा की है वो सभी कार आमद हैं। वक्त पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। दरख्त के साथ साथ जब्बार भी काफ़ी बूढ़ा हो गया। अब वो जंगल नहीं जा सकता था और पेट पालना मुश्किल हो गया। उसने सोचा कि आज मैं चिनार के दरख्त को ही काट कर भेज दूं ताकि मेरी पेट पूजा हो जाए। अपनी कुल्हाड़ी और आरा लेकर दरख्त के पहुंचा तो दरख्त ने हाल अहवाल पूछी। मैं अब ज़ईफ़ हो गया हूं, सांस लेने में वक्त दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन मशीन से गुजारा हो रहा है जो खरीद कर लेना पड़ता है। खाने के लिए कुछ मैसर नहीं है। भूखा हूँ इसलिए सोचा कि आपको ही काट कर अपना गुजारा कर लूँ, क्योंकि जब दोस्त मुसीबत के वक्त काम न आए तो कौन आएगा। चिनार ने एक आह भरी और कहा, जो ऑक्सीजन आप खरीद कर लेते हैं वो मैं आपको कई बार मुफ्त में दे चुका हूँ और यहाँ आकर आप भी मुफ्त में ले रहे हैं, इसलिए मुझे छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बुजुर्ग ने कहा। कई रोज से भूखा हूँ, आपकी लकड़ियाँ खरीद कर ही अपनी भूख मिटा सकता हूँ। आप करीब आएं और देखें मेरी गोद में ये मशरूम है, उनको ले जाकर पकाएं और अपना गुजारा कीजिए। जब्बार ने मशरूम लेकर पकाकर खूब मज़े किए। खुदा का करना था कि एक दिन ऐसा तूफान आया कि झोंपड़ियाँ गायब हो गईं। इसकी जद में अब्दुल जब्बार की भी झोंपड़ी आई। बाकी लोगों ने अपनी अपनी झोंपड़ियाँ तामीर की मगर उसकी झोंपड़ी न बन सकी, क्योंकि उसके पास न ही लकड़ी थी और न ही पैसा। वो अब बेघर था और इधर उधर भटकता था। भटकते भटकते वो चिनार के दरख्त नीचे आकर बैठ गया। चिनार उसकी ये हालत देखकर मायूस हो गया और जब्बार से पूछा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो मेरे दोस्त। चिनार ने हैरान होकर पूछा, दोस्त मेरी झोंपड़ी तूफान से उखड़ गई इसलिए आज भटक रहा हूँ और अब मैं परेशान हूँ कि कैसे नई झोंपड़ी तामीर करूँ, क्योंकि न मेरे पास पैसे हैं और न ही बाजुओं में ताकत। कोई बात नहीं, आप मेरे इस खोखले तने को अपना घर ही समझ लीजिए और आपकी जितनी भी जिंदगी बची है वो यहीं पर गुजारे ताकि मैं समझूंगा कि मैं भी किसी के काम आया। अब जब जब्बार को समझ में आया कि दुनिया में जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं वो बेकार नहीं है, और दरख्त से कहा कि आप सच कह रहे थे कि दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है। उसके बाद जब्बार ने अपनी सारी ज़िंदगी उसी पेड़ के तने में इबादत खुदा में गुजारी और वहीं पर वफात पाई और उनका मज़ार भी उसी पेड़ के नीचे बनाया गया और उसकी कब्र पर लोगों का तांता लगता रहता। शुक्रिया।
1: देखें वाकई कितनी बड़ी बात है कि इस सरजमीन पे किसी का

0: जो वजूद है वो जाया नहीं होता है। और ये आपस में दोस्त थे, कौन कौन दोस्त था मैं जरा सुनूं, आप ध्यान से सुन रहे थे,
1: जबार,
0: और पेड़। हाँ, तो आपने ये सुना कि वो एक दूसरे के दोस्त थे और कैसे वो मुसीबत में एक दूसरे के काम आए। जी, क्या नाम है आपका?
2: जी, मेरा नाम जहरा अब्दुल्ला है।
0: जी जहरा,
2: अच्छी आदत, हर इंसान में अच्छी और बुरी आदत पाई जाती है जिससे इंसान के अच्छे और बुरे होने को जांचा जाता है। हमें अपने इर्द गिर्द भी ऐसे लोग नजर आते हैं जिनमें अच्छी आदत होती है। अल्लाह पाक भी अच्छे आदत रखने वाले अफराद को पसंद करता है और बुरे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। वो बच्चे अपने घर, स्कूल या मोहल्ले में बहुत हर दिल अजीज होते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। हर इंसान को अच्छे आदत अपनाने पर तसली और सुकून नसीब होती है। वालिदैन का एहतराम करना, माँ बाप और बुजुर्गों की मदद, सफाई का खास ख्याल रखना, फूल पौधों का ख्याल रखना वगैरह, इन सब अमाल का शुमार अच्छे कामों में होता है। इंसान इन सब बातों और आदत पर अमल करके एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के काबिल बन सकता है और माशरे में बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकता है।
0: नन्हा सा दोस्त आया है हमारा और कब से कभी एक को छेड़ के, एक को धक्का मार के, एक को कुछ अपने साथ ही बातें होते कर रहे हैं। क्या नाम है आपका?
3: रुद्र प्रकाश।
0: अच्छा रुद्र, कहाँ से आए हैं आप?
3: कानपुर से।
0: कानपुर से आए हैं? अरे कानपुर से तो जोरदार तालियां हो जाए रुद्र के लिए। आपको पता है रुद्र क्या होता है? नहीं पता है? रुद्राक्ष, एक आपने देखा होगा एक छोटा सा अखरोट नुमा चीज होती है जो अक्सर आपने देखा होगा गले में पहन के होता है, उसे रुद्राक्ष कहते हैं। वो बहुत ही एक फायदेमंद होता है। और ये नन्हा सा दोस्त जो है, ये रुद्राक्ष क्या सुनाएंगे आज?
3: अरीफ से।
0: सुनाइए।
3: अरीफ साइकिल चलाता है, उसके बाद फुटबॉल खेला।
0: हाँ,
3: उसके बाद खेल खाट, उसके बाद रूम पे सोया।
0: अच्छा, मुझे बताइए रुद्र, आप कश्मीर में ही रहते हैं या घूमने आए हैं कश्मीर?
3: कश्मीर।
0: कश्मीर में रहते हैं? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, तो आते रहिएगा हमारे प्रोग्राम में, ठीक है? रुद्राक्ष के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो चलिए अब आपको एक नगमा सुनवाते हैं।

0: कैसा लगा आपको ये नगमा?
1: जी बाजी बहुत अच्छा।
0: चलिए ठीक है।
2: प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमें ये सिखाएगी कि सच बोलने वाला हमेशा इज्जत पाता है और अच्छे इखलाक इंसान को सबका पसंदीदा बना देते हैं।

0: कैसा लगा आपको ये नगमा?
1: जी बाजी बहुत अच्छा।
0: चलिए ठीक है।
2: प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमें ये सिखाएगी कि सच बोलने वाला हमेशा इज्जत पाता है और अच्छे इखलाक इंसान को सबका पसंदीदा बना देते हैं। तो आइए सुनते हैं एक नन्ही चिड़िया की खूबसूरत कहानी, नन्ही चिड़िया और सच्चाई का इनाम। एक खूबसूरत गांव में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। बच्चों, उसका नाम चुन्नू था। चुन्नू बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वो कभी कभी झूठ बोल देती थी। एक दिन चुन्नू को खेत में चमकती हुई एक सोने जैसी खूबसूरत अंगूठी मिली। उसने फौरन अपने दोस्तों को जाकर कहा, ये अंगूठी मेरी है, मैंने उसे बाजार से खरीदा है। सब दोस्त हैरान हुए, क्योंकि चुन्नू के पास इतने पैसे कभी नहीं होते थे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। बच्चों, थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी खातून रोते हुए वहां आई और बोली, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, वो मेरे मरहूम माँ की निशानी थी। बच्चों, चुन्नू ये सुनकर परेशान हो गई। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं सच ना बोलूं तो ये दादी बहुत दुखी हो जाएगी। आखिरकार चुन्नू ने हिम्मत की और कहा, दादी अम्मा, ये अंगूठी मुझे मिली थी, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दीजिए। तो बच्चों, बूढ़ी खातून मुस्कुराई और बोली, बेटी, गलती हर किसी से होती है, मगर सच बोलने वाला हमेशा बहादुर होता है। फिर उन्होंने चुन्नू को दुआएं दी और एक खूबसूरत किताब तोहफे में दी। उस दिन के बाद चुन्नू ने कभी झूठ नहीं बोला और सब बच्चे उसे सच्ची चिड़िया कहने लगी। बच्चों, सच्चाई इंसान को इज्जत और खुशी देती है, जबकि झूठ आखिरकार शर्मिंदगी का सबब बनता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे ये सबक सीखा होगा कि सच्चाई और अमानतदारी इंसान की सबसे बड़ी खूबी है।
0: तो चलिए अब एक नगमा सुनते हैं।

0: क्या नाम है आपका?
1: अलीना बिलाल।
0: अलीना बिलाल जी, अलीना क्या सुनाएंगी आप?
1: अच्छी आदत
0: जी।
1: हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। हमें अपने आस पास सफाई रखनी चाहिए।
0: अलीना ने एक बात इसमें कही कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। मुझे बताएं, यहाँ पे कौन कौन बच्चा है जिसके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं? आपके घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं? मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, आप बताइए।
2: जी, मैं उनके हर एक काम में उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ।
0: जी
2: जी, वो बुजुर्ग है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके कुछ काम खुद ही कर लेता हूँ।
0: मसलन
2: जैसे कि मेरे जो दादा है वो कभी कभी प्लांट्स उगाते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ उसमें, और मेरे जो नाना है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं उनके लिए न्यूज़पेपर लाता हूँ। जी,
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज की जो अच्छी बात रहेगी इस प्रोग्राम की, वो हमें देखो एक लाइन जो है वो अलीना से मिल गई आज की अच्छी बात के लिए, कि आपको बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। क्या नाम है आपका?
1: बुशरा मोहम्मद।
0: बुशरा मोहम्मद नाम है आपका। आप इतनी गोरी और इतनी प्यारी कैसे हैं? क्या खाती हैं आप?
1: दाल।
0: हाँ?
1: पनीर।
0: अच्छा,
1: अंडा।
0: हाँ, तभी आप इतनी सुंदर हैं। हाँ, बिल्कुल कैट जैसी, आपकी ब्राउन आईज, ब्राउन बाल। मुझे तो पहले लगा कि आप फॉरेनर हैं, कोई यहाँ की है नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं। क्या नाम बताया आपने?
1: बुशरा मोहम्मद।
0: बुशरा मोहम्मद जी, क्या सुनाएंगी आप बुशरा?
1: नमाज का वक्त।
0: नमाज का वक्त जी।
1: लहरमानी नमाज का वक्त। सुबह हुई है, अल्लाह अकबर। नींद से उठो, छोड़ो बिस, अल्लाह अकबर। तुमसे पहले जागी बुल, जाग उठे हैं गुंचे और मीठी सदा में नन्ही चढ़ी, कर चुकी कब की शुक्र खुदा, गया अंधेरा हुआ उजाला, पढ़ लो नमाज अब उठो भाई। सुबह हुई है, अल्लाह अकबर।
0: आपको पता है तरक्की में सबसे बड़ा जो रोल है वो किस चीज़ का? आप में से एक कोई बच्चा मुझे बता सकता है, इंसान की जो तरक्की है उसमें सबसे एक आदत जो है वो कौन सी है कि वो शख्स तरक्की करेगा ही करेगा, बताएं जरा। हाँ, और
1: कुरान की तिलावत करना,
0: और सुबह जल्दी जागना। जितना आप सुबह जल्दी जागेंगे उतना आपका दिन जो है वो जल्दी शुरू होगा, ठीक है? और सुबह का जो वक्त होता है ना, ये आपको तरक्की तक लेके जाता है। आप देखें, आपके हाथ में, आज सभी बच्चों के हाथ में फोन होता है, वो ये देखें कि जितने भी कामयाब लोग हैं जिंदगी में वो कम सोते हैं, ठीक है? कम सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत तरक्की करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपनी नई नई नज़में, नई नई बातें हमें सुनाने के लिए। हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए
3: खुदा हाफिज़।

निन्ने मुन्ने अपना मन पसंद प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे होनहार, पेशकश समीना शाह। ये आकाशवाणी श्रीनगर है।

जी दोस्तों, आपने फिल्म पैगाम से टाइटल गीत सुना, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इसे आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव्स 78.8 मीटर द एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ संपैट ठीक 10 बजे। समीपेश सोमनाथ साधु सुन लिखमुद का शुड्रामा चपात।

0: अफसर साहब जिंदाबाद, अफसर साहब की खिदमत में गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
1: कुसा चुक्स
0: वाह, अब उस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ बनमोला, शेक हैंड प्लीज, शेक हैंड।
1: दोस्त क्या काम, क्या चाहिए थे
0: काम? कम मे वम मटे इलाक चुमना बोर्ड बान महल पे बडियार ताम। बडियार ताम सिगरेट चाहो? सिगरेट,
1: सिगरेट रेट चाहिए, सिगरेट।
0: टेलीफोन, टेलीफोन से चलान, टेलीफोन चलान, टेलीफोन चलान
1: चाहे
0: मे प्रेजेंट निक्सन टेलीफोन करून दपस अपोलो 14 मज थाई रैंड बापत अख सीट रिजर्व करितन अशु गोमुत शोक चक्कर करनो अपोलो, अपोलो जाना अपोलो मे असे ओत्रे सीट बुक करनो मज तासोस टेलीफोन खराब गोमुत प्रेसिडेंट निक्सन चुको बाटकिन मुसलमान, चुको बाटकिन मुसलमान
1: अद
0: मुझे बटन खोचान, मुझे बटन खोचान, मगर
1: अजीब इंसान है, दरअसल पागल बिचोर।
2: अरे गाश ना हुआर
1: भैया, ए दो मिनट क्या भी चक बड़े चाला आगा मुझे। अच्छा वांगव सही, वांगव सही, बबली रेडी है, एक दो
2: नहीं बबली फकत गसक तो उठ गिनस पे था भाई गाश ना हुआर दाई फिर जट जट हते ये छे सब के है कोई छे ये छे मनान हते चे कॉल के इम्तिहान छे ता के कर
3: मुनियर फर्स्ट
2: आहा ये फर्स्ट है नियर रख
3: गस तो गिरजा बहन जी प्रस्त सशी तीस खुश में
2: सको से गयम गिरजा बहन जी
3: ते सही तीस जान बहन जी वे के वनई सशी कम कम कथ वनन
2: आद बे तो बूझ गस पर आपारी कुछ वन हते कॉल के था इम्तिहान छे गस लगे बलाई
3: मे से पाना सॉरी मन अरे तो जे पार तो पार ज्यादा गमसी
2: आकार कर नाल दोल मे मंजि मे आयो कोडमुत वन क्या
1: ऐ त्रावि ची कथ फिलहाल
2: क्यों त्राव दुमया पगहाय आति हाथ नाव नेरनम
4: गाशी वसस इम अखबार चोर अखबारो छ मियो रात तकरी छपो
2: दुमय खाव पत पर इम अखबार आठ त अखबार हेत
4: के जी रत्री छ
2: ऐ योसस एमएस गाशस ना यमन मंजे म्यारिन हुंद बना आज नी दयव त्रयव गरो बेही टेकिन
4: बुदे छोस वारिया गरो परेशान करमुत हे असी गई सुरेंद्र इन टेकिन वन के वन के ये सुनाय छ मटी हमाव निखांदर कर
2: ओखर मा ची जान कथा अहते पत हाथ कथ नेरान छ
1: नीत नीत न हाथ कथ दुमया कचा से छक्स मादा
4: दुमया म छ ठीक वनन हाथ कडन अथ हाथ मतलब चवंद में साल साफ जक्या शी करन
1: फिलहाल न मारा किहिन
2: दुमया ते जितना कुंजाय कह कोरा वछ मत
1: ओ त के छ वना तु माता जी क्या वछ
2: आ न तुथि करबो बाकीन जवाब
1: दुमना तेले वनाय ब पानाय वना ब तेले दुम इम गई मामूली कथ त्रय तो फिलहाल खानदर छ कथ नेमी
2: दोमय चे छै वन
4: वन
2: सर्वानंदन घर छा नाकार कोरिहन परमज लेछमज लछन हुंद कारबार आसन वल त बसन वल बय
4: नाकार घर ओस के छु बड कचक शराफत
2: दोमय यमा यमजन छ वजीर बाग दार हन गोपीनाथ हन सत लब सोन संज बे ये बंगला क्या छे मोटर क्या छे
1: दोमय माताजी यमन पोंस वाले हंस का त्रावत छ
2: अति क्यों आगो
1: छ का गरीब गरा छाण
4: वेरी गुड विस मैनी गाव क्या करता गात
1: कान गरीब कूरे बजा गए छ तो दि गई कथा का छ मे जरूरत इम कसे हिन सास ते बे लाच का छ मे बका
4: ये ति छ मे आज छेतल नाते वनन
1: न महाराज मे छ खांदरे करून किन बिजनेस छम करू पर मच ले छ मच शरीफ गरीब घर छ कोरे ना आस बे क्या छ मे जरूरत
4: ये है ति छस ब पन्न लेक्चर न मज वनन जे खांदर मत बनाय तो बिजनेस बुझो ये छ अक मुदबरक रिश्ता अक आत्म ये सादगी आसी त्यो छ ये पाक तो पवित्र बनन अस बे तो करी पानन का

0: बुद्रा तो शीतना आता है।
1: हाँ अच्छा, तो तुम्हें माता जी उसी में कुन मेन्द्र छे ते चमत है हत म्याने खान रुक गम ओ हो से चेसे वनन गय नाराज उसी मेन्द्र छे या पर
2: मन बचुन
1: अनि गसा चक नाराज थी नस को मैं क्या
2: तो मैं मे छुन की ही जान फिकरे तारन गसी खुश करी तो के का
3: गसी उछो कलर बॉक्स में और यास में मा छ आ कलर ते तही वन तम दे बाने कलर बॉक्स उछो वन मु मा
1: आहा अते मे तमी दो कास्ता पांच दि छ दफ्तर
3: आप तया सुन याद रो
1: तो चेंद्र से पोज द पान बबलिन रे से पोज द पान वो क्या भी पावा यार में का सद छ पांच ओ यस यस यस सुन मा दारा अते तुम से अते मे तमी दो पांच दि
3: तुम क्या जानो तेले
1: सु बिचोर छु बीमार तस व पांच छ दो बिचारस बीमार
2: तवाई आस ने बिचोर योर के आमो
1: ना सो छुट्टी पेड़ छु तो हे छुना सलाज मे छु केनस वक्त गसना बतास खबरी
2: को तो गसक चपरासस खबरी
1: आत्मस क्या छु
2: तो चोस अफसर अफसर छ चपरासन खबरी गथा
1: मैं बका छु तिमो अफसर हो मानज मेन फारे छु तस खबरी गसन मे क्या त छैना के टाइम से तन सुबह तो सुबिचार कोता खुश गे छे अया दुमे बई मई तले ओरा इमे
3: गासी यपर मा एलेन जा मेन कलर पाकस ते जरूर ह जरूर आइ जा।

0: आज अंचो बे तासीवा हो रे तू कैप्सूल खे
1: आय कचा दवा कम जोल सही मऊ दवा
0: तो है मारा चो मज मज बराबर यो शुर हो लागन
1: हां कुछ समझ
0: ठोरे बोचन
2: हां ओ नमस्कार इचा ये माधवराम छ बसान येत
0: तो क्या करब
2: मैं उस तिम समकुन
0: तिम छ बिस्तर रिस्पेक्ट तिम हकन न समकेत
2: हां मिस्त खबर मगर तो वनुख मियोन जे
0: अच्छा बोलियो یمارا چھ تہ نش کُس تام آمد بوٹ سانی پکہ مارا بنکم گلین چیت وہرویت
2: مدرام جی نمسکار کیا مارا چھ تہ تہ بیت خبر
1: ہا کم سچو تہ میچ نہ یت انی گٹس من پور بوز نتی وان تلے گر جے تر ترا خیال
2: دو مارا وپر مارا چھ نہ کان تہ بمارا چھس
1: کوس तुम योर मैंने
2: शुमारा हाँ आप शुंकि रुझू मारा मम्मरा वही तो बिसर पड़ता हूँ कल मरा भी बिते था किसी
1: गिरजे इतने पर्द में थकना ही हूँ
0: नमारा
1: ये मैं गई सुरेंद्रनाथ सही नहीं साहब यूं नहीं बग गरी गरी फ्रांच से आसान
0: से ओ अच्छा नमस्कार मारा
2: नमस्कार आज तुम्हारा इमो मे दरवाज पठे जवाब करयो
1: अच्छा
0: मैं मना कैसे माफी मैं कह दस पाता
1: बुकोता बाजी वंच तै त्रवे मैंने करीब कुड़ियाई मंस पाने कदम तेजे विषम कहते न बिष्ट गिरजे तले कुड़ियत बाग विस पर ट्राव गबा फड़ा कहता
2: आ ना ना मारा तुम बुमारा छुस ठीक ही ये दिनस क्या छु
0: सूर गथव मल ओ छने से कुरस्त गारस मंस
2: ओहो दुमोसो बुकोस अंग्रेज को छुस बु कुर्सी पर छम बेनस खल दुमरा माधवराम जी
1: हाँ?
2: क्या तकलीफ क्या हो तो ही
1: यह अवस्था ही मज बूझ तो तकलीफ ही तकलीफ आस अति आख दो अति ब्याख बुझुस न वैसे इमन दादन ज्यादा सन बास है तो इत कहीं दफ्तर वो
2: ना ना जाम करो
1: मगर ये मैं गिरजन दित नम नेर नमारा आराम भी वही क्यों रात काल चनस पद
2: अच्छा अच्छा
1: कुछ सना गई गिरज गिरजे
2: तो क्या करो तुम्हारा तो वो थोड़ा है
1: तो अद बद अने है के मगर मगर अने इचे काल चाय बनम छत वल से कुरी
2: वाला तुम थे के गरी चाय छे मुच
0: एस के तुम खतर पे लागन के चाय उस तैयार है तर तो मा चाहिए
1: हते कतलम छानन चाय सुत ये मिस रमेश कर जे आलो बाजा न जे इंदे बापत बगैर खान
2: या माता राम में क्या सच हिम चीज सा खरान दो में मचो न चाय सी के चुन तो के बोल करन तकली तो है मेन खबर छ बचम महज तुंदे दिल तसला बापत चाय न तसने में चाय छ
1: दैस दैगतिश क्या ता एते हो तो ते तमी दो ये लि गिरते सटा क्वाच तई ब्रो प्रोहि मारा वत स्टार कुछ न गई ये क्या ये पड़ी

0: रोजाना अख तसंजी कूर
1: करान क्या छु
0: सु मारा नौकरी करन
2: ना तो रोजान का छु कर कछुस हसे क्या छस
0: हसियत न वैसे किहिं वैसे वच कोरियन छस जान ताशन जान तलीम दिसम सोत्याक नौकरी करन शरीफ छे बैठ खूबसूरत छे अद ये च न शुबी माताजी ते छे दम ये गुंतुरने जरा च फिक्री के माताजी बुझ दपान ऐ कचा सोचा त बोझ पनस माधव रामन कत कनस माधव रामन कत
2: कपरस
0: बिल्कुल सुई माधव राम
1: कर चपरस कौर से खानदर
0: अत मे क्या
2: चुका
1: पन्न हिस्सन मन
0: जहर या तज मे कत कर
2: माधव रामन कूर बना मे नश तेल मे ग जहर अद यह खुश कर
1: नामुमकिन गिरो यूत
0: तुमो पिताजी पिताजी मे खबर जो तु गु यह बूझित खोश तु मगर
1: क्या जिन क्या जिन बर मे दस रब बहुत
2: क्रक दिवान बोज तु मोन ग वो गाशा राम जोस यह कौर हन सो पर्म लेचम जान बे दी लत पट रोपस पंच सा मे वन अस बदी
1: रोपन अंत बलाय बुस रोप लोर नावदार इसमदार दुनिया जानक बेचे बिचार वे जार पार कर
0: पिताजी तुह लेक्चर करान दुत न पस नु सास कित पटो तु
2: सी सोचवा रोपस वो सास खानदर कर साधारण पट पत वातन लोत पट पोस
0: तुस बो
2: बखर चान दुमह शुर कोट बजा आलिस माज शान बगन रोजान
0: सौदा माताजी मे पानस खबर जो मे यूत मोल पिताजी आज आए मे पूर पठ मुचरा तुहद हुकुम मान मे फर्ज मगर मे गफी दिन बहुस मजबूर
1: चौन मतलब क्या
0: खानदर मे कर पिताजी तह तुह पे वैसे लेक्चर मन कह फर्क तुम वन लूकन सोशल रिफार्म वक्त गम खोश ग लू कर जोर सारे पोक तुम त्रा तुम पोश माल अखबार में छपि ना फोटो ना बर्बाद कुरो समाज तुह हि लूको पिताजी जबान पे कथ दिल मोल योत बल्कि समाज वत हावक तुम ब्याख थापुर कडियो ये मिल लबी पिताजी तो ऐसो हक छु
1: दबारत
2: हता से
1: दबारत
2: हता से दरा
1: रोपे सुल्तान हत से तनखा दिमाग छु सुरतर गोमत मले सुत बे वाद वाद करनी
3: बुई छस तो कम छु
4: गौ चई छक दमहे कुरी माधव राम कत छु
3: वने आई न दफ्तर तो कत बैठव
4: बुछस कुर सुरिंदरन मज
3: अच्छा तो तु योर इत कन
4: कूर बस दान मंगने आमच अस पे बख्श
3: क्या दान
4: वे कूरी बोस बह वन ऐसे वह सुरिंदरस ऐ सर कर मर्जी अस नर्च पर्म लेचम गाटज सुंदर मगर सुरिंदर मोल तमसद खात ना बेस गर वाद कर्म बस नजान तिज दिल हन फुटराव तव आयस बह ि
3: तु क्या वन यहाँ
4: अस बख्श तव दमो तु तवन लोब कूर
3: माताजी अच्छा योर अम कथ तुजम मोन मोल गरीब शख्स सू कित कर जुरत वन योर
4: कूर ते सारे खबर मगर अगर नु लोब हेयु ना अस ग गरस ग छल तो फल मोल े नचवस निश तो नचो माज निश अगर ती यहाँ तो तेल गो ती जान
3: अंद नहीं माताजी ये तह वो ती सपद तु मान माताजी
4: पन कूर लस बजा अस हे दजहन था तो
3: अत मज क्या
4: कहें कूर अत मज सिर्फ रोपस डोड सा
3: माताजी गरीब मगर पोस पोस माताजी माताजी रोप तुल तो हूँ।

0: राजा कृष्ण जी में पिताजी।
1: राजा कृष्ण सोशल फॉरम
2: सिलेंडर
1: सिलेंडर
0: पिताजी पिताजी गाबरी में तो पिताजी एन आज ने तो ही कहीं वनमुत मगर बुबन तो ही जी यम चुने सिर्फ जबानी सोशल रिफॉर्म वनान बल्कि तत पेट गोड पान अमल ती करान वो बायो काच दरअसल ये म्यास वारियान जायन कथिवान दोनत्रन जायन ब्रह्मयोस बुति तिकाज तिम सास बो द्रोपिए दाज क्यों नकद यछान मगर मगर पिताजी बड़ी मी वो तिमो गौंड में अकिस तिथ जाए यूसक गरीब घर छु यूसक चपरस छु सफेद पोह छु यस बिहन किस जाए तिछ यूत योत न बल्कि मानि माताजी सूज तिमन रोपियस डोड सास खांद्र बापत छु तो आज तान जान बूझमुत ये सबूत तेली यले मेनिस पिताजीस पज पट समाजुक दोद छु
3: राजा कृष्ण जहर उतारा पज पट बंद दोइन के पथाओ हां राजा कृष्ण जहर उतारा
4: हे राजा कृष्ण जहर उतारा हे
3: हे राजा कृष्ण हे तसे पात्रो जे हवा तो हवा तो ऐसा हे बाजे जी से हे
0: पिताजी पिताजी यापरी मारे पिताजी हाँ दुमो सा गाबरन छे कह कह सर यम यमन सुप पे तबियत ठीक पेटो सा सह गरम पिताजी जहरा सा हेन हेन जहरा फेर
5: क्या गो सोशल रिफॉर्म डॉक्टर साहब जिंदाबाद सोशल रिफॉर्म जिंदाबाद
0: पिताजी दलील तुम्हारा निमत्रे गिलास ना चाहिए तुम या वोल पच गर ग सह गरम ती करो तुम आराम हूँ वह वो
6: वार

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर

स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी समीन उर्दू गजलें आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। उर्दू गजलें आप रेडियो सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगली गजल हमने चुनी है आमिर खान।

जी समीन आप समझ कर रहे थे चंद उर्दू गजलें। ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब यहाँ से खबरें शुरू होंगी, पहले उर्दू में, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।

0: ब्लॉकों के लिए 36 करोड़ रुपए के डीपीआर को मंजूरी दी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रवा महीने की 25 तारीख को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक तकरीब पर इस साल के पद्म अवार्ड अता करेंगी। इस बात की जानकारी वजारत दाखिला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। इस साल मरकजी सरकार ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड पाने वालों में 16 खवातीन शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। आप समाप्त कीजिए कश्मीरी में खबरें। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: आदाब आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हुंद बुलेटिन हेचुस रऊफ अहमद। अमरीकी खारजी वजीर मार्को रूबियो करन आज नई दिल्ली में खारजी वजीर डॉक्टर एस जय शंकर सत दोतरफ मामलन पे कत बात अमे ब्रोह कर रात वजीर अजम नरेंद्र मोदी तो अमरीकी खारजी वजीर मार्को रूबियो नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी शराकत दारी में पेशरफ्त इलाको आलमी अमन सलामती सत वाबस्त मुख्तलिफ मामलन पे ख्याल बाबत वजीर अजम चौकी सोशल मीडिया पोस्टस में वोनम ज भारत अमरीका रोजन आलमी सतरस पे बजाई तो पापरजाई बापत करीबी अथवा सान काम कर तय पाव चेतस अमरीकी खारजी वजीर मार्को रूबियो भारत के चौन दोहन हिंदिस दौरस पे आमुत तम कर यम रतने शतवहमि तारीख क्वाड खारजी वजीर हजि मीटिंग अंदर तो शिरकत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनम इंतजामिया सत्य आम लुख तो जम्मू कश्मीर पे नारको टेररिज्म खत्म करने बापत पुर अजम तमो वो नशे सान नौजवान पुए अंदर अंदर खोखर कर तिमन तरक् हजि वत नश वह दूर निवान एल जी एस रात शुपिन जिले इंतजामिया तरफ मुनद मनशियात मुखालिफ पद यात्रा जंड हबित रवाना करने पत खताब कर तमो वो जम्मू कश्मीर मह मल माजे ये खौफ कि सायस मे तिंद खानदान हे ब्याख निशान ऐसा वो गो पज यह खौफ पूर पे खत्म कर जम्मू कश्मीर के प्रथ घर बापत सलामती यकीनी बनावन एल जे एन वो मजीद जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान वन अकिस ताकतवर तहरीकी मज तब्दील सपुदमुत नशस खिलाफ जारी मुहिम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान पूर जम्मू कश्मीर मज बड़ पैमानस पे जारी अत अखत दोहन हजे मुहिम तहत जम्मू कश्मीर कन तरफात मज बेदारी बापत मुख्तलिफ कस्म अलग अलग प्रोग्राम मुनद कर वनिस तम अत मुहिम तहत शुरह लक्ष तो सत्र सास चोर हथ चीत जानकारी प्रोग्राम मुनद कर आमुत इन मज करोड़ खुद ज्यादा लूको शिरकत करम ज़रात वजीर जावेद अहमद डारन को रात शुमाली हंद वर्मल जिल किस रफियाबाद हल्कस मज डोट पेन सरजदा इलाकन हूँ दौर तमो दुत अफसर हदायत जम लगविन मेव बागन तो फसलन सपदमित नुकसान अंदाज युथ कमिल वक्त पे इमदाद वातन हकी अत मौक पुन वजीर जिन वलिस अकिस डोडस रेतस दौरान यी क्रॉप इंशोरेंस स्कीम लोगू कर आज हिजरी रेत जुल हिजह सतम तारीख इन दोहन लछवाद हज अजिम सऊदी अरब के शहर मक्स मज हज कर बापत जमा सपदान तयाद तो सतस मनासिक हज चदायगी सिलसिल सपद पगह पे शुरू पगह गुजारन हज अजिम एहराम वलिथ पूर दोह मिनहस मज नम जिल हज सपदन फजर नमाज पत अजिम वकूफ अरफात बापत मैदान अरफात कुन रवान जम्मू कश्मीरिक डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीरन जम्मू कश्मीर कन कॉलेजन मज दाखिल प्रावने कन ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वोनम तम कर दाखिल बापत कॉलेज ऑप्शन ज्यादा खुद ज्यादा इस्तेमाल युत तिमन कुन नत कुन कॉलेज मज दाखिल हे मिलित आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत करान वो तमो अमे हवाले
2: मेरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक तो मेरी सब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो इमिजिएटली देखें अपना रैंक और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेस पे अपडेट हो जाएगा।
1: डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन जम्मू कश्मीर अमित शर्मा कर जमे किस मीटिंग सदारत मीटिंग दौरान आई सेल्फ इनूमरेशन की पेशरफ्त मरदमशुमारी ज़ास्तवह चन तैयारियों सामने तमो दुत अफसर हदायत जम कर वसी अवामी बेदारी मुहिम तेज युत ज्यादा खुद ज्यादा लूक ऑनलाइन पोर्टल जरिए पन इंदराज करनवित हकन दिही तरक्की तो पंचायत राज महकमिक सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असदन कर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन किस स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम तहत यूटी सोथरिच स्टीयरिंग कमेटी हजि मीटिंग सदारत मीटिंग अंदर आई जम्मू कश्मीर मज दी एंटरप्रेन्योरशिप तो गैर जरई जरिए मुआश कन मौकन पोछर दिन के मकसद शन नवन स्वीप।

103.5 MHz पर दिन का एक बजे चाहता है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है।

and you let her go. ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम में 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन आपसे थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है।

से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके की दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त तबकत हासिल हो गई है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नज़दीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूदात पर तबादले ख्याल किया और भारत अमरीका कलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात व वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काहिल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसीक का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमेरिका के कलीदी एतबार से यकसां मौक़िफ़ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमेरिका कलीदी एतबार से यकसां मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए चार दिन के दौरे पर कल भारत पहुँचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जबरदस्त सबकत हासिल कर ली है। आखिरी खबरें मिलने तक वो 44,891 वोटों से आगे चल रहे थे। सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक तीसरे मुकाम पर चल रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथी पोजीशन पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खान चेंग जोंग के पांच खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खान चेंग जोंग को सिक्किम की सरजमीन उसकी यादों और ज़मीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की ज़िंदगी में खान चेंग जोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। सिक्किम बाजाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है।
गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निमटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीज़ें पेश

की हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्जाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असली नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वजन और पैमाइश की जांच के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जाँच मराकज़ के रोल को उसत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सारिफिन के उमूर की वजारत ने बताया है कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकज को वजन और पैमाइश के 23 जुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाज़त होगी। तरमीम शुदा जाब्तों के तहत पेट्रोल, डीजल, LNG, LPG, CNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स को भी उन आलात की फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनकी जांच सरकार के तस्लीमशुदा जांच मराकज कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस के फैलने के पेश नज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफ़र कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मुकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। शुमाली चीन में एक कोयला कान में हुए एक धमाके से कम 82 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांक्सी सूबे में ल्यू शेनयू कोयला कान में हुआ ये गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल्स जुमरे में यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल विनस जोड़ी बनाकर खेलेंगे जबकि एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के अपने साथी खिलाड़ी मार्सेलो डोमिलिनर के साथ जोड़ी बनाकर मुकाबला करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वांखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त सबकत हासिल हो गई है। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: अपने स्कूलों में नहीं देते हैं, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से, और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। तो इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है, और उसे इस बात के लिए भी तैयार करना है कि ये जो ग्लोब है या ये जो यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है, ये हमारे पास एक अमानत है और हम उसके कस्टोडियन है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी न सिर्फ ये कि अडल्ट्स पे है बल्कि बच्चों पे है, क्योंकि बच्चे तो ज्यादा उसका इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में। अडल्ट तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, इन बच्चों को ही आगे फेस करना है उनके चैलेंजेस को। तो हम उन्हें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन से ही उन चैलेंजेस से रूबरू कराएं। जैसे हम श्रीनगर की अगर हम बात करें, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। अभी सुबह सुबह मैं हजरत बल गई थी तो मैंने देखा कि वही, जैसा कि मैं सिर्फ ये नहीं कर रही हूँ कि ये श्रीनगर का हाल है, हमारे और भी तमाम जो वाटर बॉडीज हैं दूसरे शहरों में उनका भी यही हाल है। तो मैं यहाँ पे खुदा न खासा तनकीद नहीं कर रही हूँ,
1: कोई बात नहीं, ये तो होना चाहिए, कंसर्न दिखाना चाहिए
0: जी, कि वहाँ पे भी वही हाल है कि पॉलीथीन के पैकेट्स पड़े हुए हैं, चिप्स के रैपर्स पड़े हुए हैं, इधर वो बिखरा हुआ। जाहिर सी बात है कि किसी बड़े समझदार आदमी का तो ये काम नहीं होगा, जाहिर तक बड़े बच्चों के साथ आए होंगे, उन बच्चों की ये तरबियत भी स्कूल की और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि ये जो एक मामूली रैपर है, एक पॉलीथीन है, जिसको हम एक हकीर चीज समझ करके यूं ही छोड़ देते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने वाटर बॉडीज के पास, ये किस तरह से इसको हार्म पहुंचाता है। क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जो प्लास्टिक है या जो पॉलीबैग्स हैं, ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि इनकी मकदार इतनी बढ़ चुकी है। आखिर मकदार कैसे बढ़ी? हमने आपने इस्तेमाल किया तभी तो बढ़ी, हमारे exactly. बच्चों ने इस्तेमाल किया और उसका बहुत ही रिस्पॉन्सिबली उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा कि हमें उसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सस्टेनेबिलिटी की एजुकेशन है, ये हमें सबसे पहले अपने स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट करने की जरूरत है। सस्टेनेबिलिटी एज अ होल कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक पार्ट यानी एनवायरमेंट में नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी इन टू द लाइवलीहुड, सस्टेनेबिलिटी इन टू द रिलेशनशिप। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे बड़े बड़े डिग्री याफ्ता नौजवान आज फेल है रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। और मैं सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ कि उनके वाइफ्स के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं बन रहे, बल्कि रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ, रिलेशनशिप उनके सिबलिंग्स के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, हर जगह आप देखेंगे तो ये रिलेशनशिप मेंटेनेंस ऑल्सो हैज बिकम अ चैलेंज। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इन रिलेशनशिप इज अगेन अ सब्जेक्ट टू बी टॉट इन द स्कूल्स कि हमें कैसे इसको मेंटेन करना है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि पीस की, आखिर जो लोग पीस को भंग कर रहे हैं, कभी ना कभी तो वो भी बच्चे थे, कभी ना कभी वो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज गए।
1: एग्जैक्टली
0: exactly. उनके जहन में ये बात डाली नहीं गई कि पीस की क्या प्राइस होती है। पीस इज प्राइसलेस। आप चाहे दुनिया में कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, If you are not able to lead a peaceful life, you are a great failure. So peace is the prime requirement of the human being, human okay. existence.
1: जी.
0: अब इसी पीस को चाहे वो रीजनल लेवल पे, चाहे वो नेशनल लेवल पे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे, अगर इसे भंग किया जा रहा है, इसको इसमें रखना डाला जा रहा है, तो समवेयर अवर एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
1: आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, जैसे एक क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि इट्स नॉट यू नो ये महदूद नहीं है किसी एक मुल्क के लिए
0: जी.
1: सारे मुल्क जो है, सारे जो ममालिक है, दुनिया इससे परेशान है। हम देखते हैं ग्लेशियर का इशू है, पानी का इशू है, जैसे आपने अभी वाटर बॉडीज की बात की, हर जगह जहां वाटर बॉडीज अगर एक जगह खराब होगी तो इसका असर दूसरी जगह होगा। इसके अलावा किस तरह से कौन कौन एरियाज, क्या क्या एरियाज हैं जिसमें हम, आप जिस पे फोकस कर रही हैं एज एन एक्सपर्ट, एज एन एजुकेशनिस्ट या सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट?
0: जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ग्लोबली मैं ये देखती हूँ कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर के अवेयरनेस बहुत ज्यादा है दूसरे ममालिक में। इवन जो कॉमन पीपल हैं वो भी समझ गए हैं कि अब ये वक्त नहीं है कि हम सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट पे, यूएन पे या फिर पॉलिसी मेकर्स पे छोड़े।
1: बिल्कुल,
0: ये जिम्मेदारी हर एक इंडिविजुअल को लेनी पड़ेगी,
1: हर एक सिटीजन की,
0: हर एक
1: जहां भी रहता है,
0: बिकॉज वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस अर्थ। तो जो कोई इस अर्थ पे रह रहा है सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में इसके लिए जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले तो हम वेस्टेज कॉशियस नहीं है। वेस्टेज कॉशियस का मतलब ये होता है कि हमें ये एहसास हो कि हम कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो वेस्टेज कॉन्शियसनेस है इसे लाना भी बहुत जरूरी है। इसका एहसास

0: इंडिविजुअल को होना जरूरी है।
1: जी
0: मैं वार्डरोब की मिसाल देती हूँ हर एक को, कहती हूँ जब भी वार्डरोब खोलते हैं लोग, क्या पहन के जाऊं, कुछ है ही नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, जबकि अगर आप मुआयना करेंगे तो वार्डरोब में कम से कम नहीं तो 25 से 30 ड्रेसेस होंगी ही। सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि क्या इतनी की हमें जरूरत है।
1: ओके
0: देखिए, द क्रिएटर हैज गिवन अस एज पर अवर नीड, नॉट एज पर अवर ग्रीड। ग्रीड में तो ये होगा कि पूरे कायनात की सारी चीजें मैं चाहूंगी, मैं ही हजम कर जाऊं, मैं ही हड़प कर जाऊं, तो इसके लिए तो नहीं बनाया गया है। तो शुरुआत होती है सस्टेनेबिलिटी की हमारे वार्डरोब से, हमारे किचन से। हम अपनी शादियों को देखें, कितना वेस्टेज शादियों में होता है। 250 आइटम्स थे, एक शादी मैंने अटेंड की, जो जो डिशेस थी 250 डिशेस थी। आपको लगता है कि क्या एक डिनर के लिए 250 डिशेस का होना जरूरी है? इसके अलावा जो एक बुफे सिस्टम हो गया है शादियों में भी, बुफे सिस्टम में क्या है कि आप प्लेट में भर लेते हैं अपनी ग्रीड के हिसाब से, जो आप फिनिश नहीं कर पाते वो पूरा गार्बेज में जाता है। करोड़ों लोग दुनिया में भूखों मर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक तारीफ करूंगी, एक पारसी शादी मैंने अटेंड की,
1: कहाँ पे?
0: मुंबई में।
1: मुंबई में।
0: और मैं इतना खुश हुई, उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि आपको पारसी मील चाहिए या वेजिटेरियन मील चाहिए, हमने वेजिटेरियन मील कर दिया
1: जी।
0: उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से, वहां भी तादाद काफी थी लोगों की, ऐसा नहीं कि 200-400 थे, बहुत थे, काफी थे। उन्होंने इतना बेहतरीन इंतजाम किया था कि एक टेबल एक चेयर, पूरे डाइनिंग टेबल की तरह उन्होंने अरेंजमेंट किया, हर एक को उन्होंने टेबल चेयर पे बिठाया लाइन से, और उनके जो सर्व करने वाले लोग थे वो सब बारी बारी चीजें ले लेकर आते रहे, जितनी भी डिशेस उनके पास थी, और हर एक को पूछ पूछ के उन्होंने सर्व किया। और ये मैंने महसूस किया कि वहां पे वेस्टेज जो है वो बिल्कुल निग्लिजिबल कह सकते हैं।
2: समीन, जम्मू कश्मीर बैंक को हमारे इक्तिसादी मंजरनामे में जबरदस्त अहमियत हासिल है। ये बैंक अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ हमारे मुआशी हालात की बेहतरी का नकीब बन गया है, बल्कि रोजगार की फराहमी के ताल्लुक से भी ये बैंक हमारे माली इदारों में सबसे आगे है। बैंक की स्कीमों, पॉलिसियों और अब तक की हसूलियाबियों के ताल्लुक से डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी श्रीनगर तारिक राथर ने हाल ही में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी के साथ एक मुफस्सल बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बातचीत का अगला हिस्सा।
3: सर, असल में हमारी माएं बहनें ऐसे भी हैं, नानियां हम कहेंगे, दादियां हम कहेंगे, उनका भी बैंक के साथ वास्ता है, तो उन लोगों के लिए वही है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स वहां पे होगा, दे विल फैसिलिटेट देयर।
4: बिल्कुल, वो तो हम कर ही रहे हैं ना, मैंने कहा आपको ऑलरेडी हम कर रहे हैं और फर्दर रिक्रूटमेंट भी करेंगे। देखिए, हम किसी भी सेक्शन को डिप्राइव नहीं करना चाहते, और मैं इस बात को मानता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सीनियर सिटीजन है वो हमारे सबसे लॉयल कस्टमर्स हैं, तो उनको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए तो हमारे फिजिकल ब्रांचेस रहेंगे ही हमेशा। पर हाँ, आप देखेंगे किसी भी बैंक का 95 से 96% जो ट्रांजेक्शन होता है वो डिजिटली होता है आज के डेट में, तो चेंजिंग टाइम्स के साथ तो चेंज करना पड़ता है, हम भी चेंज कर रहे हैं, और लोगों को अल्टीमेटली समझना पड़ेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपको मजबूरी में डिजिटल माध्यम यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने कहा कि हम साल में 60-65 हज़ार कैंप्स करते हैं, जस्ट टू प्रोवाइड दिस, ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कैसे सेफ वे में आप डिजिटल चैनल्स को भी यूज कर सके। पर हाँ, हमारे फिजिकल ब्रांचेस हमेशा रहेंगे, जब तक हमारे लोगों को उनकी जरूरत है हम सर्व करते रहेंगे।
3: जो वीकली जो आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, रेडियो की तरफ आता हूँ, 2001 से चल रहा है, तकरीबन 1300 एपिसोड्स हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो J&K और लद्दाख में सुना जाता है प्रसार भारती के आकाशवाणी चैनल से, तो इसका मतलब यह है कि आप सिल्वर जुबली लैंडमार्क पहुंच रहे हैं, तकरीबन 25 साल हो रहे हैं, तो सर इसको आप कैसे देखते हैं और इसको आप क्या बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करना चाहेंगे?
4: बिल्कुल बिल्कुल, और हम बहुत एक्चुअली शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें एक मीडियम मिला हुआ है जिसके थ्रू हम उनको उनके पास पहुंचा सकते हैं। और मेरे ख्याल से जब इतने साल से ये 25वां साल चलेगा या हम पहुंच रहे हैं उसमें, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम पॉपुलर है, तभी इतने साल से चल रहा है, अगर नहीं पॉपुलर होता तो नहीं चलता। तो ये एक ये भी माध्यम है लोगों को अवेयर करने का कि बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, और कैसे आप सेफली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको एक अच्छे तरीके से एक सेलिब्रेशन के रूप में हम मनाना चाहेंगे। डेफिनेटली
3: सर, ऐसे कोई प्लान है आपके पास कि इसको आप उन लाइंस पे ले जाना चाहेंगे जिसमें पॉडकास्टिंग हो और आपका ही जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतर तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचेगा, क्लाइंट्स तक पहुंचेगा। इसमें एक और चीज है, इसमें एक और बात बताई जाती है, जैसे आपका रेडियो

0: जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है आकाशवाणी से, इसमें जो ऑडियो इनपुट है वो बहुत कम रहता है. आई मीन लाइक वी आर टॉकिंग, वी आर गिविंग यू नो ड्राई न्यूज, ड्राई एक्टिविटीज, देन देर शुड बी सम ऑडियो इनपुट्स ऑफ ऑफिसर्स कंसर्न, ऑफिसर्स कंसर्न ऑफिशियल्स, या जहां पे आप मान लीजिए कैंप हो रहा है, कोई और चीज हो रही है, तो वहां से जो पब्लिक रिएक्शन है, पब्लिक यू नो वहां से जो पब्लिक टेस्टिमोनियल्स होते हैं, सर इस तरह की रिक्वायरमेंट बन रही है, लोग ऐसा कुछ फीडबैक दे रहे हैं.
1: इस इंटरव्यू के माध्यम से तो इस बात के बारे में, इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बोलना मुश्किल है। इस पे बैठ करके हमारा जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स है, उसमें बात करके इस पे हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं। एट द मोमेंट मैं ऑफ हैंड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बैंक में अगर कोई चीज डिसीजन लेना है तो उसपे काफी ये करना पड़ता है, डिलीबरेट करना पड़ता है, फिर हमारा बोर्ड है, बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हाँ, डेफिनेटली हम बैठ करके हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। आइडिया
0: सर
1: बहुत अच्छा है, हम इसको आगे ले जा सकते हैं।
0: जे एंड के बैंक शेयर्स की बात होती है, सर हमारे कस्टमर्स किस तरह से समझेंगे ये शेयर बिजनेस या ट्रेडिंग क्या है, और उनको इसमें शेयर्स में जाने के लिए, शेयर परचेज या जो भी है इसका, किस तरह से उनको हम फ्रॉम जे एंड के बैंक आप किस तरह से उनको एश्योर करेंगे कि दिस इज अ वेरी शेयर्स में किस तरह का होगा, उनका प्रॉफिट भी होगा?
1: अगर आप सिर्फ जे एन के बैंक के शेयर्स की बात करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसा मूवमेंट होता है जे एन के बैंक के शेयर्स में। पिछले एक साल में जे एन के बैंक के शेयर्स ने करीब करीब 50% का इम्प्रूवमेंट किया है। 23 अप्रैल से आज तक में जो शेयर का प्राइस है मार्केट में, वो करीब करीब 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो अपनी जगह पे अलग है, लेकिन मैं किसी कस्टमर को बिना सोचे समझे, बिना किसी स्क्रिप्ट को समझे कभी भी मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूँ। हमारा एक सब्सिडियरी है जेके बी एफ एस एल, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडियरी है, वो शेयर्स सेल परचेज का काम करती है। उनके यहाँ पे लोग हैं जो इस चीज के बारे में डिटेल्स में कस्टमर्स को समझा सकते हैं। किसी भी कस्टमर को, अगर किसी भी सिटीजन को अगर शेयर परचेज और सेल में इंटरेस्ट है, तो वो जेके बी एफ एस एल से कॉन्टेक्ट कर सकता है, वहाँ अकाउंट खोल सकता है और उनसे ये सर्विसेज ले सकता है। पर ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक जनरल पर्सन जो जिसको शेयर्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, उनको शेयर्स में ट्रेडिंग करने से पहले उसकी समझ होनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज शेयर्स थोड़ा रिस्की आइटम है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में या म्यूचुअल फंड्स में करना एक नॉर्मल सिटीजन के लिए ज्यादा सेफ होता है।
0: ये जो जम्मू कश्मीर के लोग या लद्दाख के लोग जे एंड के बैंक को अपना बैंक समझते हैं, तो आपकी फीलिंग किस तरह आपकी है कि जब ऐसा लोग कहते हैं, और आप किस तरह से समझते हैं कि आप कितनी जिम्मेदारी का काम है ये कि जब इतना भरोसा लोगों को है जे एंड के बैंक पे?
1: इसका तो एक बहुत क्लियर ये है, सबूत है। अगर हम अपना प्रेजेंस देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो सभी ब्रांचेस के साथ अगर करेंगे तो सिर्फ 37% ब्रांचेस हैं हमारे। 63% ब्रांचेस दूसरे बैंक्स के हैं टोटल में, लेकिन बिजनेस का शेयर हमारा 60% है। तो ये एक ही चीज साबित करता है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे ही भरोसा है, और होना भी चाहिए। मैंने जितनी स्कीम्स के बारे में कहा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कहा, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम है, चाहे वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सीएसआर फंड्स का यूज करने का जहां तक सवाल है, ये सारा जे एंड के बैंक ही करता है इस सोसाइटी के अंदर। तो जहां मैंने पहले भी कहा कि हमारे बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं यहाँ के सिटीजन के लिए, वैसे सिटीजन भी बहुत लॉयल हैं इस बैंक के लिए, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके।
0: स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इस तरह का कहा जाता है, नॉट श्योर ऐसी बात आती है पब्लिक डोमेन में, कि एनकरेज नहीं किया जाता है टू प्रोवाइड लोन्स या फाइनेंशियल सपोर्ट एज कम्पेयर टू बिग हाउसेज।
1: हमारे टोटल लोन पोर्टफोलियो का करीब करीब 50% से ऊपर जो है वो स्मॉल बिजनेसेस का ही है, 60%। इनफैक्ट मैंने पिछली बार जो उसका फिगर देखा था, 63% हमारा जो लोन पोर्टफोलियो है ना, वो स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस का है, चाहे वो एमएसएमई का हो या फिर उसका एग्रीकल्चर का हो या ट्रेडिंग का हो या किसी का भी, हम तो हमेशा प्रमोट करते हैं। और जो पीछे हमारा जून महीने में जो स्कीम आया था मिशन युवा का, उसमें हमने 25,000 लोगों को ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे लोन्स में हमने दिए हैं। तो बेसिकली हम काम ही कर रहे हैं इस एरिया में सबसे ज्यादा, और हमारे बड़े लोन्स बहुत कम हैं।

0: कश्मीर के अंदर में हमारे ज्यादा छोटे लोन्स हैं, मतलब टोटल वॉल्यूम में भी नंबर्स में भी, नंबर्स में तो बहुत ज्यादा है। तो हमारा परहेज नहीं है कि किसी भी सेक्टर में बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी हमारा सेम बिहेवियर रहता है, उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने बैंक में। उसी तरह से छोटे लोन्स डेफिनेटली हम करते हैं। एमएसएमई का जो पोर्टफोलियो हुआ हमारा 20-22 हज़ार करोड़ का है, जो बिल्कुल छोटे छोटे लोन्स हैं, तो हम तो उस पे ही काम कर रहे हैं आज, अभी नहीं पिछले 2-4 दशक से ये काम कर रहे हैं।
1: कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से किस तरह आप इसके बारे में कहना चाहेंगे कि जेएंडके बैंक कितना आगे है या कितने प्लान्स हैं इसके बारे में?
0: अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं सीएसआर में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। तो हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम सीएसआर के तहत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं, और करीब करीब एंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है, और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।

0: करोड़ का है, जो बिल्कुल छोटे छोटे लोन्स हैं। तो हम तो उस पे ही काम कर रहे हैं आज, अभी नहीं, पिछले 2-4 दशक से ये काम कर रहे हैं।
1: कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से किस तरह आप इसके बारे में कहना चाहेंगे कि जेएंडके बैंक कितना आगे है या कितने प्लान्स हैं इसके बारे में?
0: अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं सीएसआर में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। तो हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम सीएसआर के तहत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं। और करीब करीब इंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है, और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।
1: रिपोर्टेडली बहुत सारे केसेस जो है बैंक अकाउंट्स में है, जैसे सोशल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे बहुत सारे कई ऑर्गेनाइजेशन के फ्रीज अकाउंट हुए हैं किसी डिस्प्यूट की वजह से या कोर्ट केसेस की वजह से, और पब्लिक मनी जो है दैट्स नॉट बी यूटिलाइज्ड, जो डोनर्स हैं या कंट्रीब्यूटर्स हैं उन अकाउंट्स के लिए जो जेएंडके बैंक से जुड़े वहां पे हैं। सर, इस बारे में क्या आप ऐसा कोई बैलेंस्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिशिएटिव ले सकते हैं जहां पे ये अकाउंट जो है, क्या इसमें डिफ्रीजिंग का कोई आप इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं? ये उन लोगों के मसाइल हल होंगे जिनके लिए पैसा लोग एज डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं।
0: हम रिस्पॉन्सिबल बैंकर हैं और बैंक हैं, और हमें रेगुलेशंस और लॉ ऑफ द लैंड मान के चलना पड़ता है। और जो आपने ये फ्रोजन अकाउंट्स की बात की ना, ये बैंक ने फ्रीज नहीं किया है, बैंक को कहा गया है इनको फ्रीज करने के लिए बाय डिफरेंट अथॉरिटीज जो इन सबको मॉनिटर करते हैं, चाहे वो FCRA से रिलेटेड हो या लीगल कोई उसमें इश्यूज हो। तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हम या तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी है उनके कहने पे ये फ्रीज किया गया है, या तो रेगुलेटर का डायरेक्शन है इसको फ्रीज करने का। तो उस पे हम अपने तरफ से कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम वी आर बाउंड बाई दीज रेगुलेशंस एंड लॉज।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर एंड एनलाइटनिंग अवर लिसनर्स एंड योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अबाउट लेटेस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बैंक।
0: थैंक यू
1: सर,
0: वेरी मच।
2: समीन, किसी भी मुल्क के बाकी ममालिक के साथ बेहतर रवाबित का मुजहिर है कि इन ममालिक में लोगों से लोगों तक के रवाबित बढ़ जाएं और आवाजाही का सिलसिला आसान हो। दौर जदीद में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए कारोबार और शराकत दारी के नतीजे में अब काफी तादाद में लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते हैं और इसके लिए उन्हें सफरी दस्तावेजात या पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हर मुल्क में खारजा उमूर की वजारत अपने फराइज अंजाम देती है। हमारे यहाँ पासपोर्ट या सफरी दस्तावेजात के हुसूल को आसान बनाने के लिए शहर शहर में पासपोर्ट दफातर मौजूद हैं और इसके अलावा भी कई तरह की सहूलियात पासपोर्ट दफातर ने दस्तियाब रखी हैं, ताकि लोगों को पासपोर्ट के हुसूल में दिक्कतों या गैर जरूरी तवालत का सामना न करना पड़े। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने भी हाल ही में लद्दाख और कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पासपोर्ट वैन्स के जरिए इलाकावार जाकर लोगों को उनके घरों के नजदीक पासपोर्ट फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में मुफस्सल बातचीत की थी, जिसका पहले ही हम आपको कुछ हिस्सा सुना चुके हैं। आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू का बाकी हिस्सा।
3: सर, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के पास टू मेक इट मोर रोबस्ट दिस सिस्टम, मोर प्रोफेशनल?
4: ये प्लान्स वगैरह तो मिनिस्ट्री लेवल पे ही डिसाइड होता है, बट जो भी हमारे पास डायरेक्शंस आते हैं उनको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं।
3: आप कैसे देखते हैं कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर जो है, इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट्स है, लॉन्ग टर्म में रिक्वायरमेंट्स, इसको टू मेक इट मोर पीपल फ्रेंडली, टू मेक इट मोर यू नो जो ग्राउंड पे एक असर रहे और लोगों की जो खिदमत है, लोगों का जो सर जो, क्योंकि ये सर्विस है, पासपोर्ट सर्विस है, सो सर्विस मीन्स वी आर सर्विंग पीपल, यू आर सर्विंग पीपल। तो इसमें किस तरह से आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर सर्विस आप लोगों को दे सकते, क्या किया जाना चाहिए, क्या समझते हैं आप?
4: हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि हम एप्लीकेंट को ट्रांसपेरेंट मैनर में और जल्दी ही पासपोर्ट सरल प्रक्रिया के तहत जारी करें, जिसके लिए हमारे यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया ऑलरेडी चल रहा है और समय समय पे स्टाफ वगैरह सभी को ब्रीफ किया जाता है कि पब्लिक को आप प्रॉपरली हैंडल करेंगे, उनको जो सूचना है प्रॉपरली अवेलेबल करवाएंगे। और ये बीच बीच में हम लोग अवेयरनेस थ्रू मीडिया भी दे देते हैं कि भी क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या किस तरह एप्लीकेशन उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये सब चीज एडवाइजरी ऑनलाइन भी दी गई।
3: रावत साहब, जो पब्लिक रीच आउट है, आउटरीच जो है, उसमें एक माध्यम व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बड़े इजी होते हैं आज की तारीख में, लोग इजीली यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, ट्विटर भी यूज

0: करते हैं, क्या अभी तक जो हमारी नॉलेज में है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका हेल्पलाइन अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है आपका व्हाट्सएप नंबर जनरेट करके लोगों को आसानी?
1: इस पे देखा, इस पे विचार किया जाएगा, ये बहुत यूजफुल है, आजकल सभी लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए, डेफिनेटली हम लोग इस पे विचार करेंगे।
0: रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो यहाँ पे काम होता है, एक टाइमलाइन है, एक सिस्टम है जो देखा गया है, हमने भी देखा एज मीडिया पर्सन एज एन इंस्टीट्यूशन, आप कितना संतुष्ट हैं इस काम से? अपने प्रोफेशनल्स जो यहाँ पे काम वर्कफोर्स है, जो यहाँ पे टेक्निकली साउंड प्रोफेशनली साउंड लोग काम कर रहे हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए आप क्या करते हैं?
1: हमारे पास वेल एक्सपीरियंस स्टाफ है, प्रैक्टिकल स्टाफ भी वेल एक्सपीरियंस है, और बीच बीच में हम लोग उनको सेशन लेकर के उनको ब्रीफ करते हैं, जहाँ पे भी उनको लगता है कि कुछ चीजें दिक्कत आ रही है, सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो ऑफिस में इसका सेशन लेकर के हम लोग उनको ब्रीफ किया जाता है।
0: क्योंकि पब्लिक यहाँ पे आती है हर रोज वर्किंग डे पे, तो जाहिर समटाइम्स देयर आर यू नो व्हाट हैपेंस कि लोग जो है उनका मिजाज डिफरेंट होता है, और हमारा स्टाफ आपका स्टाफ जो यहाँ पे दोज हु आर डीलिंग विद द पीपल डायरेक्टली, दिस इज वन ऑन वन इंटरेक्शन, वन ऑन वन डीलिंग, तो इसको बेहतर तरीके से करने के लिए आपका स्टाफ किस तरह से काम करता
1: है? हमारे स्टाफ बेसिकली वो अपने नियम से जो भी सहूलियत दे सकते हैं एप्लीकेंट को, वो पूरी की कोशिश की जाती है। स्टाफ को बीच बीच में जैसे मैंने बताया कि हम लोग उनको ब्रीफ करते रहते हैं, रूल रेगुलेशंस के बारे में भी उनको समय समय पे रिमाइंड किया जाता है, पब्लिक डीलिंग्स के बारे में उनको बताया जाता है कि कैसे आपको बेहतर पब्लिक डीलिंग करनी है, एप्लीकेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करना, सभी चीजें उनको बताया जाता है समय समय।
0: रावत साहब, आपका कोई मैसेज सारे एप्लीकेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और एट अ वेरी इन अ नटशेल क्या आप बताना चाहेंगे किसी भी एप्लीकेंट को, उसको एप्लीकेंट को किस तरह से प्रोसेसिंग में जाना चाहिए सो दैट ये जो इनकन्वीनियंस है या जो आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है पूरी, वो उनका काम जो है किस तरह से ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट किया जा सकता है आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन?
1: एप्लीकेंट को जो हमारी एडवाइजरी दी हुई है मिनिस्ट्री की साइट पे दिया हुआ कि डॉक्यूमेंट एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई है, उनको मेरा सजेशन है कि वो अपना हमारा पासपोर्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके गाइडलाइंस को प्रॉपरली पढ़ लें, उसको समझ लें, उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के उपरांत अपने जो भी तय समय पे है वो अपना ओरिजिनल दस्तावेज जरूर साथ लेके आए। किसी भी अनऑथराइज पर्सन या कोई दलाल या टाउट्स वगैरह है उनकी बिल्कुल भी उन पे संपर्क में ना करें, जो भी अगर उन्हें कोई जरूरत होती किसी तरह की सूचना की जरूरत है, कोई डॉक्यूमेंट्स में डाउट है, तो दे कैन विजिट द पासपोर्ट ऑफिस।
0: बी एस रावत साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया।
2: इसके साथ ही नई मंजिलें प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: जी समीना, समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम नई मंजिलें, पेशकश तारिक अहमद राथर, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडिया 268 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुबह के 3 बजने वाले हैं। लीजिए अब पेश है फौजबाई, उनके लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम।

जय हिंद। खुशबू फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूं आपकी रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपके नजर फिल्म एक था टाइगर से ये प्यारा संगीत तरुण मलिक और मोहित चौहान की आवाजें।

जी दोस्तों, आपने फिल्म एक था टाइगर से ये गीत सुना। वाजिद अली, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। अगला नगमा हमने चुना है फिल्म लकी, नो टाइम फॉर लव से गीत अदनान समी की आवाज में, समीर के बोल, अदनान समी का मधुर संगीत।

साथी जे फिल्म नमस्ते लंदन से गीत जावेद अख्तर के बोल हिमेश रेशमिया का मधुर संगीत आरडीबी और साथियों की आवाजें।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
3: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
4: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में, घर घर की आवाज, ऑल इंडिया रेडियो की आवाज, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप DTSS और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। समझ कीजिए फिल्म दिल से ये टाइटल गीत AR रहमान और साथियों की आवाज़ें, गुलजार के बोल AR रहमान का मधुर संगीत।

दिल है तुम्हारा। जी दोस्तों, ये है हमारी अगली फिल्म जिसका नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण।

कच्चे धागे। अब पेश है फिल्म से गीत, कुमार सानू और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में आनंद बख्शी के बोल संगीत से सजा इस नगमे को नुसरत फतेह अली खान साहब ने।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म गुनाह से ये गीत फल्का याग्निक अभिजीत और साथियों की आवाजों में गीत संगीत आनंद राज आनंद का।

जी दोस्तों, इसी के साथ दीजिए अपनी मेजबान सुफिया फातिमा को इजाजत। आपसे वादा है अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम है 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 3:50 हो रहे हैं। अब यहाँ से उर्दू खबरें निश्चित होंगी।

0: एक स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ इनको जो स्क्रीन एडिक्शन है ये भी बहुत रहता है, तो रिस्क को बढ़ा देता है। जरूरत इस चीज की है कि पेरेंट्स भी अपने तरीके से होशियार रहे, पर्सनैलिटी चेंज वो बच्चे में अगर देखते हैं तो सीरियसली ले लें, और बच्चे को फॉलो किया करें इसके बिहेवियर को, इसकी कंपनीज को, ताकि हम इन मासूम बच्चों को इस ट्रांजिशन की तरफ जाने से बचाएं।
1: शोबाई तालीम समाज में एक मस्बत बदलाव लाने में कलीदी रोल अदा करता है, तहम वक्त की ज़रूरत है कि शोबाई तालीम को जदीदियत से हमकिनार करने के साथ साथ इसमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक बदलाव लाया जाए। इस ताल्लुक से दुबई में मुकीम एक बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान के इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस रियल है और वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज ए टूल लेना है, लेकिन अपना दिमाग उसमें लगाना है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे स्कूल के तलबा तालबात हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है इससे, कि वो अपना दिमाग लगाते नहीं है। क्वेश्चन टाइप किया, उससे आंसर ले लिया, उसको कॉपी कर लिया, कुछ क्रिएटिव अगर टीचर ने करने को दिया है तो वो भी वहां से लिया, इससे कॉपी कर लिया, वहां से राइटअप कॉपी कर लिया, तो इससे क्रिएटिविटी पे बहुत फर्क पड़ा, उनके सोचने की सलाहियत कम हो रही है। सोचने की सलाहियत जो हमारे स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स है उससे भी बहुत हो रही है।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौहर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 नशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तहान 1 जून को लिया जाएगा।
3: IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहाना प्रोग्राम की ये 134वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपनी आरा और तजावीज टोल फ्री नंबर 7800111800 पर भेज सकते हैं। तजावीज नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर भी 29 मई तक भेजी जा सकती हैं। आम लोग इस मकसद के लिए 1922 पर एक मिस कॉल भी दे सकते हैं। और अब रेल से मुतलिक की खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मुसाफिरों की सहूलियत और तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में टिकट चेकिंग का एक खसूसी अमल भी शुरू किया गया, जिसके तहत 2 दिन के दौरान 1061 मुसाफिरों से टिकट न रखने और कानून की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में 5,13,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। टिकट चेकिंग के बारे में सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सुबह 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
4: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडिया 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सफर के 4 बज चुके हैं। अपना शुरू होता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये तिजारती वक्फा।
5: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

अस्थी आवाज तुसा तोड़ी पहुंच रही है आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी। मैं हाँ तुसा दा मेजबान इम्तियाज अहमद मीर प्यार खलूस ते तजीम नाल अपने सारे सामीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया आखदा। सामीन उम्मीद करदे हां कि तुसी सारे बखैर वाफियत और हमेशा की तरह अपने पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कौर नाल सुन रहे हो। सो सामीन अज अतारा दी महफिल है, हालात तो वाका ते गीत संगीत की महफिल कनके तुसां दी खिदमत बिच हाजिर हां। सामीन अज प्रोग्राम दे शुरू बिच तुसां नाल इस गल दा जिक्र करां कि दो धड़े बाद ईद उल अज़हा दा त्यौहार मनाया गया सी। सारे लोग तुसी ईद की तैयारियों में मसरूफ हो सोगे। असं इतना आखना चाहसा तुसा को कि जोड़े लोग कुरबानी करते हैं वो कुरबानी का जोड़ा गोश्त है वो मुस्तहिक जोड़े लोग होंगे उन्होंने तो उन्हें जरूर पहुँचावन और नाल नाल अपने आंढ गुआंढ अपने घर इलाके भी दिखना चाहिए कि कोई भी मुस्तहिक आदमी या कोई भी इजा आदमी जिसकी उतनी वसत नहीं उसको मदद करनी चाहिए ताकि तुसा की खुशियां बिचो भी शरीक हो सकै। सामीन ईद के मायने खुशी तो आदि और यह त्यौहार खुशियां का और नाल नाल कुरबानी करन का त्यौहार है। इस वास्ते असां लोगों को एक दूए की खुशी का ख्याल भी रखना चाहिए और कुरबानी बिच भी बढ़ चढ़ के शिरकत करनी चाहिए। जेड़े भी लोग साहिब एतात हैं जिन्हों को वसत है उन्हों को कुरबानी देनी चाहिए और गरीब मसाकीन मुस्तहिक लोगों का खास खास ख्याल रखना चाहिए। सामीन असीं दुआ गुरे सां कि खुदा करे कि ईद सारे वास्ते खुशी अमन और सलामती का पैगाम किनके आवे आपस में इतफाक व इतिहाद बनिया दर रवे। समय और पहला प्रोग्राम के शुरू में तुसां दी नज़र एक गीत करते हैं। कलाम है मजरूह मलनगामी और आवाज़ है सैयद मोहम्मद इकबाल मलनगामी और आओ सुनते हैं।

सैयद मोहम्मद इकबाल मलंगामी गीत पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि गीत तुसां को पसंद आया। उसी कलामा साहब मजरूह मलंगामी होरां दा लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन शुपियां भी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पद यात्रा भी शिरकत की थी। इजतमाई अजम ने दौर के आगाज़ की अलामत 43 ध्याड़े पहला शुरू की गई मुहिम ताकतवर अवामी तहरीक भी तब्दील। इस चैलेंज का हिम्मत और अजम नाल मुकाबला करना उसीगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। अमरीकी वजीर खारजा नई दिल्ली पहुँच गए। वजीर अजम मोदी नाल मुलाकात, वाइट हाउस आने की दावत दी। इलाकई व आलमी अमन थी जुड़े मसायल और स्ट्रैटजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। जम्मू श्रीनगर बंदे भारत ट्रेन 22 रोज़ बिच 1,00,000 मुसाफरों सुन सफर किया। अहम पेशरफ्त जम्मू कश्मीर भी रेलवे की तारीख का सुनहरा बाब हुकाम। नशा मुक्त अभियान को वसी पैमाने पर अवामी हमायत। जम्मू कश्मीर पारबीज नफाज को तेज़ किया गया। बड़े पैमाने पर अवामी रसाई और बेदारी मुहिम जारी। 19वां रोज़गार मेला वजीर आजम सुने 51,000 तकरीरना में तकसीम किए। दुनिया हिंदुस्तान के तरक्याती सफर का हिस्सा बनने के मुतमनी। नौजवानों को बाख्तियार और बारोजगार बनाने वास्ते पुरअजम। 2047 तौनी विकसित भारत बनाना असांदा अजम। ईद उल अज़हा और अमरनाथ यात्रा 2026 कश्मीर भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। आई जी पी की जेर सदारत श्रीनगर भी आला सतह की मीटिंग। समेत तेल मार्केटिंग कंपनियां सुन बारे आले रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली भी आज थी पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। दुए शहरों में भी इसकी तनासब इजाफा किया गया है। मगरबी एशिया में जारी बुहरान और सप्लाई भी रुकावट की वजह से बैन अलावी मार्केट भी खाम तेल की कीमतों में उछालों डॉलर के मुकाबले भी रुपये की जारी गिरावट थी। तेल मार्केटिंग कंपनियों की लागत बढ़ रही है। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। रवा माली साल वास्ते सरकारी अखराजात महदूद करने का फैसला। कफायत शारी पॉलिसी नाफज। भर्ती अमल पर फिलहाल रोक। गैर मुल्की दौरिया नई गड्डिया खरीदने और होटलों भी सरकारी इजलासों पर पाबंदी आयद। वजीर आला दे मसावी बाइख्तियार अदारे दा सरबरा ओसीगा। लद्दाख वास्ते मुंतखिब यूटी सतह दी हुकूमत दी तजवीज़ पेश। तमाम 7 जिलों को खुद मुख्तार कौंसलां मिल सनगियां। ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करने वास्ते मुंतखिब अदारा ओसीगा। और सामीन हूँ असं तुसे नाल रोज़गार के हवाले नाल कुछ गल्लां सांझियां करां। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकैडमी एडमिनिस्ट्रेशन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और दीगर मुख्तलिफ महकमे असामियां पुर किते वास्ते उम्मीदवारों को दरखास्तां तलब कीतियां गईं।

0: हो सकता कि उन्हें ज़्यादा खुशी मिलती है,
1: हाँ
0: पर कुछ ऐसियां नहीं पर जिन्हें घरों निकलना है, तो उसने देखो किन्नी जल्दी उठना, किन्नी जल्दी काम मुकाना, थोड़ा माइंड भी इस चीज़ वास्ते प्रिपेयर नहीं होता ना।
1: जी जी
0: तुसी
1: जी
0: मेंटली खुश तो नहीं हो सकते कि तुसी हर काम नू तेजी नाल करके निकल, खैर तुहाडी रूटीन है, तुसी पैसा कमाना है उस दे बाद। ते मैनू नहीं लगता कि वो ज़्यादा खुशी महसूस कर, पहले वो अपनी लाइफ तक रूल बना लेंदी है, मैं इन्ने बजे उठना, इन्ने बजे जाना, तो उसकी लाइफ सिस्टमैटिकली उस तरह चलती है।
1: जी
0: इन्हें
1: जी
0: खुशी का कोई रोल नहीं आ सकता मेरे ख्याल में।
1: अच्छा हरप्रीत जी, एक्सपोजर किदे कोल है, घरेलू वाले कोल की साड़ी जड़ी नौकरी पेशा है उदे कोल एक्सपोजर ज़्यादा है?
0: देखो जी, एक्सपोजर तो बेसिक जो आउटगोइंग होंगे उन्होंने को होंगे,
1: हाँ
0: क्योंकि वो दुनिया में रह के दुनिया नाल वापरते हैं,
1: जी जी
0: जिस
1: जी
0: तरह देखते हैं, सब चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उस मुताबिक चलते हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि जी घर बैठी हो ये एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि अजकल एक्सपोजर के बहुत सारे जरिए ने, मोबाइल है, टीवी है,
1: जी
0: अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं लेडीज़ वास्ते, वो टाइम कट के वो चीज़ देख सकती है, अच्छे अच्छे ड्रेसिज ने पाने वास्ते, हर एक चीज़ तो अवेलेबल है सोशल मीडिया के अंदर, तो
1: लेकिन तुहानू
0: एक्सपोजर
1: की लगता है
0: यूजफुल
1: कि
0: है।
1: अंदर बैठ के एक्सपोजर मिलता है?
0: हाँ क्यों नहीं,
1: अच्छा
0: तुहाडा इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ च।
1: हाँ
0: मोस्टली तुसी लेडीज़ देखिया ने जिहड़ियां होममेकर्स होंदियां ने। अच्छा अजकल दूसरा ये कि लेडीज़ अजकल किटी पार्टीज बहुत अटेंड
1: जी
0: करदियां ने,
1: जी
0: इस तरह के बड़े फंक्शन करदियां ने अपने घर च, कोई रिलीजियस फंक्शन भी कर लैंदियां, कुछ गैट टूगैदर हो जांदियां ने, तो नेचर एक दूजे नाल बैठ के गलबात करके उन्होंने नाल मेल मिलाप करके तो एक्सपोजर मिल जाता है। तो आउट गोइंग का अपना एक्सपोजर होंदा है,
1: जी
0: क्योंकि वह संसार के वापरती है, कई लोगों को मिलती है, तो इसी तरह जी होम मेकर वह भी अपना बना लेंदी है कोई
1: अच्छा
0: ना कोई। अजकल की पढ़ी लिखी लेडीज़ है, तो
1: हाँ
0: इट मीन कि जी नौकरी कर रही है तो वो एक्सपोजर जी घर बैठी है वो कोल नहीं, लेकिन वो कोल भी है, वो
1: जी
0: अपने हिसाब का एक्सपोजर है।
1: वो अपने हिसाब से रखती
0: हाँ
1: है
0: अपने
1: कि
0: हिसाब
1: मैं
0: ना
1: महीने विच
0: रखती है,
1: कितनी बारी बार जाना
0: कितनी
1: है,
0: बारी बार
1: कितना
0: जाना,
1: काम
0: की
1: निपटाना
0: ड्रेस
1: है।
0: पाना है, की
1: जी
0: करना है, किस
1: जी जी
0: तरीके
1: जी
0: नाल चलना है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: अंदर ही खुशी होंगी है।
1: हाँ हाँ
0: जो
1: हाँ
0: रोज तुम ड्रेस पा के जाते हो अंदर तुम्हें खुशी नहीं मिलती, लेकिन
1: जी
0: जो तुम कभी ना कल कोई काम करते हो तो वो खुशी का अंदाजा ही अलग होता, वो फीलिंग ही एक अलग होंगी ने
1: जी जी
0: अपने
1: जी
0: अंदर,
1: यानी
0: जो कि
1: तो
0: एक आउट गोइंग लेडीज नहीं कर सकती,
1: हाँ हाँ
0: उन्हें सिर्फ
1: हाँ
0: पैसा कमान जाना,
1: जी
0: तो जी घर की लेडीज है वो इन्हों चीज़ों इंजॉय कर सकती है,
1: क्योंकि उन्हें
0: बच्चों नाल आउट
1: आराम नाल
0: गई,
1: किसी दिन एक
0: हस्बैंड
1: दिन
0: नाल आउट
1: निकलना है
0: गई,
1: 2 दिन
0: गई,
1: जी
0: बहुत चीज़ों तो तुम एक्सपोजर ले सकते हो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: सिर्फ तुहाडी नॉलेज होनी चाहिए बस,
1: जी जी
0: समाज में
1: जी
0: वापरना चाहिए तुहानू।
1: अच्छा हुण असी फैमिली दी गल करिए, क्योंकि जिहड़ी हाउस वाइफ है या जिहड़ी घरेलू जनानी है उहनूं पता है मैं घर वाले नूं वी वेखणा है, बच्चों नूं वी वेखणा है, सारे घर दे धंधे जिहड़े ने मैं ही करने ने, और उहनां दे जाण तों बाद उह शुरू हो जांदी है। ते जिहड़ी बाहर जांदी है घर नौकरी पेशा औरत, इन्हां दोनों विचों कौण सब तों ज़्यादा परवरिश विच बेहतर हैगी है, कि घरेलू वाली या नौकरी पेशा
0: किस
1: वाली,
0: चीज़ की परवरिश, बच्चों की
1: बच्चों दी,
0: परवरिश?
1: घर दी?
0: देखो जी गल है कि जी आउटगोइंग लेडी है ना, बच्चे उसने भी पालने, वो किस तरह पालती है
1: जी
0: वह भी एक मैथड होंगे, उन्होंने टाइम फिक्स किया होंगे, वैल्यूज ऑफ टाइम उन्होंने लोगों को होंदिया ने, तो जी घर बैठी थी वो कहती चलो 4 बजे बच्चे आएंगे, 5 पढ़ा लेंगे, 6 पढ़ा लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पैंता, टाइम वो भी देंदी, वो बेटर परवरिश करती अपने बच्चों ने, क्योंकि उसके कोल टाइम होंगे, तो जी आउटगोइंग है ना वो भी परवरिश अच्छी करती है।
1: लेकिन हरप्रीत जी मैं थोड़ा जहा थोड़ा इतने रोकना चाहवागी कि जी नौकरी पेशा है ना, क्योंकि वो तो बच्चों का बचपन जड़ा होंगे है ना, वो तो बिल्कुल देखो उन्होंने दे नहीं सकी टाइम, या जड़ा बच्चा जवानी है उस टाइम भी वो माँ उन्होंने टाइम ही नहीं दे सकती क्योंकि वो तो नौकरी पिछले लगी हुई
0: तुहाडी गल ठीक
1: है
0: है,
1: ना।
0: पहले की होंगे सी जॉइंट फैमिली होंगी सर, नानी नानी
1: वो पाल
0: दादा
1: लेते
0: दादी
1: सी
0: वो
1: जी
0: बच्चे पाल लेंदे
1: जी
0: सन, और अज का बच्चा जो फैमिली चो सिख बेसिक बच्चे की उम्र जी होंगी है वो 10 साल तक होंगी है सीखने की, उस तो
1: जी
0: बाद वो सेल्फ हो जाता है,
1: आपे कर
0: लेकिन
1: लेंगे।
0: उस जिंदगी के जो 10 साल ने ना वो पेरेंट्स देने बहुत जरूरी ने, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड ने दोनों बहुत जॉब करते हैं तो वीकेंड तो अपने बच्चे टाइम देंगे ने, उतना नहीं दे सकते, लेकिन कई अजकल जिस कंपनी जॉब से नहीं दे सकते टाइम, फिर भी कुछ लेडीज स्पेंड कर दिया ने टाइम अपने बच्चे नाल, थोड़ा फर्क पै जाता है,
1: है ना,
0: थोड़ी जी
1: थोड़ा फर्क पै
0: परवरिश
1: जाता है,
0: फर्क
1: क्योंकि
0: आ
1: जिवें
0: जाता है,
1: मैं
0: क्योंकि
1: अपने अंदर ना कोसती
0: ना
1: हाँ अपने आप नूं कि मैं अपने बच्चे दा जड़ा बचपन सी ना वो बिल्कुल मतलब नहीं उन्हों टाइम दे सके, क्योंकि
0: ठीक है
1: मैं भी एक इंप्लॉय सी, इस करके मैंने लगता जी नौकरी पेशे वाली औरतें होनी ने ना वो बचपन बच्चे का कहें ना उस
0: हाँ
1: तरह का
0: खो
1: टाइम
0: जाता
1: नहीं दे
0: बच्चे का
1: सकते है ना,
0: बचपन कितने खो
1: हाँ
0: जाता
1: खो जाता है, क्योंकि
0: खो
1: वो फिर
0: जाता
1: नानियां दादियां पाल के
0: नाल
1: देंदी, फिर असं कहते हाए असी तो बच्चे का बचपन देखे ही नहीं,
0: देखिए भी नहीं,
1: तो
0: और
1: वो
0: उस
1: फिर
0: बच्चे ने अपना बचपन भी नहीं जिया होंगे,
1: हाँ क्योंकि उन्हें पता होंगे कि भाई
0: हाँ
1: मैंने तो माँ टाइम ही नहीं दे सक
0: टाइम ही
1: रही
0: नहीं
1: है,
0: दे
1: तो
0: सकी,
1: इस करके सानू लगता है कि जिहड़ी घरेलू हैगी वो बेचारी तो आराम नाल अपना बच्चा पालदी
0: हाँ
1: है,
0: वो तो
1: इन्हें तो कुछ
0: परवरिश
1: टाइम
0: उनकी
1: दी
0: बहुत
1: छुट्टी लेती
0: अच्छी
1: है
0: है,
1: जिहड़ी नौकरी पेशा हैगी है, अगर बच्चा डिलीवरी के टाइम थोड़ी टाइम छुट्टी
0: हाँ
1: लेती
0: छुट्टी ली,
1: उन्हें वो टाइम देता फिर तो चली गई ऑफिस,
0: हाँ
1: तो जिहड़ी घरेलू है उन्होंने पता है कि मैं किस तरह अपने बच्चे को खाने पीने का ध्यान रखना है, किदा बच्चा पालना है ना, तो तुहानू
0: ये
1: इत्थे
0: चीज़
1: थोड़ा
0: मैं
1: लगता है।
0: देखिए बहुत मदर्स इसमें फेस कर रही ने जो जॉब इसने, लेकिन एक एज तो बाद जाके बच्चे की फीलिंग तो उसी वक्त आ जाती है, लेकिन मदर नू आफ्टर एज आती है, 40-50 के बाद सोचती है कि मेरे तो गलती होगी बहुत बड़ी कि मैं
1: सही
0: अपने बच्चे ने, लेकिन तुम्हें तो पता है अजकल इतनी महंगाई है, समाज दिया मजबूरियां ने, करना पैंदा है,
1: जी जी
0: की
1: जी
0: कर सकते हो
1: हाँ,
0: तुसी,
1: क्योंकि अजकल तो घर के जिन्हें बंदे भी
0: घर के
1: कमाते हो
0: जिन्हें
1: उनकी
0: बंदे कमाण उन्नी
1: खर्चे
0: पूरी
1: इन्ने
0: नहीं
1: ने,
0: पैंदी,

0: समीरी था, पंजाबी प्रोग्राम पेशकश समीना शाह, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। ठीक 5 बजे आप हमारे यहाँ से गोजी प्रोग्राम समाप्त करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जिया सामीन तामने ट्यून किया है आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन और इस वक्त तम सुन रहे हैं थारो अपना प्रोग्राम मनपसंद गोजरी प्रोग्राम अपना मेजबान शौकत बोकड़ा के संग तमने दस्तो चलो कि आज थारे वास्ते SMS बेस्ड प्रोग्राम पेश कियो जाए लगो। अगर तम भी इस प्रोग्राम में अगला आतार ना मारे संग जुड़ना चाहें तो तम आमना 9596012521 इस नंबर पर SMS या फिर व्हाट्सएप करके अपना फरमाशी ना मारा तक पहुंचा सकें। नंबर एक बार फिर सुन लियो, नंबर है 9596012521। अगर जी मोहम्मद इकबाल मलनगामी की आवाज़ में गीत सुनो वास्ते हमना SMS की है हैदर मारी कलामाबाद ते फारूक अहमद खान और ने इनके नाल बाकी फरमाशी नाएं सकीना बेगम जुनैद फारूक मुदस्सर फारूक तय जाकिर फारूक सुरफराव कंगन ते अपना SMS करें लतीफ अहमद रेना और इनके नाल बाकी फरमाशी नाएं रहूफ शेख खालदा जान साहिल तनवीर ते अफरोजा जान द्रागदन DH पुरा कुलगाम ते निसार अहमद गोरसी शबीर अहमद गोरसी शरीफ अहमद गोरसी रफाकत अहमद जैतूना बेगम ते बग्गी बेगम खड़ी कावना तेजी अपना SMS करें शबीर अहमद और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए गुलाम रसूल चौहान नज़ीर अहमद चौहान बशीर अहमद चौहान मेहरान अहमद मरियम बेगम जुलेखा बानो यास्मीना जान रोशनी जान नसीमा जान ते शकीला जान बंगवाड़ बाला सईद मोहल्ला ते अपना SMS की है सईद शबीर शाह और ने इनके नाल बाकी फरमाशी ना है सईद अबरार शाह सईद मुदस्सर शाह सईद जुबैर शाह ते सईद आलम शाह और इनका बाकी संगी साथी डन्ना लोरन पहुंचते जी अमना SMS की है मुश्ताक अहमद

आमना एसएमएस करें आरी मार्ग खड़ी रामबन ते फरीद अहमद चौहान साहब और इनके नाल बाकी फरमाइशी नाए अब्द लतीफ चौहान मोहम्मद यूसुफ चौहान शौकत अमन चौहान इकबाल अहमद तेड़वा शाहिद लतीफ मासूमा फरीद आसफा शौकत ते जमीला यूसुफ दारा फकीर गुजरी ते फारूक अहमद बजरान सकीना बानो इरफान अहमद रहीम अली ते मुदस्सर अहमद शंगलीपुरा बडगाम ते गुलाम मोहम्मद मलिक मोहम्मद अशरफ मलिक फरीदा बानो दिलशादा जान शाहीना जान मसरत जान शमीमा जान अफरोजा जान आसिफ मलिक ते गुलाम कादर लदा कला रूस ते शमीम अहमद खटाना जरीना बेगम फरीदा बानो इम्तियाज अहमद खटाना मुस्कान शमीम तिनका बाकी संगी साथी नंदी मार्ग डीएचपुरा ते जफर इकबाल मोहम्मद इकबाल देदड़ मुश्ताक अहमद देदड़ गुलजारा बानो मास्टर मोहम्मद अशरफ देदड़ नसीम नासर अहमद देदड़ शाहबाज इकबाल ते इंजीनियर एजाज अहमद देदड़ गुजर बस्ती बनीमोला कुलगाम ते रुबीना जान अब्दुल कयूम जागड़ अब्दुल अजीज चेची शकीला बेगम फैजान जागड़ रिजवान जागड़ ते रिफत कयूम उड़ी गरकोट ते रशीद चेची राशिद चेची अब्दुल रशीद चेची ते शबीर अहमद चेची तम सारा दोस्तों की पसंद पर पेश है योगी।

अग्गे जी गुलाम हसन तबस्सम की आवाज मां गीत सुन वास्ते हमने SMS करें कोयल मकाम बांडीपुरा ते नुसरत जानोर ते इनके नाल बाकी फरमाशी नाए फातिमा बेगम शबीर अहमद दानिश शबीर अशरफ अहमद राशिद अहमद सकीना बेगम नरगिस जान रुबीना जान सफीना बाजी रुबी जान परवीना जान ते सुबिया जान चिट्ठी बांडी ते वजीर अहमद बजाड़ सजाद अहमद बजाड़ इम्तियाज अहमद बजाड़ अदनान अहमद बजाड़ नसीम बेगम शानाज बानो ते साइमा सजाद शुपिया ते अमना SMS करें मुश्ताक अहमद आवान और ते इनके नाल बाकी फरमाशी नाए हनीफा बेगम यासिर मुश्ताक आशिक मुश्ताक अफरोजा जान ते रुतबा जान सिंगरवानी पुलवामा ते मोहसिन तेड़वा ते सैरिश शबीर बाबा नगरी कच्छ नंबल ते अपना SMS करें बिजरान शबीर शबनम और इनका नाल बाकी फरमाशी नाए अदनान अली बिजरान ते इनका और मुझ सारा संगी साथी काजी नली ते मोहम्मद आशिक बडाना अली मोहम्मद बडाना जरीफा अख्तर जैनब अख्तर मुमताज अहमद ते मुस्कान मकबूल त्राल पंजर ते SMS करें लाल हुसैन बजरान रियाज अहमद बजरान शकीला जान अलिफ दीन बजरान आरफा जान ते जैतून बीबी आराबल कुलगाम ते मोहम्मद मुंशी खटाना कबीर अहमद खटाना लियाकत अहमद खटाना मुदस्सर अहमद खटाना मोहम्मद यूसुफ खटाना ते मोहम्मद यूनस खटाना गडोल कुकुरनाग ते जाकिर हुसैन खारी मोहम्मद रफीक खारी वजीर अहमद खारी परवेज अहमद खारी अली खारी लतीफ खारी ते फातिमा बीबी तम सारा दोस्तों की पसंद पर गुलाम हसन तबस्सम की आवाज़ में पेश है युगीत।

अग्गै जी, संजीत थॉमस की आवाज मा थारे वास्ते लोक गीत पेश कियो जाए को। और इस लोक गीत ना सुनो वास्ते आमने एसएमएस करें गुंड अकुते शकील आमंद चेची और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए अब्दुल कयूम चेची, कैसरा बेगम, मुनीरा बानो, सजाद आमंद, कासिम जान, जब कुरहामा ते यास्मीना जान, तबस्सम शबीर, शाहिदा जावेद, कुलसुम शबीर, शबनम शबीर, फलक सलीम, आफरीन इकबाल, बसरा यासर, मेहरान इकबाल, अलीजा आरिफ, फाजिया सलीम ते महविश इकबाल, बारामुल्ला महमूद आबाद ते अमन एसएमएस करें इरशाद आमंद चेची और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए उर्वा इरशाद, शगुफ्ता रशीद, हमजा बिन इरशाद ते मोहम्मद आरिफ चाड़। कोंड नगीनपुरा काजी गुंड ते मोहम्मद इकबाल देदड़, अजमल इकबाल देदड़, नसीम अख्तर, फयाज आमंद, शाहिद, रियाज आमंद, बशीर आमंद खान तिनका बाकी संगी साथी। लद्दू पांपर ते अमन एसएमएस करे मोहम्मद अनवर बोकड़ा और इनके नाल बाकी फरमाशी नाए उमर बोकड़ा, मेराजद्दीन बोकड़ा, मोहम्मद इमरान बोकड़ा, रुकैया बेगम, अमीना जान ते हाजी अली जान बोकड़ा। गोंड कमल ते मोहम्मद सलीम चेची और अमन एसएमएस करें और इस एसएमएस ते बाद एक और एसएमएस है आस्थान मार्ग दारा ते अमन एसएमएस आई है और इस एसएमएस में फरमाशी नाए मौलवी मोहम्मद अमीन, मौलवी मोहम्मद यूसुफ, मौलवी मोहम्मद अजमत अली, मोहम्मद रहमत अली ते हशमत अली। लतीफाबाद बारामूला ते मंजूर आमंद बजाड़, शाहिद आमंद बजाड़, आरिफ आमंद बजाड़, सगीर आमंद, ओवेस आमंद, हाशिम आमंद, इफ्रा जान, आफिया जान, अजमत जान, यासर गेगी, मुदस्सर गेगी ते शफीक गेगी। तम सारा दोस्तों की पसंद पर संजीत थॉमस की आवाज में पेश है यो लोग की।

0: चेची, सदाकत आमन चेची, दानिश चेची ते शमीमा अख्तर। चंगड़ी ते मंजूर बडाना, इरफत जान, रेशमा बेगम, लाल दीन, मोहम्मद आरफ, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इकबाल, शकीला बानो, फरीदा बानो, मिराजुद्दीन ते नजीर अहमद। मशकियों वांग ते मोहम्मद सफीर खटाना, राजा इम्तियाज खटाना, एजाज अहमद खटाना, सजाद अहमद खटाना, जरीना बेगम ते नाजिया जान। गोशबुग पट्टन ते गुलाम हसन यतू, मोहम्मद अकबर यतू, अली मोहम्मद यतू ते सदाम हुसैन यतू। चिट्ठी बांडी ते मोहम्मद अनवर खटाना, नूर मोहम्मद खटाना, फैजान खटाना, एहसान खटाना, मोहसिन, मरियम बानो, गुलजारा बेगम ते शौकत खटाना। तम सारा दोस्तों की पसंद पर एजाज भट्ट की आवाज में पेश है यो गीत।
1: बचपन का दिन चार वे सजना कद लबें

पहले हवा इस एतमाद को भी एहतराम भी कर लेना चाहिए। कैंप के दौरान एनसीसी कैडेट्स की रंगारंग कारकर्दगी भी पेश की गई, जड़ी भारत का भरपूर सकाफती तनोमा वाजिया तौर पर जाहिर करे। कैंप के दौरान मुल्क भर तो 340 कैडेट्स के अफसर शामिल था। इस मौका पर एनसीसी गार्ड डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वरिंद्रा वाट्स भी मौजूद था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज बारामूला का कंडी इलाका में एक खसूसी कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में असलाह ते गोलो बारूद जब्त कर लिए। मारा बारामूला का नुमाइंदा के मुताबिक 52 आरआर सीआरपीएफ ते एसओजी करीरी ने निलसर में एक बाग तो 14 आरपीजीएल 9 बस्टर 3 कप ते शीशे की कुछ बोतल भी बरामद की। इस मौका पर बम नाकारा बनाने वाला स्क्वाड ना भी बुलाया गया, जबकि मामला

0: खसूसी कार्रवाई के दौरान पहाड़ी मकदार मा असलाह ते गोलो बारूद जब्त कर लिए। मारा बारामूला का नुमाइंदा के मुताबिक 52 RR CRPF ते SOG गरीरी ने निलसर मा एक बाग तू 14 RPGL 9 बस्टर 3 कप ते शीशे की कुछ बोतल भी बरामद की। इस मौका पर बम नाकारा बनाने आला स्कार्ड ना भी बुलाया गया, जबकि मामला तू मुतलक चंदूसा का पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज कर लियो गयो है। अज जिल हज की नवी तारीख है। इन टैन लखा की तैदाद में आजमी ने हज सऊदी अरब का शहर मक्का मुकरमा में हज की अदायगी वास्ते जमा हो रहे हैं। वाजह है कि मुनासिक के हज की अदायगी को सिलसिलो पालक तू शुरू हो रहे। इस तेड़े आजमी ने हज एराम बद गए पूरे दिन मिन्ना में गुजारेंगा। नाउजिल हज की नमाज फजर तू बाद आजमीन वकूफ अरफात वास्ते मैदान अरफात रवाना होवेंगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पालक राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली में एक तकरीब पर इस साल का पद्म अवार्ड अता करेंगी। इस साल मरकजी सरकार ने 131 पद्म अवार्डों को ऐलान किया है, जिनमें 5 पद्म ते भूषण, 9 पद्म भूषण ते 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड लेन आलम में 16 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद ना मरण तो बाद ये अवार्ड दिता जा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि इस साल पद्मश्री लेन आलम में जम्मू कश्मीर ना तालक रखने वाला मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर शफी शोक ते समाजी शख्सियत ब्रजलाल भट भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पूरी दुनिया खसूसन बरेसगीर मशरक वस्ता का बहरान गो हल वास्ते बिताब है ते बे अमन की गलबात सफारती हत्तों पर ईरानी अमरीका तनाजा ना हल करान हवाएं। श्रीनगर में जराए अबलाग नाल गल करता वहाँ पार्टी का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्योंकि कश्मीरी अवाम हमेशा ही अफवाह में तफीम ना तरजीह देती आई है, क्योंकि इसमें अमन त सलामती को राज मुजमर है। इसी दौरान पार्टी का अरकान पार्लियामान मियाँ अल्ताफ अहमद, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद अहमद किचलू ते शमी ओबराय और नेशनल कॉन्फ्रेंस का असम्बली मेम्बरान ने कुछ बीजेपी लीडरों की तरफों उमर अब्दुल्ला सरकार पर अंगली चाण वास्ते उनकी जबरदस्त मजम्मत की है। ये खबर तमाम आकाशवाणी श्रीनगर ते सुन रहे हैं। खबर तमाम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सकें। जम्मू कश्मीर का डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी का कॉलेजों में दाखला का ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों तो क्यों है कि वे दाखला वास्ते कॉलेज ऑप्शन को ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिलों मिल सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गलकर्ता में उन्होंने इस ताल्लुक नाल क्यों
1: मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेसिस पे अपडेट हो जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर ने मनशियात की लानत छुटकारो दुआन वास्ते 100 तैड़ों पर मुश्तमल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मी शदूमत के नाल जारी ते मनशियात का ढांचा ना खत्म करने और इस लत में फंसे नौजवानों की बाजबदकारी वास्ते हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मनशियात तो मुतलक LG मनोज सिन्हा को यो पेगा।
2: स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने इस बिदत तो दूर रखने वास्ते लाजमी इकदाम का ताल्लुक नाल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता वहां क्यों।
3: जो आजकल के नौजवान हैं, इनको हम जेन जी या जेन अल्फा कहते हैं, ये पहले ही इन्वॉल्व है एक स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ इनको जो स्क्रीन एडिक्शन है ये भी बहुत रहता है, रिस्क को बढ़ा देता है। जरूरत इस चीज की है कि पेरेंट्स भी अपने तरीके से होशियार रहें, पर्सनैलिटी चेंज वो बच्चे में अगर देखते हैं तो सीरियसली ले लें, और बच्चे को फॉलो किया करें इसके बिहेवियर को, इसकी कंपनीज को, ताकि हम इन मासूम बच्चों को इस ट्रांजिशन की तरफ जाने से बचाएं।
0: شعبہ تعلیم سماج ماں ایک مثبت بدلاؤ آن ماں کلیدی رول ادا کرے، تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبہ تعلیم نہ جدیدیت نال ہمکنار کرن کے نال نال اس ماں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ آنی ہو جائے۔ اس تعلق کے

0: नागरिकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। यह आकाशवाणी श्रीनगर समीन शुभजीत 5 मिनट 3 सेकंड सपित पेश प्रोग्राम गमी बायन हिंदी खतरा।

आदाब, ये छे आकाशवाणी। शबजत तो 5 मिनट सपद खबर नाम है चुस बे मोहम्मद सादिक लोन। गोड़ अख नजर अजचन खास खास खबरन पे। भारत तो अमरीकान चु दुश्मन मुल्कन दरमियान पानवन तलुकात मजीद वसवार कर तजारती तलुकातन वत बो दिन पे इतफाक कोर्मुत। अमरीका खारजी वजीर मार्को रूबियन चु भारत अमरीको अक अहम तो बुनियादी शराकत दार करार दुत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कर पगह राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली मज अकिस तकरीब पे यम वरिक पद्म एवार्ड अता। तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन यम रेतने 31 तारीख को पन्नस रेतवार प्रोग्राम मन की बात मज मुख्तलिफ मौजून पे पन ख्याल बावत। वन पेश खबर विस्तार सान। भारत तो अमरीकान चु दुश्मन मुल्कन दरमियान पानवन तलुकात मजीद वसवार कर तजारती तलुकातन वत बो दिन पे इतफाक कोर्मुत। अत सिलसिल मज सपज आज नवी दिल्ली मज खारजी वजीर एस जय शंकर तो भारत किस दौरस पे आमतिस तिंदिस हम मनसब मार्को रूबियोस दरमियान कईयान मामलन पे कत बात। अत मौक पे वोन डॉक्टर एस जय शंकर जे भारत तो अमरीकास दरमियान छे स्रन तो वसीउल बुनियाद अथवा सच अख जामे आलमी स्ट्रटेजिक शराकत दारी मौजूद तो दुश्वन मुल्कन हिंद तलुकात दुनिया पे पन असर त्रावान। तम वो अजि कत बात अकिस खुरदार आलमी माहौल मज सपदान अमापुज अम सू नतीजे दिन वाजन कत बात पे एतमाद इजहार तपदान। अत मौक पे वोन अमरीका खारजी वजीरन दोन मुल्कन दरमियान शराकत दारी हंद स्ट्रटेजिक पासस पे जोर दिवान जे भारत से दुनिया मज अमरीका किस अकिस अहम शराकत दार सिंद हैसियत अहमियत हासिल। अमरीका खारजी वजीर मार्को रूबियन चु भारत अमरीको अक अहम तो बुनियादी शराकत दार करार दिवान वोनमुत जे दुश्वन मुल्कन दहशत गर्दी किन सठा मुश्किल वतरावन पेवान। तमो जे अहम मामलन पे भारत तो अमरीका बुनियादी एतबार हिवु मौकफ यम सजन सदी हज वह तय सपदे। मार्को रूबियन वो ये जे तवानई हंदिस मामलस मज तु भारत तो अमरीको बुनियादी एतबार हिवु मौकफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कर पगह राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली मज अकिस तकरीब पे यम वरिक पद्म एवार्ड अता। यह मरकजी सरकार अखत 31 पद्म एवार्ड दिनुक ऐलान कोर्मुत यम 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण तो अखत 13 पद्मश्री एवार्ड शामिल। एवार्ड हासिल कर वाल मज 14 जनान शामिल ये जन 14 नफरन यम एवार्ड मरने पत दिन यिन। तुह पाओ सतस जे यह पद्मश्री हासिल कर वाल मज जम्मू कश्मीर सलुक

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं एनसीसी नौजवानों की शख्सियत साजी के लिए निहायत अहम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जालेबारी से मुतासर इलाकों के लिए हुकूमत हंगामी इकदाम करे वरना सब जबानी जमा खर्च पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अनंतनाग कस्बे में पार्किंग का फुकदान लोग परेशान। और 2022 की हदबंदी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की आबादी परेशान। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
7: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
8: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
9: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
8: अच्छा भाभी,
9: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच लें कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
8: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
10: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जे एंड के।

0: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
1: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
0: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
1: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
0: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत को अपनी नौजवान नस्ल पर मुकम्मल एतमाद है और यही नौजवान मुल्क को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। एनसीसी डायरेक्टर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जानिब से मुनक्किदा खसूसी कौमी यकजहती कैंप से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और हुब्बुल वतनी के अकदार को मुआशरे में फ़रोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसका तनव्वू है, जिसे इत्तेहाद में बदलने की रिवायत सदियों से कायम है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपने इलाकों में इत्तेहाद को फ़रोग दें, मुकालमे के जरिए समाजी मसाइल हल करें और विकसित भारत की तामीर में किरदार अदा करें। वाज़ेह है कि कैंप में मुल्क भर से 340 एनसीसी कैडेट और अफसरान शरीक हुए, जबकि मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी इस मौके पर पेश किए गए। पीडीपी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि लद्दाख ने 7 बरस में वो हासिल किया जो जम्मू कश्मीर 7 दहाइयों में हासिल न कर सका। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत आईनी तहफ़ुज़ात और एक कानून साज इदारा देने पर गौर कर रही है। लद्दाख के नुमाइंदों के मुताबिक मुज़ाकरात अभी जारी हैं और कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने इस सिलसिले में कहा है कि मरकज ने आर्टिकल 371A और 371G की तर्ज पर तहफ़ुज़ात की तजवीज़ दी है, जबकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन सज्जाद करगिली के मुताबिक लद्दाख को कानून साज, इंतजामी और माली इख्तियार देने की भी बात हुई है। समय शिमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात बिलखसूस रफियाबाद के मुतअद्दिद देहात में 21 मई की रात और 22 मई को शदीद जालाबारी के नतीजे में फसलें बड़े पैमाने पर नुकसान ज़दा हुई। मौसूला इतिलात के मुताबिक रफियाबाद के देहात में जालाबारी की वजह से मेवा बागात के साथ साथ धान की पनीरी और सब्जियों की फसल शिद्दत से मुतासर हुई है। वज़ीरे के ज़िरात और बागबानी के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कल मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में अगले 1.5-2 माह के अंदर ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाएगी। इस सिलसिले में अलबत्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू किए जाने का बिल्कुल कोई यकीन नहीं है। मुतासर इलाकों का दौरा करने के बाद अब्दुल गनी वकील ने शहरबीन को बताया कि नुकसान की भरपाई करने के लिए अगर सरकार चाहे तो हंगामी इकदाम कर सकती है, वरना जबानी जमा खर्च से कुछ हासिल न होगा।
4: देखिए, मैंने आज इलाका रफियाबाद के बेशतर देहात का दौरा किया, जिसमें ब्राक, कलान है, बारमपोरा है, चतलूरा है, हिबनगरपुर, तिजर शरीफ और इसी तरीके से रबन, नोपोरा, लैसर और यारबुग वगैरह बहुत से देहात है जिनका मैंने दौरा किया। और ये परसों ये सारा एरिया जो है फ्रूट प्रोड्यूसिंग एरिया जालाबारी के जद में आ गया। इससे पहले नॉर्थ में पट्टन एरिया जालाबारी के साथ बैठ है और इसे साफ जाहिर है जो प्री फ्रूट इंडस्ट्री है ये तबाही के दाहिने तक पहुंच चुकी है। लेकिन सरकार को इस बात का एहसास नहीं कि ये इस इंडस्ट्री के साथ लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है इससे, और अगर ये इंडस्ट्री कोलैप्स होगी, खत्म होगी, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। ऑलरेडी यहाँ बेरोजगारी है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का हाल है वो बहुत अबतर होगा। लेकिन इस सिलसिले में सरकार को सोचना चाहिए आज से ही, पहले ही। अभी तक कोई असेसमेंट टीम नहीं गई इन एरियाज में, लॉसेस का, नुकसानात का जायजा नहीं लिया। और हमेशा जब ये आपदे आ रही है तो सरकार कह

0: ये हम मदद करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक फूड ग्रोवर्स को कोई मदद नहीं मिला है। हालांकि मदद की बहुत इस ये एक बहुत से तरीके हैं मदद करने के। सबसे पहले इस वक्त जरूरत जो पेस्टिसाइड्स है, अद्वियात जो छिड़के जाते हैं फ्रूट्स एप्पल पर, उनमें सब्सिडी दी जा सके। और इसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज आज तक सोपोर फ्रूट में नहीं बना। कोई नए टेक्निकल साइंसी बुनियाद पर कोई एप्पल जूस फैक्ट्री नहीं। तो इसलिए सरकार इस अहम इंडस्ट्री के साथ को इग्नोर कर रहे हैं, सोतेली माँ का सलूक कर रहे हैं, और ये समझते नहीं कि इस इंडस्ट्री के साथ लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। लिहाजा मैं आपके मौजूद इस वक्त भी सरकार कैसे मसनी हो रही है। जरूरत थी केसीसी लोन माफ करने की, जरूरत थी इस वक्त इंसेंटिव देने की फूड ग्रोवर्स को। एक और तूफान आने वाला है जो फ्रूट इंडस्ट्री को मुकम्मल तबाह करके करेगा, तबाह करके रखेगा, वो है वो तूफान जो इजाफा हुआ डीजल और पेट्रोल में। इसके साथ फ्रूट इंडस्ट्री का वास्ता है फ्रूट ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का किराया बहुत बढ़ जाएगा और इस हद तक बढ़ जाएगा कि फ्रूट वाले जो है बागात वो मजबूर होंगे बागात के जो दरख्त काटने के लिए, क्योंकि सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है इस अहम इंडस्ट्री को बचाने के लिए। फ्रूट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, यहाँ तो तूफान मच जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ, अमरुबला सरकार को और साथ ही लफन गौर साहब से भी अपील करूंगा कि ये इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को गैर संजीदगी से मत लीजिए। ये बड़ी अहम इंडस्ट्री है और अगर ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, यहाँ तूफान मच गया, ऑलरेडी यहाँ बेरोजगारी है।
1: ज़राअत और बागवानी के वजीर ने मुतासर इलाकों का दौरा किया, फिर उन्होंने कल ऐलान किया कि हम अगले दो माह के अंदर यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने वाले हैं। क्या आप इस स्कीम को लागू होता हुआ देख रहे हैं या नहीं?
0: नहीं, ये सारा झूठ है, आप हैरान हो जाओगे। इस मिनिस्टर ने इलाके में बहुत ही जगह दो तीन महीने से पहले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पत्थर लगवाए, लेकिन काम कहीं शुरू नहीं हुआ। लोग इस पर यकीन ही नहीं करते, वो कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। अगर इसे ट्रांसमिशन ये पावर ट्रांसमिशन का पत्थर लगाया पांजला में रिसीविंग स्टेशन का, आज तीन महीने पहले कोई पत्थर भी वहां नहीं, कोई काम नहीं। लिहाजा ये सारी ये बातें तीन महीने से फूड ग्रोवर सुन रहे हैं कि सरकार क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करेगी, लेकिन ये सिर्फ जबानी है, अमली तौर कुछ नहीं है और लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार कुछ करेगी।
1: ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील। और अभी अभी मिली इत्तला के मुताबिक आज सपहर कुपवाड़ा जिले के रोलाब इलाके के एक दर्जन से जायद देहात में भारी जालाबारी के नतीजे में धान की पनीरी, मेवा बागात और सब्जियों की फसल नुकसान ज्यादा हुई है। इत्तलात के मुताबिक रोलाब के वर्नो, वावूरा, खुरहामा, कुलीगाम, आफन, खोड़ी, सेवर, गागल, मैदानपुरा, सूरीगाम, पतुशाही, बटनाड़, क्रूसन और सेवन देहात में जालबारी के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुतासर आबादी सरकार से मुतालबा करती है कि नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा अदा किया जाए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला कुपवाड़ा के लंगेट इलाके में बारामुल्ला के रुकने पार्लियमान इंजीनियर रशीद और रुकने असेंबली शेख खुर्शीद अहमद के अहले खाना से उनके वालिद के इंतकाल पर ताजियत पोसी की। वाजिर है कि हाजी खजर मोहम्मद शेख, जो एक रिटायर्ड उस्ताद थे, तवील इलाजत के बाद 17 मई को दिल्ली के एम्स अस्पताल में 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। समन हुकूमत ने चंद माह पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा करके इसे 18% बढ़ा दिया। इस इजाफे की नस्बत से आम लोगों के तहफ़ुज़ात अपनी जगह, ताहम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरबीन को ये शिकायत लगातार मौसूल हो रही है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर किराए में मनमाने इजाफे के मुर्तकिब हो रहे हैं, और ये कि कहीं डेढ़ गुना तो कहीं दो गुना इजाफा किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हमने इस ताल्लुक से अभी चंद रोज पहले राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट नश्र की थी। इसी सिलसिले में कुलगाम से फारूक राठौर की ये रिपोर्ट।
2: कुलगाम जिले में अगरचे निजी ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, ताहम मनमाने किरायों ने आम लोगों की मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद निजी ट्रांसपोर्ट पर सफर करने पर मजबूर है, लेकिन किरायों में मुसलसल इजाफे के बाइस अवाम सख्त परेशानी का शिकार है। मुकामी लोगों का कहना है कि मुख्तसर फासले के लिए भी

0: गैर मामूली किराया वसूल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कुलगाम से दमाल हाजीपुरा तक तकरीबन 12 किलोमीटर के सफर के लिए फी मुसाफिर से 40 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि दमाल हाजीपुरा से नंगी मार्ग तक महज 6 किलोमीटर के फासले का किराया 30 रुपए वसूल किया जा रहा है। इसी तरह याड़ी खां तक सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले का किराया भी 30 रुपए अदा करने पड़ते हैं। सफर टंगपोरे से काजीगुंड तक महज 8 किलोमीटर के सफर का किराया 30 रुपए, जबकि सपट से कुलगाम तक सिर्फ 9 किलोमीटर का किराया भी 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहरबीन को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक अलाका कुंड में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। मुकामी लोगों के मुताबिक महज 10 किलोमीटर के सफर के लिए 35 से 40 रुपए तक किराया वसूल किया जाता है, जिस पर आवाम की जानिब से शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। गुलजाराबाद, दानवाड़, अहरबल और कुलगाम से अनंतनाग के साथ साथ गुनीगाम से सफर टंगपुर और कुलगाम से शुपया रूट्स पर भी किरायों में नुमाया इजाफा पाया जा रहा है, जबकि कुलगाम से यारीपोरा और होमशाली बुक रूट्स का भी यही हाल है। मुकामी शहरियों के मुताबिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मालिकान अक्सर अपनी मनमर्जी से किराया तय करते हैं और गाड़ियों में सरकारी किराया नामा भी चस्पान नहीं होता है। अवामी हलकों का इल्जाम है कि जिले के मुख्तलिफ रूट्स पर यकसान फासले के लिए अलग अलग किराया वसूल किया जाता है, जबकि मुसाफिरों के साथ बहस तकरार के वाकात भी मामूल बनते जा रहे हैं। अवामी हलकों का मजीद कहना है कि बैज इलाकों में तो सिर्फ 2 किलोमीटर के मकसद फासले के लिए भी 20 रुपए वसूल किए जाते हैं, जिससे गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तलवा, मजदूर, मुलाजमीन, मरीज और रोजाना सफर करने वाले सैकड़ों लोग इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर है। अगरचे ARTO कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद की जानिब से किराए शेड्यूल को मुनज्जम बनाने, पटरी पर लाने और सरकारी किराया नामे पर अमल दरामद कराने के खातिर मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं और वक्तन फवक्तन चेकिंग मुहिम भी चलाई गई है, तहम जिले के मुतजकरा इलाकों के साथ साथ दीगर कई इलाकों में भी सूरत हाल काबू से बाहर दिखाई देती है। आम लोगों, अवामी तंजीमों, समाजी कारकुनों और दीगर फलाही उजमनों ने हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट से मुतालबा किया है कि जिले के अहम कस्बों के साथ साथ दी और दूर दराज इलाकों में सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को दोबारा फाल बनाया जाए, ताकि निजी ट्रांसपोर्ट की इजारादारी खत्म हो सके। अवामी हलकों का कहना है कि अगर मुख्तलिफ रूट्स पर सरकारी बसें चलाई जाए तो न सिर्फ किरायों में एतदाल आएगा बल्कि आवाम को बेहतर, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात भी मैसर होंगी। जिला भर के लोगों ने मुतल्लक हुकाम से पुरजोर अपील की है कि वो इस संगीन सूरत हाल और अवामी मसले का पूरी नोटिस लेकर मुनसर इकदाम करें, ताकि जिला कुलगाम के आवाम को रोजमर्रा के दौरान दरपेश मुश्किल से नजात दिलाई जा सके।
1: कुलगाम से फारूक राठौर की रिपोर्ट आपने सुनी। हमारी कोशिश होगी कि हम कल ARTO कुलगाम से बात करें इस मामले के ताल्लुक से और उनसे पूछें कि अगर उन्होंने इस बारे में कुछ काविशें की हैं तो वो सूदमंद साबित क्यों नहीं हुई। फिलहाल शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: समीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा, हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी तीसरी किस्त सुनेंगे। समीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवा हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे।
4: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही
1: जो दिल

0: से कही जाए। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। बारामुल्ला वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन और शिमाली कश्मीर जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के सदर और शहरबीन के नुमाइंदे बराए जिला बारामुल्ला करामत कयूम की छोटी हमशीरा आज सपहर इंतकाल कर गईं। वो कुछ वक्त से अलील थीं। वजीरे के मरहुमा उश्कर बारामुल्ला की मारूफ शख्सियत मुश्ताक अहमद लोन की अहलिया थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा ईदगाह उश्कर बारामुल्ला में आज रात 8:30 बजे अदा की जाएगी। समय अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में पार्किंग सहूलियात का अजहद फुकदान बताया जाता है, जिसके नतीजे में लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि लालचौक अनंतनाग में एक बड़ा पार्किंग लॉट तामीर करने का मंसूबा खासे वक्त से जेरे गौर है और इसके लिए जमीन की निशानदेही भी की जा चुकी है। अलबत्ता इस जमीन पर फिलहाल वो गाड़ियां पार्क रहती हैं जो कूड़े करकट और गलाजत से भरी पड़ी होती हैं। नतीजा ये कि कस्बे में अव्वल तो पार्किंग की जगह दस्तियाब नहीं और दूसरा चार सू अफूनत। एक रिपोर्ट के साथ इस तारीख।
2: कस्बा अनंतनाग के मौरूफ और मसरूफ तरीन तजारती मरकज लालचौक में गाड़ियों की पार्किंग की अदम दस्तियाबी के बाद ट्रैफिक की नकल व हमल शदीद मुतासिर हो रही है, जिसके नतीजे में रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। इस सूरत हाल से न सिर्फ आम लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना है बल्कि हाजिर बरादरी भी सख्त मुश्किल से दुचार है। मुकामी लोगों के मुताबिक मेडिकल से लेकर डीसी ऑफिस और जंगलात मंडी तक अक्सर अवकाश जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहता है, जिसके सबसे बड़ी वजह मुनासिब पार्किंग सहूलियत का फुकदान है। लाल चौक बाजार में जगह कम होने के बायस गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी की जाती है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और रागीरों को भी मुश्किल पेश आती है। अगरचे स्पोर्ट स्टेडियम के नजदीक जैर तामीर शॉपिंग कंपल्स के बेसमेंट में एक आरजी पार्किंग जोन रखा गया है, तहम वो गाड़ियों के लिए नाकाफी है। जराया के मुताबिक लालचौक में वाकया पुरानी टैक्सी स्टैंड के जगह को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने का एक मंसूबा भी तैयार किया गया था। हम फिलहाल इस मुकाम को म्युनिसिपल काउंसिल अंतराज की जानिब से शहर की सफाई और कचरा उठाने वाली ऊपर गाड़ियों के लिए पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकामी शहरियों, दुकानदारों और वालदेन ने शिकायत की है कि मजकूरा मुकाम के साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग वाकई है, जहां ऊपर गाड़ियों से उठने वाली बदबू और गंदगी की वजह से उसातिज़ा और दुकानदारों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक समाजी कारकुन बशीर अहमद नजार ने शहरबीन को बताया कि कस्बे के वस्त में ऊपरों की पार्किंग से जहां स्कूली तलबा दुकानदारों को उपत होती है, वही इसके बगल में जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस भी मौजूद है, जहां लोगों का आना जाना रहता है और इससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है और सेहती आमा पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत और मुतलका महकमों से अपील की है कि इस अहम मुकाम पर फौरी तौर पर एक जदीद मल्टी लेवल पार्किंग इमारत तामीर की जाए, ताकि लालचौक और मलिक इलाकों में गाड़ियों को मुनज्जम अंदाज में पार्क किया जा सके और बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। उन्होंने मजीद मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल काउंसिल की ऊपर गाड़ियों के लिए आबादी से दूर किसी मुतबादल मुकाम का इंतजाम किया जाए, ताकि शहरियों, ताजरों और तलबा को दरपेश मसाइल का अजाला मुमकिन हो सके।
3: यहाँ तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है लोगों को, खासकर जो हमारी बच्चियाँ यहाँ इस जो हायर सेकेंडरी है यहाँ पर रानीबाग, उनको बहुत मुश्किल होती हैं यहाँ पर पढ़ाई में, क्योंकि गर्मी इस वक्त आने वाली है तो यहाँ बहुत बदबू फैलती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब यहाँ ये टैक्सी स्टैंड था तो उस वक्त कहा गया कि यहाँ पर हम एक मल्टीपर्पज़ पार्किंग बनाएंगे, जिसे जो या गाड़ियाँ सड़कों पर रहती हैं वो उसी पार्किंग में एडजस्ट हो जाएंगी और बाकी भी जो गाड़ियाँ रास्तों पर रहती है तो यहाँ पर वो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सकती थी। मगर न जाने किन वजूहत की बिना पर वो जो प्रोजेक्ट था सरद बस्ते में पड़ गया। यहाँ पर जो लोग थे

0: स्कूली बच्चे थे, उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत हमें प्रॉब्लम होती है, ये जो यहाँ पर ये ऊपर से म्यूनसिपल काउंसिल के, तो मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से और जो म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के जो अफसर साहिबान हैं उनसे, ये जो ऊपर से इनको किसी और जगह मुंतकिल किया जाए।
1: अनंतनाग से इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। समय जनूबी कश्मीर का इलाका त्राल अपने फितरी हुस्न की वजह से मशहूर तो है, लेकिन इलाके को सियाहत के एतबार से जो तरक्की मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। त्राल की जुमला आबादी के बकौल इलाके में बुनियादी ढांचा कमजोर होना इसका एक अहम मौजिब है। आबादी खासे वक्त से त्राल के लिए एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुतालबा करती रही है, मगर अभी इस समत में कुछ नहीं हो पाया है। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट।
2: जनूबी कश्मीर के सबजिला त्राल को कुदरत ने अपनी बेपनाह हुस्न खूबसूरती से नवाजा है। तमाम अवामी हलकों की जानिब से बार बार ये मुतालबा दोहराया जा रहा है कि यहाँ के सियासी मकामात में बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बता दें कि इंतजामिया ने त्राल इलाके में सियाहत को फरोग देने के लिए पहले ही नारस्तान, आरिफल, पंजर जागीर और शिकारगा को सियासी विलेज करार दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को रूरल टूरिज्म की तरफ राजू किया जा सके। तमाम ये एक हकीकत है कि अपनी मुनफरिद शान के लिए मशहूर शिकारगा त्राल, जहाँ न सिर्फ महाराजा हरी सिंह शिकार के लिए आते थे बल्कि कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की गई है, लेकिन अहमियत का हामिल ये टूरिस्ट स्पॉट मुतलका मकब की बेहिसी का वाज़ह सबूत है, क्योंकि यहाँ न सयाहों को ठहरने के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद है और न ही यहाँ सफाई सुथराई नजर आ रही है। हाँ तो यह है कि कभी कुबार महकमा यहाँ बगैर सहूलियात के मौजूद इको पार्क में दाखिल होने के लिए चार्जेस भी तलब करता है, और इसी तरह टाउन से महज कई किलोमीटर दूर पंजर डैम भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन गया है और फिलवकत ये जगह एक बिजी पिकनिक स्पॉट के तौर उभर रहा है। तमाम यहाँ सैलानियों के लिए न खाने पीने का इंतजाम है और न ही यहाँ बैठने के लिए मकूल पार्किंग सहूलियात है। गुजर सरन लाम वाटरफॉल को देखने के लिए न सिर्फ त्राल बल्कि बिरूनी आजा से बड़ी तादाद में सैलानी देखने के लिए आते हैं। तमाम इलाके में भी सयाहों को बेहतर सहूलियात की आदमी दस्तियाबी के सबब मुश्किल का सामना है। मुकामी लोगों का मानना है की त्राल इलाके के नागादेर, तारसर जैसे ट्रैकिंग सपाट के साथ साथ गोकराज की तारीखी गुफाएं तो मौजूद है, मगर त्राल इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए आज तक इकदाम नहीं किए गए।
1: त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इसके साथ ही शर्बीन का वक्त खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
3: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
4: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000255।
5: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
12: समीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी तीसरी किस्त सुनेंगे। समीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकात हम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं

अफसरान भी शामिल थे। इस मौके पर एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वाट्स भी मौजूद थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज लंगीर जाकर रुकन पार्लियामान इंजीनियर शेख रशीद और मेंबर असम्बली खुर्शीद अहमद शेख के साथ उनके वालिद हाजी खजर मोहम्मद शेख की रहलत पर उनसे ताजियत पुरसी की। वजीर आला ने सोगवार कुंबे की ढारस बंदाई और मरहूम के हक में मगफरत की दुआ भी की। उनके हमरा काबीना वजीर जावेद अहमद डार, राज्यसभा के मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान और कुछ दीगर अहम शख्सियात भी थी। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मारूफ कौमी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में मनशात के खिलाफ जंग के बारे में अजीत सिंह के मजमून को हर किसी के लिए पढ़ने के लायक बताया है। इस मजमून में मनशात की लानत को हराने के लिए समाज और इंतजाम का अहम रोल, मुतासरीन की बाज आबादकारी और नार्को टेरर नेटवर्क को तहस नहस करने के इकदाम पर बातचीत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज बारामूला के कंडी इलाके में खसूसी कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में असलाह और गोला बारूद जब्त कर लिया। हमारे बारामूला के नुमाइंदे के मुताबिक 52 आरआर सीआरपीएफ और एसओजी क्रेरी ने नलसर में एक बाग से 14 आरपीजी शेल, 9 बस्टर, 3 कप और शीशे की कुछ बोतलें बरामद कर ली। इस मौके पर बम नकारा बनाने वाले स्क्वाड को भी तलब किया गया, जबकि मामले से मुतालिक चंदूसा के पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज कर लिया गया। तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम अपने जायज हकूक और उनसे किए गए वादों के लिए अभी भी मुंतजर है। अनंतनाग में आज एक मैरिज हॉल का अफ्तिताह करने के मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह मैरिज हॉल मुकामी लोगों की एक दीरीना मांग थी, जिसकी बदौलत उनके लिए एक बड़ी सहूलत पैदा हो गई है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस मौके पर एमएलए अब्दुल मजीद लारमी और दीगर मुतलिका अहदेदार भी मौजूद थे। दरियास्ता वजीर मौसूफा ने आज बड़गाम जाकर वहां एक कमसिन बच्ची के साथ पेश आए दिलखराश वाक़े पर मुतासरा कुंबे के साथ ताजियत और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा कुंबों को सरकार की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आज जिलहजा की 7वीं तारीख है। इन दिनों लाखों की तादाद में आजमीन हज सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में हज की अदायगी के लिए जमा हो रहे हैं। वाजह रहे कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इस दिन आजमीन हज एहराम बांधे हुए पूरा दिन मिना में गुजारेंगे। 9 जिलहजा को नमाज फजर के बाद आजमीन वकूफ अरफात के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल सर्विसेज 2026 के सिलसिले में आज श्रीनगर में सूबाई इंतजामिया कश्मीर की निगरानी में 9 जिली इम्तिहानी मराकज पर इम्तिहान का अमल कामयाबी के साथ मुलाकात किया गया। इस सिलसिले में सलामती समेत दीगर तरह के सभी माकूल इंतजाम किए गए थे। सभी जिली इम्तिहानी मराकज में उम्मीदवारों की हाजिरी चेहरे की शनाख्त की बुनियाद पर की गई, जो 100% कामयाब रही। कुल मिला के 2001 उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए, जिनमें 27 उम्मीदवार जिस्मानी तौर से खास थे। जिस्मानी तौर से खास उम्मीदवारों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड श्रीनगर में तमाम जरूरी सहूलियात से लैस एक मखसूस मरकज कायम किया गया था। बड़गाम पुलिस ने कहा कि वह गलवानपुरा सबदन में एक मासूम लड़की के कत्ल वारदात की तहकीकात कर रही है और कातिलों का बहुत जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। ताहम पुलिस ने लोगों, खासकर सोशल मीडिया हैंडलों को मुतनब्बा किया है कि वह मकतूला की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से गुरेज करें, जो इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पूरी दुनिया खसूसन बरसगीर मशरक वस्ता के बुहरान के हल के लिए बेताब है और वो अमन बातचीत और सफारती सतहों पर ईरान अमरीका तनाजा को हल कराने के ख्वाहां हैं। श्रीनगर में जराए इब्लाग से बात करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी आवाम हमेशा इफ़हाम व तफहीम को तरजीह देती आई है, क्योंकि इसी में अमन सलामती का राज मुजमिर है। इसी दौरान पार्टी के अरकान पार्लियामान मियाँ अल्ताफ अहमद, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद अहमद किचलू और शमी ओब्रॉय नीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के असम्बली मेम्बरान ने बाज बीजेपी लीडरान की तरफ से उमर अब्दुल्ला सरकार पर अंगुश नुमाई करने के लिए उनकी जबरदस्त मजम्मत की है।
شعبۂ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبۂ تعلیم کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ لایا جائے۔ اس تعلق سے دبئی میں مقیم ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سسٹینبلٹی کی پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے

0: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
1: जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान के इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस रियल है और वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें ऐसे टूल लेना है लेकिन अपना दिमाग उसमें लगाना है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे स्कूल के तलबा तालबात हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ा है इससे कि वो अपना दिमाग लगाते नहीं है। क्वेश्चन टाइप किया, उससे आंसर ले लिया, उसको कॉपी कर लिया। कुछ क्रिएटिव अगर टीचर ने करने को दिया है तो वो भी वहां से लिया, इससे कॉपी कर लिया, वहां से राइटअप कॉपी कर लिया। तो इससे क्रिएटिविटी पे बहुत फर्क पड़ा, उनके सोचने की सलाहियत कम हो रही है। सोचने की सलाहियत जो हमारे स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स है उससे भी बहुत हो रही है।
0: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाज आबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मनुष्यात से मुतलिक एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टॉक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: जो आजकल के नौजवान हैं इनको हम जेन जी या जेन अल्फा कहते हैं। ये पहले ही इन्वॉल्व है एक स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ इनको जो स्क्रीन एडिक्शन है ये भी बहुत रहता है, रिस्क को बढ़ा देता है। जरूरत इस चीज की है कि पेरेंट्स भी अपने तरीके से होशियार रहें, पर्सनैलिटी चेंज वो बच्चे में अगर देखते हैं तो सीरियसली ले लें और बच्चे को फॉलो किया करें इसे बिहेवियर को, इसकी कंपनीज को, ताकि हम इन मासूम बच्चों को इस ट्रगेशन की तरफ जाने से बचाएं।
0: इसी दौरान काबीना वजीर सतीश शर्मा ने भी नौजवानों से कहा कि वो एक मजबूत, सेहतमंद और मनुष्यात से पाक जम्मू कश्मीर की तामीर यकीनी बनाएं। वो JNV जम्मू में मुनाकदा सालाना इनामात की तकसीम कार्य और एक सकाफती प्रोग्राम में तालब इल्मों, असातिज़ा, वालदैन और दीगर अरकान से खिताब कर रहे थे। पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे डाले, गिरफ्तारियां अमल में लाई और बेदारी प्रोग्राम मुनाकद किए। अनंतनाग पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान इयोन गाड़ी से 4.5 किलो चरस जब्त कर ली। पुलिस ने गाड़ी और इसमें सवार दोनों अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नकद 50,000 रकम भी बरामद कर ली। इधर बेजबहड़ा इलाके में कार्रवाई के दौरान 3 किलो से जायद चरस बरामद कर ली। रखे नौबुग इलाके में एक नाके के दौरान उमर रशीद गनाई नामी शहरी से 300 ग्राम के करीब चरस बरामद कर ली गई, जबकि नटीपुरा बिजबिहाड़ा में बशीर अहमद डार के घर से तलाशी के दौरान करीब 3 किलो चरस जब्त कर ली गई। अनंतनाग में ही पुलिस ने NDPS के तहत 2 मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। अवंतीपुरा में कई मुकाम पर मनुष्यात के कारोबार से मुतालिक शिकायत पर छापे डाले गए। पुलिस ने सोमो स्टैंड अवंतीपुरा में एक बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में भी पुलिस ने मनुष्यात मुखालिफ मुहिम जारी रखी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीवानबाग बारामूला से एक रैली निकाली गई जिसको टीचर्स एसोसिएशन का ताउन हासिल था। यह रैली खनपुरा मेन चौक में इख्तिताम पजीर हुई। जिला के पलहालन पुलिस पोस्ट के तहत आने वाले इलाकों में भंग हटाने की कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि बटपुरा कुंजर में दारुल कुरान के इश्तराक से एक रोड रैली बरामद की गई जिसमें लोगों की अच्छी तादाद शामिल थी। जम्मू सूबे में भी पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत सांबा, किश्तवाड़ और उधमपुर अजला में खसूसी कार्रवाई के दौरान हीरोइन जब्त की और एक मनुष्यात फरोश की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। उधमपुर में मजालटा नाके पर एक स्विफ्ट कार से दौरान तलाशी 50 ग्राम हीरोइन बरामद करके उसके ड्राइवर रियान मुख्तार साकना बड़गाम श्रीनगर, उसके मोविन उबैद लोन साकना हांजी दांतर अनंतनाग को गिरफ्तार कर लिया। फौज की तरफ से आज टंगडार करना में नशा मुक्त भारत अभियान की एक कड़ी के तौर मुकामी लोगों की शिरकत और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ योम टीटवाल मनाया गया। इस मौके पर इस खत्ते में मालामाल मिलिट्री विरासत की अकासी की गई और कौम के लिए जान दे चुके फौजी जवानों को शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इस सिलसिले में मुनाकदक मैराथन में 350 मर्दोजन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रोग्राम में शामिल लोगों ने एक सेहतमंद और मनुष्यात से पाक मुआशरे की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। मारूफ सहाफी करामत कुयूम की हमशीरा आज इंतकाल कर गई है। बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सानहे इरतहाल पर सोगवार कुंबे से ताजियत और हमदर्दी का

17,000 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने का इम्कान है। हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि विफाकी बजट में 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स के जमन में इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि इस दबाव के चलते हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी भी खत्म करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। मसूल इतलात के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से पाकिस्तान को तजवीज़ दी गई है कि GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में मजीद 2,000 अरब रुपए की इजाफी रकम इकट्ठी की जाए। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में अगले माली साल के पहले 6 माह में 7,000 अरब, जून 2027 तक 15,267 अरब रुपए की टैक्स वसूली का हदफ मुतवक्का है। मसूल इतलात के मुताबिक अगले बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाले जाने का इम्कान है, जबकि 215 अरब रुपए इजाफी टैक्स के तौर वसूले जाएंगे और बाकी 2,015 अरब रुपए ऑडिट के जरिए और सख्त निगरानी से हासिल किए जाएंगे। उधर सूबाई सतह पर भी 430 अरब रुपए के नए टैक्स अवाम पर थोपे जा रहे हैं। हुकूमत के अंदर मौजूद जराए से मालूम हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूले जाएंगे, जो मौजूदा माली साल के मुकाबले में 260 अरब रुपए ज्यादा है। बताया जा रहा है कि एक शोबे को रिलीफ फराहम करने के लिए दीगर सेक्टर्स पर बोझ डाला जा रहा है। IMF इस बात पर खफा है कि वादा करने के बावजूद हुकूमत ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली में नाकाम रही है। समीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में ज़रई शोबे का वहां की मईशत में हिस्सा तकरीबन 25% और टैक्स वसूली में सिर्फ 0.3% है। मजीद एक रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने IMF को सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को तेज करने की यकीन दहानी कराई है और खसूसी इक्तिसादी इकोनॉमिक जोन्स को हासिल टैक्स मुराद 2035 तक खत्म करने की IMF को यकीन दहानी कराई है। जराए के मुताबिक अगर तकसीम कार कंपनियों की निजकारी मुमकिन न हुई तो बाज कंपनियों को एक दूसरे के साथ जम करने की तजवीज भी हुकूमत पाकिस्तान के जेर गौर है। पाकिस्तानी हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि आइसको, गैपको और फास्को नामी कंपनियों के 51% से लेकर 100% शेयर्स 2027 के आगाज में फरोख्त किए जाएंगे। इंतजामी कंट्रोल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी निजी शोबे को मुंतकिल किया जाएगा। इस सिलसिले में ताज़ा खबर ये मौसूल हुई है कि 27 सरकारी इदारों की निजकारी या प्राइवेटाइजेशन पर पेशरफ्त जारी हैं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान की इक्तिसादियात और वहाँ की मईशत फिलवक्त जबरदस्त माली बहरान के दौर से गुजर रही है और इस सूरत हाल में वहाँ की हुकूमत IMF जैसे कर्जा देने वाले आलमी मालियाती इदारे के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर है। समीन, यहाँ पर समाप्त करते हैं ये फिल्मी नगमा।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। समीन, पाकिस्तान के साबिक वजीर अजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, जो अपनी अहलिया समेत अडियाला जेल में असीरी के आयाम गुजार रहे हैं, की तबीयत इतलात के मुताबिक काफी अरसे से खराब चल रही है और उनके इलाज को लेकर उनके हामियों और जमात के कारकुनों की तरफ से तशवीश और खदशात का इजहार किया जा रहा है, जबकि मामला अदालत में चल रहा है और जेर समात है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के मामले पर उनकी कानूनी टीम ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज के खिलाफ चैम्बर में अपील दायर कर दी है। अपील में मौकफ अख्तियार किया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने अख्तियारात से तजावुज किया है और दस्तियाब रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि केस के काबिल समाअत होने या न होने का फैसला इंतजामी नहीं, बल्कि ये फैसला अदालती फोरम के जरिए होना चाहिए। अपील में मजीद कहा गया है कि बानी पीटीआई जो अडियाला जेल में कैद हैं, को वकालत नामे पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं दी गई और कहा गया है कि वकला ने मुतद्दिद बार अडियाला जेल जाकर उनसे वकालत नामे पर दस्तखत हासिल करने की कोशिश की है, मगर उनको इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि जेल हुकाम ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी है और न उन तक रसाई बहम पहुंचाई है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि वकला की तरफ से एक और कोशिश के तौर पावर ऑफ अटॉर्नी उन तक कुरियर के जरिए भी भिजवाई गई, ताहम जेल हुकाम ने तआवुन करने से इनकार किया। समीन, आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान के वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अलाहदा रिट पटिशन दायर की गई जो अदालत के जेर समात है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में दायर की

गई चैम्बर अपील की बात है, उसमें ये मौकफ अख्तियार किया गया है कि मजबूरी के तहत दरख्वास्त अटॉर्नी के तवसुत से दायर करनी पड़ी है। वकला की तरफ से इस्तदा की गई है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का 18 मई 2024 का एतराज वाला हुक्म कलदम करार दिया जाए और दरख्वास्त को नंबर लगाकर बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और केस को फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए रखा जाए। अपील पर उम्मीद है कि अगली सुनवाई में फैसला होगा। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान की चैम्बर अपील को मंजूरी मिलती है कि नहीं, और क्या इमरान खान को खराब सेहत की बुनियाद पर अदालत मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। इस दौरान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तलिफ मुकदमात जो पीटीआई के अरकान असम्बली के खिलाफ मुख्तलिफ वाक्यात को लेकर दर्ज किए गए हैं, हुक्म दिया है कि मुतलिक अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनान को 23 जुलाई तक गिरफ्तार न किया जाए। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर को और सुप्रीम कोर्ट के बाहर और दीगर एहतजाजों पर दर्ज 243 जमानती दरख्वास्तों पर समात हुई। दौरान समात अदालत ने तमाम मुतलिका पीटीआई मेंबर्स, नेशनल असम्बली और दीगर रहनुमाओं को 23 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अदालत ने इन तमाम दरख्वास्त गुजारों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 23 जुलाई तक तौसीक कर दी। ये फैसला वफाकी हुकूमत के लिए एक दचके के बराबर है जिसने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का मन बना लिया था। तहम अदालत के ताज़ा फैसले के बाद हुकूमत को अपने आइंदा इकदाम के लिए 23 जुलाई 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा। समीन बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप और हम सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। अब कुछ जिक्र पाकिस्तान के शोरेज़दा सूबे बलूचिस्तान से मुतल्लिक, जहां पर अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज किया है और असलाह की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा दोपहिए वाली गाड़ी पर डबल सवारी को भी ममनू करार दिया है, जबकि 5 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम वहां पर जारी जुल्म व सितम पर सरापा एहतजाज हैं और सूबे में मुसल्ला जदोजहद भी जारी है। हुकूमत को खदशा है कि सूबे में हालात मजीद खराब हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र ये तमाम किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गई है। पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी और अगले 30 रोज तक जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि वजारत दाखिला की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये सारी पाबंदियाँ फिलफौर नाफिजुल अमल हैं और इनकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलामिया में मजीद बताया गया है कि अवामी मकामात पर चेहरे को मास्क, मफलर या किसी भी तरह ढांपना एक गैर कानूनी अमल तस्वुर किया जाए और ऐसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ताकि सिक्योरिटी इदारों के साथ वाबिस्ता अहलकारों को शिनाख्त के अमल में किसी किस्म की रुकावट का सामना न करना पड़े। सूबाई हुकूमत ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस हुकाम और मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को हिदायत दी है कि इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब मीडिया मुआविन बराए दाखिला सूबे बलोचिस्तान बाबर यूसुफ जई ने कहा है सिक्योरिटी इदारे मुबैना फितना परवरों की जानिब से किसी भी मुमकिन कार्रवाई से निमटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। बाहर यूसुफजई ने कहा कि कलदम तंजीमों की जानिब से किसी किस्म की मुहिमजुई या एडवेंचर की कोशिश की गई तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं और हाई अलर्ट पर हैं और किसी नाखुशगवार वाक़े या सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये इकदाम इसलिए किए गए हैं कि हुकूमत को इनपुट्स मिले हैं कि आज़ादी पसंद सूबे में अपनी मुहिम को तेज़ कर सकते हैं और इस दौरान हो सकता है कि पुरतशद्दुद वारदातें भी वक़ू पज़ीर हो सकती हैं। सूबे में मुमकिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम और आम शहरों की जान माल के तहफ़ के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। ख़ासतौर पर मजहबी इज्तिमात, सियासी रैलियों और दीगर बड़े इज्तिमात पर इन पाबंदियों का इतलाक होगा। यहाँ तक कि शादी ब्याह और दीगर ख़ानदानी तकरीबात के हवाले से भी पाबंदियों का ख्याल रखा जाएगा। इधर दफा 144 के नफाज के बाद सूबे भर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त बढ़ा दिया गया और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जमाव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम इलाकों को मुहासरे

में लिया गया है। इस दौरान लोग इस तरह की पाबंदियों से नाला नजर आ रहे हैं और अवामी हलके इस राय का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से सूबे में दहशत का माहौल पैदा किया गया है और लोगों को बिलावजह हरासा किया जा रहा है, जिसका वाहिद मकसद लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करना और उन्हें जाबराना तर्ज अमल पर अपनी नाराजगी जाहिर करने से बाज रखने के सिवा और कुछ भी नहीं है। समीन, ये तो थी हमसाय मुल्क पाकिस्तान में जारी सूरत हाल के अहवाल से मुतालिक बात। आइए प्रोग्राम के आखिर पर आप और हम सुनते हैं एक और फिल्मी नगमा।

0: 116 किलोहर्ट्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर।
1: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 हो रहे हैं। आइए इस बात करते चंद फिल्मी नगमे। आगाज में सुनते फिल्म ठोकर से नगमा, मुकेश की खूबसूरत आवाज में। इस गीत को लिखा है साजन दहलवी ने। आइए समाप्त करते हैं।

0: سمین فلمی نگمے آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے. آخر پہ آپ نے مہندر کپور کی آواز میں گمراہ فلم سے نغمہ سنا. یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. سمین 8:45 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا. خبروں کے لیے کیجیے بس ذرا سا انتظار.
1: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती. भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया. पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की. तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त. पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया. सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया. कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की. देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित. अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी. और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया. डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है. हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है. शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं.
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं. उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं. दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है. तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया.
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है. इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है. हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं.
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की. विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई.

0: अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में

पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।

टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय त्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जन

0: जीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय रात के 9 बज चुके हैं। स्वागत करें स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफर। आज के प्रोग्राम का मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। ये इस प्रोग्राम की तीसरी किस्त होगी। मुकर्रर है मौलाना फैयाज अहमद जरूर साहब और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा।
2: समीन पेशे खदमत से प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम चु तहता वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर ये सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिव्यांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी एलामिये के मुताबिक ज़िलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकज़ों में भेजने के लिए ज़रूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़े कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान ये फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ ज़रूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश, मशरक़ी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने चार अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ततैया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नज़र मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद जिनमें 7 खवातीन थीं आज उत्तर कन्नड़ा जिले के

टेहक कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा अख्तियार करने वाली ट्विशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्विशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्विशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्विशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दिगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्ज़ाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सांगवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुज़्वी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाक़े के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नज़दीक गोलियां चलने के वाक़े के बाद तेज़ी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाक़ा वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाक़े के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद व रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्बांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज़ कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की ज़िंदगी मुतासर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की

0: वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय रात के 9:30 हो चुके हैं।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: यह आवाज है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीना ये चंद उर्दू गजलें समाप्त करते हैं। आगाज में सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

यही आगाज था मेरा, यही अंजाम होना था। यही आगाज था मेरा, यही अंजाम होना था। मुझे बर्बाद होना था, मुझे नाकाम होना था। जी हाँ समीन, गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल आप समाप्त कर रहे थे। अब आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में एक और गज़ल।

सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। यह खत हमें मौसूल हुआ है चंदूर बिस्वा तालुका नंदूर जिला बुल्दाना महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं नारायण मावर खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता संजना खड़से, कार्तिक खड़से, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। दोस्तों, आपको इंतजार होगा अपना मनपसंद गीत सुनने का, तो समाप्त कीजिए फिल्म दोस्ती का ये नगमा। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

एक मशहूर फिल्म सिनेमा के पर्दे पे छाई थी, नाम था सफर। ये उस साल की सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म साबित हुई। आइए इसी फिल्म से एक नगमा सुनते हैं इन दोस्तों की फरमाइश पर। यह है जबीगुल बीरवास से जावेद कश्मीरी और उनके दोस्त। घाट पलहालन पटन से डार शबीर और उनके दूसरे साथी, यह हैं शौकत जान, हादिया जान, इरम जान, अरबीना जान, अक्सा जान और जैद जावेद। डबवाली हरियाणा से ये पोस्ट कार्ड हमें मिला है, लिखने वाले हैं जेके बकोला, श्रीमती सुनीता बकोला, संजय, अनिल और मीनू बकोला। एयरपोर्ट रोड कोलकाता से ये हैं बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और मिस रेखा देवी शाह। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नौतन चक्की, अशप्रीत शर्मा, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार और सलाम। दोस्तों समाप्त कीजिए लता मंगेशकर की आवाज में ये दर्द भरा नगमा। फिल्म है सफर। गीतकार हैं इंडीवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। तो आइए सुनें।

आपने फिल्म सफर से नगमा सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस नगमे के साथ ही अब आज का प्रोग्राम आपकी फरमाइश अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। चलते चलते दोस्तों आपको प्रोग्राम का पता बता देते हैं। पता है इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश मारिफत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी श्रीनगर पिन 19001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगली एतवार को रात 10 बजे प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। लेते हैं आपसे इजाजत इस दुआ के साथ, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से

0: हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome

हबीबुल्ला डार, निशाती और उनके साथी छकरी और पेश करेंगे सुबह 11:30 पर, दोपहर 2:30 और सुपहर 4:30 पर। इनसे आप बितरतीब कलाम अजीज हज, कलाम शम्स फकीर और कलाम रफीक राज समाप्त करेंगे। फिल्मी नगमे आप सुनेंगे दिन में 12:10 पर और 2:15 पर।

खवातीन की महफिल बज़ में निस्वा आरास्ता होती है दिन में 12:40 पर। याद रहे ये प्रोग्राम आपकी फ़ोन कॉल्स पर मबनी होगा। मेज़बान शाहीन आरेशी। NCERT का स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम नशर होगा दिन में 1:10 पर, जिसके फौरन बाद चंद फिल्मी नगमे भी आप समाप्त कर सकते हैं। फिल्म संगीत पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए नशर होता सुपहर 3:00।

पहाड़ी प्रोग्राम नश्रोता सुपर 4 बजे, गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहता है 5 बजे, शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गमी भाई निंदी खतर शहरबीन हालात हजरा पर मबनी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज़ ब्रॉडकास्ट होता है 8 बजे। रात 8:30 पर खेलों से मुतलिक प्रोग्राम नष्ट होगा स्पोर्ट्स टाइम, मेज़बान एजाज नाजगी, मेहमान है मारूफ तज्जिया निगार सैयद हमायूं कैसर। और रात 9 बजे स्पॉन्सर प्रोग्राम नष्ट होगा हम सफ़र। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम, इस प्रोग्राम की 4थी किस्त होगी। मुकर्रर हैं मौलाना फैयाज अहमद जरूर साहब, प्रोड्यूसर सलीम एजाज कपरा। तो समी रही थी तफसील कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्रामों की।

का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा हमारी नशरियात दस्तियाब है DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। सभी इस वक्त हमारी स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक शब के 11:16 और 22 सेकेंड हो चुके हैं। हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लिए कल सुबह 6:28 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शौकीन हिलाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

0: उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं, हैबिटेट ऐसा है तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है, जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं और गुजरात के अन्य भागों में भी, ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ जो कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं, एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोज, माइग्रेटरी बर्ड्स। डॉक्टर जयपाल सिंह, कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोज?
0: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रन जो है एक पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहां पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
1: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो उनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
0: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से।

0: फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
1: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
0: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है। तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
1: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था
1: कच्छ के महाराव ने
2: जी, फिर महाराव खेंगा III इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जब मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
1: सबसे पहले तो श्रोताओं को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
2: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन, या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है, तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
1: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी, आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया, एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है?
2: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजे 3 से 4 लाख हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
1: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है?
2: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे? एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है, शैलो वाटर की वजह से क्या होता है एल्गे

0: क्रस्टेशियंस, डायटम्स, और ये उनकी मेन खुराक बनती है फ्लेमिंगोज की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो ही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाप की संख्या, तो ये सुरखाप की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
2: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाप के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
2: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखा फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकली रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोलें शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या हैं आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही

0: साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है, तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाएं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं। थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगो इसके अंडा कम होते जा रहे थे।
0: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूड़ा सेट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को ये भी बताए कि ये कूड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है।
0: जी
1: आयुष जी, पोस्टबॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
0: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल चार पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है, और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराड की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र

0: सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहां पर जो मादा घोराड़ है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट CZA की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है और जो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
1: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
0: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साहब ने बताया था कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग ब्रीडिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14

0: हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें,
1: और
0: कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है, जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं, तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको वह छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में, जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं, तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों, वो सीधे वाइल्डिंग होंगे। पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में, उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास हैं वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जम्प स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड के बस्ती में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन सी है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है, तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं, उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाए, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड्स है जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में है, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं, वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारी डंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छी संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए

0: विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश।

0: रक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य और श्री आयुष वर्मा जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़े का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने और दुनिया को अधिक विकल्प प्रदान करने में दोनों देशों का साझा हित है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सके। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jayashankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill Affairs Department, districts

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 47 सेकेंड। शुरू हो चुका है

वैसे ये तो सच है कि जिस वक्त का हम इंतजार करते हैं ये वही वक्त है। ऋषिगंधा में ये वक्त होता है दो ऐसे दिलों के मिलने का जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक सा करते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अगर साजन उस पार है तो फिर इंतजार किस बात का, हम बातों की ट्रेन लेकर पहुंच जाते हैं उसी पार। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। कुछ भी कहो, ये गाने हमारे मूड को थोड़ा सा फिल्मी तो बना देते हैं। जब मूड फिल्मी हो गया है तो क्यों ना फिर एक और इसी मूड का

मोहब्बत से भरे गीतों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये पुरानी यादों को जगा देते हैं, है ना। बिना पंख हम उड़ जाते हैं उन गलियों में जहां सुकून मिलता है और साथ साथ मिलती है खुशी। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही

0: अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी हर कविता फीकी पड़ जाएगी। सौदशमलविक मेगाहर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:44 और 13 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

अच्छा एक बात बताइए, जब कोई अपना जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं अचानक हमारे सामने आ जाए तो दिल में ऐसी ही बहार आ जाती है ना। और हमारी इस म्यूजिक प्लेलिस्ट में भी बहार का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगला गीत लता जी की आवाज में, अभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता

0: की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि सूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरीद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार श्राली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव में की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से ही किसी बीमार से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिन में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Hill, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Dibangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Phalta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 1.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त वह 1:11 और 8 सेकेंड। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा जी की आवाज के साथ।

मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी जो आपने गीत सुना वो आवाज थी आशा जी की और संगीत था उपेन अय्यर का और गीतकार थे कमर जलालाबादी। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अशोक कुमार और मधुबाला ने। अशोक कुमार ने एक ऐसे भाई का रोल इस फिल्म में निभाया था जो अपने भाई के हथियारों की तलाश में कलकत्ता आता है और मधुबाला ने एडना नाम की एक कैबरे डांसर का यादगार किरदार इस फिल्म में निभाया था। और अगर इनकी एक्टिंग की बात की जाए अशोक कुमार और मधुबाला की तो इन दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। और अब हम सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे साल 1964 में आई फिल्म लीडर का ये बेहद खास गाना, जिसे नौशाद साहब के लाजवाब संगीत और शकील बदायूनी के शब्दों ने सजाया था। अगर बात करें इस फिल्म की, तो ये अपने दौर की एक बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी। खास बात यह है कि इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले दिलीप साहब ने लिखा था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जयंत ने। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और 3 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म आर पार से आप सभी के लिए।

0: फिल्म आर पार से सुना आपने ये सदाबहार गीत। आवाज थी शमशाद बेगम की, संगीत था ओपी नैयर का और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1954 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त साहब और शकीला ने। अगला गीत हम सुनते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।
1: ये मौसम न

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। वक्त हुआ है 1:53 और 57 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित

0: करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान में औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। आईपीएल क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 204 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. National Security Advisor Ajit Doval met US Secretary of State and NSA Marco Rubio in New Delhi yesterday. In a social media post, Ministry of External Affairs said, the discussions focused on defense, security and strategic technology cooperation, including the Trust Initiative. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the re-poll for the Phalta Assembly constituency. Mr. Panda won by over 109,000 votes in a seat widely regarded as a stronghold of the Trinamool Congress, whose nominee slipped to fourth place and forfeited his deposit. Prime Minister Narendra Modi congratulated Debangshi Panda for winning the Phalta Assembly re-poll with a record margin. In a social media post, the Prime Minister said that the victory indicates the unwavering faith of the people of West Bengal towards the BJP. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at Civil Investiture Ceremony today. On the occasion, we are broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashvani. In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune into 100.1 Akashvani Gold today from 10 minutes past 9 a.m. onwards. It can also be heard on News On Air app and News On Air official YouTube channel.

एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में, एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में। एक प्रेमी तो ठहरा बनकर सबके हिस्से पाना ही चाहिए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं लता जी के साथ, लता जी की आवाज के साथ।

तुम लौट कर आओ या ना आओ, चाहो या ना चाहो, जो तुम्हारा इंतजार करता है तुम्हें आधा पा लेता है।

प्रेम में पड़ी लड़कियां अपनी पीड़ाएं छिपाकर पूछती हैं प्रेमियों के आंसू। प्रेम में पड़ी लड़कियां अपनी पीड़ाएं छिपाकर पूछती हैं प्रेमियों के आंसू। प्रेम में पड़े लड़के अपनी छिपाई पीड़ाएं बांटने लगते हैं प्रेमिकाओं से। प्रेम महान नहीं है, केवल पीड़ाओं का प्रवाह है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते। रिश्ते तोड़े, मल्लाहों से नाव जला दी, अब हम दोनों दरिया पार नहीं कर सकते। ये भी एक तरकीब है दुश्मन से लड़ने की, गले लगा लो जिस पर वार नहीं कर सकते। खुदा को, खुद को इतना दुनियादार नहीं कर सकते, आधे दिल से पूरा प्यार नहीं कर सकते।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:45 और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में।

जब भी अंजामे मोहब्बत ने पुकारा खुद को, जब भी अंजामे मोहब्बत ने पुकारा खुद को, वक्त ने पेश किया हमको मिसालों की तरह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने विशेष प्रावधान करके सभी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी से बाहर रखा ताकि उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सके। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यूसीसी से आदिवासियों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे भारत के आदिवासियों को यह संदेश दिया है और कोई भी उनके जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर दिबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा

0: शिक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। IPL क्रिकेट में लीग के अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi yesterday. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th and Independence Day celebration of the United States in New Delhi, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. The National Testing Agency, that is NTA, has postponed the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, CBSE, extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Home Minister Amit Shah has said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The West Bengal government has directed all district magistrates

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। राज्य के 3:11 और 17 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। इस समय का सफर जिसमें रात्रि काल से भोर काल तक का सफर हम सभी तय करते हैं और कई बार यूं मतवाले हो उठती हैं ये आंखें कि जैसे यादों का समा बंद गया हो और फिर उन्हीं दिसी भी हो जाती है। नींद न आने के कई कारण भी बसते हैं, जी हाँ, या ऐसा भी होता है कई बार नींद से एकदम से अचानक जागते हैं और वापस नींद नहीं आती, यानी काल एक लेकिन एहसासात अलग अलग। हाँ, ये बात जरूर कि ये वक्त अपना, सिर्फ अपना, इस समय का।

0: मुकेश और गीता दत्त के स्वरों से सजा ये गीत चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया था साथियों। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम हम मतवाले नौजवान, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मित्रों, हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं और इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी। और जब हमराही अच्छी हो तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे, मिनट या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और जब इंतजार के लम्हात खत्म हो जाते हैं और कहिए कि इंतजार की यात्रा समाप्त हो जाती है और मनभावन साथी मिलता है तो इस तरह के गीत हम गाते हैं।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत कालीघाटा फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1951 में। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, जब सपने सच हो जाएं तो खुशी की चमक चेहरे पर सज ही जाती है, लबों पर गुनगुना उठती हैं तराने। और वैसे भी जब हम एक बार किसी को देखते हैं और वो दिल में बस जाता है और आंखों में भी तो बस जाता है। जी हाँ, उसी तरह की बात कहता ये तराना।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत था। रवि का संगीत था शकील बदायूं की लिखी रचना। फिल्म का नाम घराना, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे के स्वरों से सजाई जाएगी। तभी आपने सुना दत्ता वाटकर का। दत्ताराम वाटकर का संगीत था शैलेंद्र की लिखी रचना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जब से तुम्हें देखा है। और आइए अब इस अगले गीत में सुनते हैं क्या कहा जा रहा है।

आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वर उसी सच्चाई गीत गृहस्थी फिल्म से। साथियों अभी आपने सुना 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रवि का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत परछाइयां फिल्म से हमने लिया था 1972 रिलीज ये फिल्म। आरडी बर्मन का संगीत था मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं युगल नगमे। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम लव मैरिज, जो 1959 में रिलीज हुई थी। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत रचना में।

सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर के स्वरों से सजाई जाएगी। तस्वीर फिल्म से अभी आपने सुना 1967 रिलीज फिल्म, चितलका रामचंद्र का संगीत, डीएन मधोक की लिखी रचना। और अब इनके दिल की बात भी जान लेते हैं जरा।

अलिल चौधरी का संगीत और शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों, ये थी आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। बता देते हैं वो फिल्मों के नाम जिनके गीत आपने हमराही कार्यक्रम में सुने। फिल्म हम्मत वाले नौजवान, काली घटा, घराना, जब से तुम्हें देखा है, गृहस्थी, परछाइयां, जल तरंग, लव मैरिज, तस्वीर और चांद और सूरज, इन फिल्मों के गीत आपने हमराही कार्यक्रम में सुने। और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ता से खड़े हैं। नई दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी के तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कल थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 7 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सब नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, जब सुबह की शुरुआत करते हैं तो कुछ न कुछ प्रार्थना हम जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए, और धरती को नमन करना चाहिए, अपने ईश को याद करना चाहिए, अपने माता पिता गुरुजनों को याद करके दिन की यानी सुबह की शुभ शुरुआत करना चाहिए। तभी सारे दिन ही नहीं, सारे जीवन में खुशियां ही खुशियां खिलती रहेंगी।

खुशी और ऊर्जा से भरपूर ये गीत अभी आपने सुना, तीन सुंदर आवाजों का सम्मिश्रण लिए ये रचना लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें थी। साथियों, रवि का संगीत था शकील बदायूं की लिखी रचना और फिल्म का नाम गृहस्थी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। और अब अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा, उसका आरंभ बस होने ही लगा है, उसकी आभा विद्यमान है और हरी हरी घास है जहां कुछ चमक रहा है। क्या है, किसका है वो, किनको मिला?

0: लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत परख फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन।

मित्रों, सुबह जब हम सोकर उठें और ये तुरंत भाई याद आ जाए कि हमारे प्रिय आ रहे हैं या उनसे मुलाकात होगी, तो इस अरुणिमा का महत्व और खुशी दोनों ही बढ़ जाते हैं। क्यों है ना?

0: सखी रॉबिन ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1962 रिलीजी फिल्म सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे के स्वर थे, रॉबिन बेनर्जी का संगीत था और योगेश की लिखी रचना थी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। और अब देखिए ना, अरुणिमा काल आ चुका है, लेकिन कोई कह रहा है कि रात तो भाई ढलती ही नहीं है, क्योंकि इंतजार जो पूरा नहीं हुआ, इंतजार तो रहेगा ही जब तक कि वो आ नहीं जाते हैं।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजाई ये गीत गुमराह फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1963 रिलीज ये फिल्म रही थी। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत कोहिनूर फिल्म से था। साथियों 1960 रिलीज ये फिल्म नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं ने की लिखी रचना थी।

खुश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है मत होश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है कर ले ना किसी से प्यार कहीं दिल अपना दीवाना लगता है मत होश हवा मत वाली

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था और फारूक कैसर की लिखी रचना।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत गृहस्थी फिल्म से अभी आपने सुना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। रवि का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी। और अब इनकी सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये। सवेरा तो हो चुका है, जी हाँ, अरुणिमा और भोर सुहानी के बीच का वक्त चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं सुनते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना लाट साहेब फिल्म से। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों, जिस तरह जीवन के सफर में सुख और दुख की परछाइयां संग संग विद्यमान रहती हैं, हम परेशान भी होते हैं लेकिन उन कष्टों से उबरने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन कई बार संबंधों में भी रूठ मनाई हो जाती है। जी हां, रूठ जाता है, कोई वजह कोई भी हो। अब रूठने मनाने का जो सिलसिला होता है, यदि हम रूठे को मनाएंगे नहीं या हम रूठे ही रहेंगे स्वयं, तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। रिश्तों की जो डोर होती है साथियों, वो आपसी सामंजस्य, समझदारी, स्नेह, पारदर्शिता होती है। और अगर इस तरह की कोई बात हो जाती है तो भाई रूठने मनाने में क्या बुराई है।